FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, सक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आज का चिंतन। गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, विश्वास वो पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

धड़कन। आइए सुनते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 228। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। सुनिए श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वॉयलिन वादक SL कंडारा। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी आज सुनिएगा। सात बजे से सुनिए भूली बिसरी गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम है रही प्यार के। त्रिवेणी 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम 9:30 पर आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राज बब्बर पर। सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुत करता है जुबैर खान। ग्यारह बजे रंग तरंग और 12 हिंदी समाचार 12:05 पर यादों की महफिल। 1 सुनिए सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी 2:30 से सदाबहार नगमे। 3 सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली सुनिएगा। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सेलुलॉइड के सितारे। गीतकार शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुतकर्ता सुपैर खान। शाम 5 छाए गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता। आपको फिर से बता दें श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वॉयलिन वादक SL कंडारा। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा शाम 7 से। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। हवा महल में रात 8 सुनिए नाटिका चांद की किरण। लेखन प्रेमलता जैन का, निर्देशन जनार्दन राय का। रात सुनिएगा चित्रलोक कार्यक्रम। 9 सुनिए आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राज बब्बर पर। रात 10 छाया गीत। प्रस्तुत करता है राघवेंद्र नेगी। आलेख और स्वर ममता सिंह का। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, भाग

श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांप कर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्यावासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं पंडित एसएल कंडारा जी का। पंडित एसएल कंडारा जी को इस अंक से तबले पर संगति दे रहे हैं श्री संतोष मिश्र जी, जो जाने माने तबला नवाज पंडित मदन मिश्र जी के सुपुत्र हैं और शिष्य हैं। संतोष जी, आपका भी विविध भारती के स्टूडियोज में बहुत स्वागत है। पंडित जी
2: जी,
1: वायोलिन की विहंगमता के बारे में हमने अब तक चर्चा की
2: जी।
1: किस तरह से भारत में उसका आगमन हुआ, भारतीय शास्त्रीय संगीत ने कैसे उसे अपनाया
2: जी।
1: और कौन कौन महान कलाकार हुए हैं इस वाद्य को लेकर के, और फिल्मों में किस तरह से वायोलिन का उपयोग हुआ है, ये सारी जानकारी पाने के बाद अब हमारे कान आतुर हैं आपका वायोलिन वादन सुनने के लिए। तो राग शंकरा से हम शुरुआत करते हैं
2: जी।
1: राग शंकरा के बारे में, उसके चलन के बारे में
2: जी
1: हमें बताइए।
2: राग शंकरा देखिए बहुत प्राचीन रागों में से एक राग है
1: जी,
2: और शास्त्रों में इस राग का बहुत विस्तार से वर्णन नहीं है, लेकिन जो पंडित लोग हैं
1: जी
2: या उस्ताद लोग हैं इस राग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, अगर जो जिन्होंने इसको सीखा है। हमारे गुरुजी ने मुझे जब राग शंकरा के बारे में डिटेल बताया
1: जी,
2: तो मुझे लगा कि उनका ज्ञान अगर नहीं मिलता तो ये राग से मैं वंचित रहता था। तो उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी
1: जी।
2: मैं शब्दों के बजाय कुछ बजा के बताऊं तो शायद ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, तो मैं कुछ कोशिश करता हूं थोड़ी सी। देखिए राग शंकरा जो है उसमें आरोह में षड्ज के बाद गंधार
1: जी,
2: फिर पंचम, फिर निखात धैवत और तार सप्तक का साज, यानी गंधार पंचम धैवत और निखात और सा, यानी पांच ओड़व जाति हो गई इसकी, पांच सुर लगते हैं। और अवरोह में सा नी ध पा गापा गारे सा, मध्यम नहीं लगता है, केवल मध्यम अवॉइड होता है अवरोह में। अब इस क्लिष्टता को केवल बरतने से ही मालूम पड़ सकता है कि वो कैसे राग शंकरा प्रकट होता है
1: जी।
2: तो ये मैं कोशिश करता हूँ आपको बजा के बताने की।

0: क्या बात है,
1: बहुत खूब
0: पंडित जी। एक ताल में निबद्ध ये बंदिश जो आपने सुनवाई, लगता है इसकी शास्त्रीयता को, इस वातावरण की शास्त्रीयता को ऐसे ही रखा जाए और एक भजन अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जो पंडित राजन मिश्र, साजन मिश्र की स्वरों में है।
1: बहुत अच्छा है।

0: राग शंकरा पर आधारित ये भजन अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र की आवाजों में। श्रोताओं, इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। आज्ञा दीजिए।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही।

उजाला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बंधन फिल्म का गीत। लीला चिटनिस की आवाज है, प्रदीप ने इस गीत को लिखा है और सरस्वती देवी ने इस गीत की धुन बनाई है।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अछूत कन्या फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सरस्वती देवी के स्वर में। गीतकार थे जे एस कश्यप और संगीतकार सरस्वती देवी। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में 7:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश और 8:15 पर सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या का समय होगा 8:30 पर। इसके अंतर्गत आज की बात में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और श्रीमती स्मृति चतुर्वेदी की वार्ता होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन परिचय और राष्ट्र को योगदान।

0: 9 बजे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत 9:30 पर सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या और 1 बजे सुनिएगा फेसबुक फरमाइशी कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग 12:30 और गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि का समय होगा 2 बजे से। दोपहर 2:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी जगत। इसके अंतर्गत चर्चा होगी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर। साथ ही गीत सौंदर्य टिप्स के अलावा लेखिका पूनम सूद की कहानी होगी शहरी विधवाओं की स्थिति पर, शीर्षक विधवा कोई रंग नहीं। शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत चर्चा होगी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर। साथ ही गीत चक्रव्यूह के अलावा भारतीय इतिहास से में जानिएगा गदर आंदोलन के बारे में। शाम 5:30 पर लोक संगीत, 6:10 पर शाम सुहानी और 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। कार्यक्रम किसानवाड़ी का समय होगा 6:45 पर। इसके अंतर्गत चर्चा का विषय होगा बकरी पालन अतिरिक्त आमदनी का स्रोत। साथ ही लोकगीत बाजार भाव मौसम का हाल के अतिरिक्त डॉक्टर जेबा जमाल से भेंटवार्ता होगी कृषक महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास। इसके अलावा एक भेंटवार्ता और सुनिएगा किसान समृद्ध के 12 साल एकीकृत बागवानी मिशन और कृषि यंत्रीकरण। उद्यान निरीक्षक यशवंत पटेल से बातचीत करेंगे राम प्रकाश पांडे। रात्रि 8:15 पर गीत गुंजन, 9:15 पर महफिल गजल और 9:30 पर सुनिएगा सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। रात्रि 10 बजे हमारे लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। कुछ ही देर में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: दूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा। घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने

0: फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ, कहा नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर बाद एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरा छोड़कर लखनऊ आए और सीधे घटनास्थल पर जाकर स्थिति की जानकारी ली और बाद में केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस इमारत में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जिसमें कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद उन्होंने केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। रक्षा मंत्री ने घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले की जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच दल बनाया है। वहीं सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अफसरों को निलंबित कर दिया है। मामले को लेकर पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रताप शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई मंत्रियों ने लखनऊ के इस अग्निकांड को दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाबी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक तथा उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को पछाड़ दिया है।
2: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
0: प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज के समारोह में दो

0: पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीट भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए, हर सेक्टर में है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे सीबीजी प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
0: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहिबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य और व्यापार पर्यटन भी बढ़ेगा। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा, घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना

0: स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
8: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
7: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
8: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
7: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
9: बोलो बजरंग बली की।
2: कैलाश अनुज की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला भक्ति गीत।

0: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से सुन रहे हैं और अब आइए सुनते हैं हरिहरन की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
5: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार प्रभात।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में

0: राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।

0: मेहराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
1: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास कर।
2: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना

0: ना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक शॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना सरिये माना। आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
7: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं आबिदा परवीन की आवाज में।

0: सलमागा के गाई सी गीत के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
2: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
1: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
2: जी हाँ, और वो है योग।
1: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
2: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
1: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
2: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
1: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
2: योग करिए, निरोग रहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838। सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसी

0: के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
2: कार्यक्रम प्रणाम, अयोध्या में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की उत्पत्ति 20 दिसंबर 2002 को हुई तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 57/277 के प्रस्ताव को अपनाने के बाद 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया गया। सार्वजनिक संस्थानों और लोक सेवकों के मूल्य की सराहना करने के उद्देश्य से आज ही के दिन 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर के सभी क्षेत्रों के विकास में सार्वजनिक सेवा के योगदान और भूमिका पर प्रकाश डालता है। इसी दिन दुनिया भर के लोक सेवा संस्थानों के उत्कृष्ट और रचनात्मक उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विकास में लोक सेवकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देना, उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करना तथा युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही स्वास्थ्य महामारी, प्राकृतिक आपदाओं या आर्थिक संकट के समय अग्रिम पंक्ति में रहकर नागरिकों की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना भी है। यह दिवस युवाओं को प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है, जिससे एक जिम्मेदार और सक्षम समाज का निर्माण होता है। ये थी आज की बात और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में एक वार्ता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन परिचय और राष्ट्र को योगदान। वार्ताकार हैं श्रीमती स्मृति चतुर्वेदी।
3: चैतन्य महाप्रभु, रविन्द्रनाथ टैगोर, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस एवं सत्यजीत राय जैसे अमूल्य रत्नों की जननी बंग बसुंधरा में 6 जुलाई 1901 को जन्मे शिशु के ग्रह लग्न पर ज्योतिषी ने विश्वास पूर्वक कहा था कि श्रीमान आशुतोष मुखर्जी, आपका यह द्वितीय पुत्र अत्यंत विलक्षण और सौभाग्यशाली है। यह शिक्षा विशेषज्ञ, गणितज्ञ, महान देशभक्त तथा युग प्रवर्तक समाज सेवी सिद्ध होगा। निश्चय ही स्वतंत्र भारत की आधारशिला रखने वाली विभूतियों में महान शिक्षाविद, अनन्य देशभक्त, प्रखर सांसद, राजनेता, सिद्धांत पुरुष एवं भारतीय जनसंघ के स्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अपनी अलग अस्मिता है। बड़े बाप के बड़े बेटे की आम धारणा के प्रतिकूल थे वह। उनके घर का वातावरण अत्यंत सात्विक था। अपार संपदा, सुख सुविधा के समस्त साधन उपलब्ध होने पर भी वहाँ वैभव विलास तथा उश्रृंखलता को कतई महत्व नहीं दिया जाता था। दया, मानवता, त्याग और सद्भावना से परिपूर्ण नियमित, संयमित व शैक्षिक वातावरण के कारण वह भौतिक प्रपंच आडम्बरों से सदैव परे रहे। किशोरावस्था में हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करते समय एक निर्धन सहपाठी के परीक्षा शुल्क जमा करने की असमर्थता को लेकर प्रधानाचार्य से बहस करके परीक्षा शुल्क से मुक्त कराना उनके अदम्य साहस का प्रतीक है। प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल, स्नातक तथा एमए में परीक्षा उत्तीर्ण होना, तब बैरिस्ट्री की परीक्षा के लिए इंग्लैंड जाकर महान गणितज्ञ की ख्याति सहेज कर लंदन की विख्यात मैथमेटिकल सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त कर लेना उनकी असाधारण प्रतिभा का द्योतक है। 24 वर्ष की अल्पायु में ही उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय की सीनेट की सदस्यता प्राप्त हुई। सन 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर रहते हुए सैनिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अध्यापकों को प्रशिक्षण, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में महत्वपूर्ण सुधार किए। पांडिचेरी में अरविंद विश्वविद्यालय की स्थापना में उनका विशेष योगदान रहा। उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रधान का पद प्राप्त कर भारतीय प्रबुद्ध वर्ग का सम्मान बढ़ाया। सन 1939 में डॉ. मुखर्जी राजनीति में सक्रिय हुए। वह विश्वविद्यालय क्षेत्र से बंगाल विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वीर सा

सावरकर की विचारधारा से प्रभावित होकर वह भारतीय पोषक सिद्धांतों के प्रबल समर्थक हो गए। उनकी प्रभावशाली भूमिका के कारण हिंदू महासभा ने उन्हें प्रधान पद पर चुन लिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वाणिज्य मंत्री का पद दिया। निष्ठापूर्वक डॉक्टर मुखर्जी ने इस पद को संभाला। भाषण, उद्घाटन और राजनीतिक दांव पेचों से दूर रहकर वह स्वतंत्र भारत के व्यापार विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने में जुट गए। इस दिशा में उन्हें अभूतपूर्व सफलता भी मिली। चितरंजन का रेलवे इंजनों का विशालतम कारखाना, विशाखापट्टनम का समुद्री जहाज बनाने का कारखाना एवं सिंदरी का खाद बनाने का कारखाना उनकी योग्यता एवं सूझबूझ के प्रमाण है। सन 1950 में पूर्वी बंगाल में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने का श्रेय डॉक्टर मुखर्जी को ही जाता है। इसी कारण से इन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। विरोध स्वरूप 28 अप्रैल 1951 को भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ, जिसके उद्देश्य स्पष्ट करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने कहा, यह राजनीतिक दल किसी जाति या धर्म का विरोध करने के लिए नहीं बनाया गया है। स्वतंत्रता एवं एकता के स्थायित्व के लिए ही ऐसे दल के निर्माण की आवश्यकता थी। जननी जन्मभूमि की रक्षा करना और जनता में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना ही भारतीय जनसंघ का मूल उद्देश्य है। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के समय भारतीय जनसंघ की अवस्था मात्र 3 माह की थी, फिर भी सारे भारत में जनसंघ ने विधानसभा व लोकसभा के 742 प्रतिनिधि खड़े किए। कांग्रेस के तीव्र विरोध के होते हुए भी जनसंघ के 33 सदस्य निर्वाचित हुए। डॉक्टर मुखर्जी स्वयं कलकत्ता दक्षिण से भारी मतों से लोकसभा में चुनकर आए। उन्होंने विरोधी नेता के रूप में अपनी जोरदार भूमिका से यह सिद्ध कर दिखाया कि सरकार की दुर्बल नीति के विरुद्ध कोई बोलने वाला है। यदि ईमानदारी से स्वीकारा जाए तो जिस प्रकार निजाम हैदराबाद जैसे रजवाड़ों को भारत में विलय करने का श्रेय लौह पुरुष पटेल को है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल को पृथक न करने देने का श्रेय डॉक्टर मुखर्जी को है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते थे। इसके लिए उन्होंने एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का प्रसिद्ध नारा दिया। जम्मू कश्मीर में प्रदेश के लिए अनिवार्य परमिट प्रणाली का विरोध करते हुए 1953 में वे बिना परमिट के कश्मीर चले गए। डॉक्टर मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 का विरोध किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 को देश की एकता के लिए घातक माना और इसके खिलाफ आपत्ति जताई। उन्होंने उड़ीसा की गणतंत्र परिषद, पंजाब की अकाली दल, हिंदू महासभा तथा अनेक निर्दलीय सांसदों सहित कई छोटी छोटी पार्टियों को एक साथ लाकर संसद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल का गठन किया, जिसके वह नेता चुने गए। वे सभी उन्हें विपक्ष का मुख्य प्रवक्ता मानते थे और उन्होंने उन्हें अपनी ओर से सभी प्रमुख मुद्दों का उत्तर देने का अधिकार दिया था। राजनेता के रूप में उनकी महत्ता एवं कुशाग्रता तथा देश की समस्याओं के प्रति उनकी रचनात्मकता दृष्टिकोण ने उन्हें सरकार का दुर्जेय प्रतिद्वंदी बना दिया था। सत्तारूढ़ दल भी संसद के समक्ष आने वाले विषयों एवं समस्याओं के प्रति उनकी गहन सूझबूझ एवं विवेचना के कारण उनका सम्मान करता था। संसद में सरकार की नीतियों तथा कार्यों का उनका सूक्ष्म एवं मर्मज्ञतापूर्ण परीक्षण तथा उनके तर्कों द्वारा सहजता एवं दृढ़ता से खंडन अत्यंत विश्वसनीय प्रतीत होता था। संसद में विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका से उन्हें संसद केसरी की उपाधि प्राप्त हुई। अपने प्रभावशाली विचारों एवं अप्रतिम वाक्पटुता के कारण डॉक्टर मुखर्जी एक उत्कृष्ट सांसद बन गए। अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने कश्मीर की समस्या, भारत तथा पाकिस्तान के बीच लोगों का आवागमन, भारत की विदेश नीति, निवारक नज़रबंदी चुनाव, सुधार आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर संसदीय वाद विवाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इस महान राजनेता की संसदीय जीवन अंतिम कार्यवर्ष 1953

0: में संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने के प्रति उनका उत्साह इतना प्रबल था कि अस्वस्थ होने के बावजूद वह जम्मू चले गए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह जेल में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और भारतीय एकता के लक्ष्य के लिए 23 जून 1953 को उन्होंने अंतिम सांस ली। वस्तुतः डॉक्टर मुखर्जी संयुक्त भारत के हितों के लिए लड़ने वाले अग्रणी योद्धा थे। उन्होंने आजीवन उत्साहपूर्वक इनकी हिमाकत की।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन परिचय और राष्ट्र को योगदान। वार्ताकार थी श्रीमती स्मृति चतुर्वेदी।
2: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
3: आपके संदेश,
4: संदेश से आते हैं
3: आपके गीत,
4: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
3: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911।
5: सखी सुनते हो कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
6: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनते। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
5: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
6: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
7: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
1: और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत।

0: बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी।
1: राम राम रत छोड़ पट तेरे कट जाएंगे संकट झटपट तेरे कट जाएंगे संकट झट

0: बजाए जा बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी।
1: राम नाम रस छोड़ खटपट तेरे कट जाएंगे संकट झटपट तेरे।

0: बजाएगा तू प्यारे हनुमान चुटकी
1: राम राम रत्न और खट पट तेरे खट जाएंगे।

और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के समाचार पत्रों की कुछ स्थानीय खबरों पर। अमर उजाला की खबर है, रामनगरी में रामलला के दर्शन के साथ साथ अब रामकोट परिक्रमा भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनती जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रतिदिन सुबह 5:30 पर रामकोट परिक्रमा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत, स्थानीय श्रद्धालु और राम भक्त शामिल होते हैं। पहले इस परिक्रमा में मुख्य रूप से अयोध्या के संत महात्मा और स्थानीय लोग भाग लेते थे, लेकिन अब रामलला के दर्शन के लिए देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालु भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। आगामी कांवड़ यात्रा और श्रावण झूला मेला की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करना है। महापौर गिरीश पति त्रिपाठी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को 3 अगस्त से पहले अपने दायित्व पूरे करने के निर्देश दिए। मुहर्रम के अवसर पर गुलाबबाड़ी क्षेत्र में हजरत कासिम की याद में शाही मेहंदी का जुलूस बड़े अदब व एहतराम के साथ निकाला गया। उनकी शहादत की याद में हर वर्ष शाही मेहंदी का जुलूस आयोजित किया जाता है। जुलूस गुलाबबाड़ी से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ इमामबाड़े पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ। भगवान राम की नगरी अयोध्या में प्रसिद्ध श्री कनक भवन और हनुमानगढ़ी मंदिरों में भव्य फूल बंगला झांकी सजाई गई। यह झांकी तपती गर्मी में आराध्य देवताओं को शीतलता प्रदान करने की सदी

0: सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। अमृत विचार की खबर है, श्री राम जन्मभूमि परिसर स्थित शेषावतार मंदिर पर आज मंगलवार शाम को धर्म ध्वज आरोहण का भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। और जिले में अवैध बस स्टैंडों के खिलाफ परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर नाका बाईपास, रायबरेली बाईपास और अग्रसेन चौराहा क्षेत्र में अवैध बस स्टैंड हटवाए, साथ ही बिना नंबर प्लेट के चल रहे 29 वाहनों का चालान भी किया। एआरटीओ प्रवर्तन गुलाब चंद्र ने कहा कि अवैध बस स्टैंडों, अनकृत यात्री वाहनों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमित अभियान चलाया जाएगा। ये थी आज के समाचार पत्रों की कुछ स्थानीय खबरें। इसी के साथ हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद, कॉल करें 91-16-76-47-46।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हुए हैं, आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शोभित द्विवेदी। कार्यक्रम का पहला संदेश हमें मिला है फिल्म आई मिलन की बेला के लिए। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं कोल सिटी बरका काना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। इसी फिल्म के गीत की फरमाइश की है फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल शालिनी, टिवानाशी और समस्त परिवार ने। तो आप सबकी पसंद पर, आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, फिल्म का नाम आई मिलन की बेला।

और अब आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा। फिल्म का नाम है लोफर। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा है। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से आप हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए लोफर फिल्म का ये गीत।

अब लीजिए सुनिए प्रोग्राम में शक्ति फिल्म का ये गीत, जिसके लिए हमें फरमाइश मिली है मलियान सरधना मेरठ से। आप हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन और मुस्कान जैन। इसी गीत की फरमाइश की है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगाहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी ने। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं शक्ति फिल्म का ये गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हेलो
4: सुनो, टेलीफोन नंबर,
5: माय नंबर इज
6: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
7: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अब लीजिए सुनिए धर्मवीर फिल्म का गीत, जिसके लिए हमें संदेश मिला है कृष्णा पार्क दिल्ली से। आप हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना, ग्राम और डाक

कुमार निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से, जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने भी इसी फिल्म के गीत की फरमाइश की है। तो लीजिए सुनिए धर्मवीर फिल्म से ये गीत।

गौरव भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम नगमा आप सबकी पसंद पर। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलबीर सिंह ने हमें संदेश भेजा है। सुनने के लिए फिल्म आदमी खिलौना है, इससे फिल्म का गीत।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhya@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
0: दोस्तों सुबह के 9:30 हो चुके हैं और शुरू हो चुका है सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। स्टूडियो में आपके साथ मैं हूं शोभित द्विवेदी। तो उठाइए फोन और डायल कीजिए 7376804090। जी हाँ, यही वो नंबर है जिसे मिलाते ही आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ, सुनेंगे अपनी ही पसंद का नगमा, होंगी ढेर सारी बातें आपसे। वही देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो

0: हेलो
1: जी, नाम बताइए अपना, कहाँ से फोन किया है?
0: मेरा नाम नवाब विश्वनाथपुर नवाबगंज गोंडा शिवपाल सिंह।
1: शिवपाल जी, क्या हाल चाल है?
0: बढ़िया है सर।
1: रेडियो थोड़ा सा दूर कर दीजिए या रेडियो से दूर हो जाइए।
0: दूर हो गया सर।
1: दूर हो गए, क्या करते हैं आप?
0: बस किराना दुकान है सर।
1: तो दुकान इस समय खुली कि नहीं? अभी
0: ये खुली है।
1: खुली है
0: 6 बजे।
1: 6 बजे से खोले हैं?
0: हाँ।
1: गाना कौन सा सुनेंगे?
0: हेलो,
1: गाना कौन सा सुनेंगे?
0: औरत तेरी यही कहानी का सर।
1: औरत तेरी यही कहानी।
0: गाने के बोल है कि ये क्या बोलते हैं, रात भर रही हो सुबह चले जाइयो।
1: चलिए शिवपाल जी, गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।

0: आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन है लाइन पर। हेलो
1: हेलो नमस्ते सर
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए।
1: साक्षी पांडे गोंडा से।
0: गोंडा से साक्षी?
1: गोंडा से सर।
0: क्या करती हैं साक्षी?
1: मैं तो पढ़ाई करती हूँ।
0: पढ़ाई करती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रही हैं?
1: नाइन्थ।
0: नाइन्थ में हैं?
1: यस सर।
0: और पढ़ाई के अलावा क्या करती हैं? घर के काम करती हैं कि नहीं?
1: करती हूँ थोड़ा
0: थोड़ा। थोड़ा
1: थोड़ा?
0: आज सुबह से क्या किया आपने? कौन सा काम किया घर का?
1: सुबह से चाय बनाया।
0: चाय बना के पी लिया? खुद पिया कि औरों को भी पिलाया? घर वालों को भी?
1: सबको पिलाया।
0: सबको पिलाया। तो साक्षी गाना कौन सा सुनेंगी आज?
1: गाना सर आपकी पसंद का।
0: मेरी पसंद का गाना?
1: यस सर।
0: आप बताइए अपनी पसंद का कोई गाना।
1: नहीं सर, आप अपनी पसंद का सुना दीजिए। आपकी पसंद बहुत अच्छी है।
0: अच्छा, मेरी पसंद अच्छी है?
1: यस सर।
0: चलिए साक्षी सुनवा रहे हैं, देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं।
1: यस सर। सर आप कहाँ रहते हो, आते नहीं हो?
0: नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, देखिए आपसे बात कर रहा हूँ।
1: तो सर आप कितने दिनों के बाद आ जाए?
0: ये कितने दिनों के बाद आया हूँ ऐसा तो नहीं है।
1: यस सर।
0: आप सुनते ही नहीं है
1: सर, आप कई दिन के बाद आए हैं।
0: चलिए साक्षी कोई बात नहीं, मिलते रहते हैं आप लोगों से हम, और गाना सुनवा रहे हैं साक्षी। मेरी पसंद का गाना है और उम्मीद है आपको पसंद आएगा।
1: यस सर, जरूर पसंद आएगा। बाय बाय।
0: बाय बाय।

0: है दोस्तों, देखते हैं अगले साथी कौन है लाइन पर। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: शिवपाल यादव सर, कोर्सना
0: से। शिवपाल जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है सर।
0: ठीक है, क्या करते हैं
1: सर? खेती बाड़ी का काम करते हैं सर।
0: खेती बाड़ी का, तो इस समय कहाँ, घर पर हैं, खेत पर हैं?
1: नहीं सर, घर पे हैं। इस समय घाम बहुत तेज हो रहा है सर ना।
0: घाम तो बहुत तेज हो रहा है
1: जी सर, गर्मी और घाम बहुत तेज है।
0: हाँ वही, गर्मी घाम बहुत तेज है, एकदम इससे बच के रहिएगा
1: जी सर।
0: लापरवाही एकदम नहीं, खेत में भी जाएं तो अपने साथ कुछ सर पे रखने के लिए गमछा वगैरह, पानी की बोतल वगैरह सब साथ में रखिएगा। शिवपाल जी।
1: जी सर जी।
0: गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: बरसात फिल्म का सुनेंगे सर।
0: बरसात फिल्म का? कौन सी बरसात?
1: नई वाली सर।
0: नई वाली
1: जी सर।
0: चलिए बरसात फिल्म का गाना सुनिए, और बरसात आ भी जाए तो बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए ना।
1: जी सर, 25 तारीख को मानसून था सर।
0: 25 तारीख? हाँ 25 तारीख को है
1: जी सर। मोबाइल दिखा रहा था सर,
0: मोबाइल में मौसम। हाँ मौसम का अलर्ट है 25 तारीख को। चलिए सुनते हैं। हाँ बताइए।
1: हमें तो यही लग रहा सर कि बरसेगा।
0: अरे ऐसा ना मनाओ भैया, बरस जाए ज्यादा सही बात है।
1: पानी लगा के आए हैं अभी खेत में।
0: देखिए वो बरसात तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये बरसात हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं, सुनिए।

0: सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अब आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन है। हेलो जी, नाम बताइए।
1: रेलवे स्टेशन से बोल रहे सर, आपको सर सर प्रणाम।
0: जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। नाम आपका क्या है?
1: राम उजागर गुप्ता।
0: राम उजागर गुप्ता। गुप्ता जी क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया सर जी, आपके आशीर्वाद से।
0: अच्छा आशीर्वाद, आशीर्वाद तो आप बड़े बुजुर्गों का है।
1: जॉनी मेरा नाम का गाना सुना दीजिए सर।
0: बिल्कुल सुना देंगे जॉनी मेरे नाम का गाना, सुनिए।
1: चुप मेरा रोए दर्द न जाने कोई।
0: कौन सा?
1: जॉनी मेरा नाम का चुप चुप मेरा रोए दर्द न जाने कोई।
0: चुप चुप मेरा रोए, ये गाना तो हमको नहीं नजर आ रहा है इस फिल्म में। गुप्ता जी।
1: हाँ जी सर।
0: इसी फिल्म का गाना है
1: सर।
0: जॉनी मेरा नाम का ही मैं सुनवा रहा हूँ, लेकिन ये गाना मुझे लगता है इस फिल्म का नहीं है शायद। चलिए लेकिन गाना जॉनी मेरे नाम का ही आपको सुनवा रहे हैं। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

नहीं है। आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात

0: क्षेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
3: सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से और हमारे अगले साथी लाइन पर। हेलो
4: जी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना, कहाँ से फोन किया है?
4: जी, हम मुजम्मिल अहमद बोल रहे हैं, उन्नाव से।
3: उन्नाव से मुजम्मिल भाई, क्या हाल चाल है?
4: ठीक है, हाल चाल आप बताइए, कैसे हैं आप?
3: मैं भी एकदम ठीक हूँ।
4: और आपके प्रोग्राम तो सुनकर और अच्छे हो जाते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं।
3: अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुजम्मिल भाई, उन्नाव का क्या हाल चाल? गर्मी तो बहुत पड़ रही है इस समय हर जगह।
4: गर्मी तो काफी पड़ रही है,
3: क्या
4: बारिश भी नहीं हो रही है?
3: बारिश भी नहीं हो रही है
4: जी।
3: तो बताइए क्या
4: आपको तुरंत जानो की बारिश करते रहते हैं तो दिन अच्छा गुजर जाता है।
3: जी बिल्कुल, आप लोगों की मोहब्बत है ये। बताइए आज कौन सा खूबसूरत गीत सुनेंगे आप?
4: जी कुमार शानू की आवाज में पैसा भी सुना दीजिए आप।
3: कुमार शानू के फैन हैं आप?
4: हाँ, अच्छे लगते हैं गाने।
3: अच्छे लगते हैं, नहीं बिल्कुल हमको भी बड़े अच्छे लगते हैं कुमार शानू के गाने। चलिए सुनाते हैं आपको कुमार शानू का ये गीत।
4: ओके थैंक यू।
3: ओके थैंक यू।

0: और अब आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए अपना।
1: ये कल सामने होवे तां गल करिए, होरे अर्थ ते बैठ के की करना, ए दुनिया बना घमांडे डंग ते डुब के मरन नूं जी करदा। जी के भी मार के डंग सर, मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी बोलता हूँ सर।
0: जी पंजाब से अंसारी जी, क्या हाल चाल है?
1: बहुत अच्छा है, शुक्र अल्लाह का। और भी अच्छा हो गया था, यहाँ आकाशवाणी अयोध्या में फोन लग गया था।
0: जी कब से मिला रहे हैं फोन यहाँ पर आप?
1: मैं सर तकरीबन 9:30 से ट्राई कर रहा हूँ।
0: कितने दिन से मिला रहे हैं, कितने महीने से, कितने सालों से?
1: तकरीबन मेरा फोन अगर क्या होगा ना, मैं जैसे तो मेरा अयोध्या फोन लग ही आता है, मैं तकरीबन हो गए 12-13 दिन 14 दिन।
0: आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: ये काम सुनेंगे रोटी फिल्म का, रिलीज करना की पिक्चर रहे यार हमारी बात सुनो।
0: फिल्म देखी है आपने?
1: हाँ फिल्म देखी है, बहुत अच्छी है, फिल्में तो पुरानी बहुत अच्छी होती है।
0: जी बिल्कुल। तो अनवर भाई गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का, और हमको
1: थैंक यू सर।
0: जी कॉल करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।

0: तो दोस्तों हेलो अयोध्या का सफर आज बस यहीं तक। हम आपको बता दें, कंट्रोल रूम से हमारे साथ लगातार बने हुए थे स्वप्निल मिश्रा।
1: इंसान सुनो, वो जिस्मानी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो।
0: तो सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या से दीजिए इजाजत अपने दोस्त शोभित द्विवेदी को।

आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है, आप हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी। सुबह के 10 बजे हैं, आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि 12:30 बजे आप सुनेंगे लोक रंग लोक संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 1 बजे और 2 बजे का समय होगा गीतांजलि का। नारी जगत कार्यक्रम हमारी बहनें सुनेंगी 2:30 बजे से, और इसमें आज चर्चा होगी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर। साथ ही सुनिएगा कहानी शहरी विधवाओं की स्थिति पर, शीर्षक विधवा कोई रंग नहीं, कहानीकार है पूनम सूद। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या को। और अब जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से।
1: आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने, आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये अवसर देने के लिए, आपसे बात करने के लिए।
2: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
3: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारे हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा
2: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो

0: डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है, तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
1: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं, उनमें अब 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गांवों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, तो ये बीमारी थोड़ी कम है, और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है, और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए, तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है, सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है।
0: जी, तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
1: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है, हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है, अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
0: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
1: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ, तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है, अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये 2-3 लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
0: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
1: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है, अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है, अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसान दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में, जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है।
0: जी,
1: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है। अब ये सारे

0: टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर यू नो मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि दो मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूँ कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: जी, और सबसे बड़ी बात ये है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
1: अच्छा।
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर आके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। तो 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है मेरा।
0: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक एमडी मेडिसिन की हमने वहाँ पे तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो एमडी मेडिसिन एमबीबीएस के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखे, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ईआरसीपी करके टेस्ट होते हैं जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को, फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया।
1: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यू नो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन देती है कि हम एक दवाई लिख के दें। तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5-10% भी वजन कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5-10% अपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाई है, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में 2 और दवाइयां अभी अप्रूव हुई हैं, एक साल पहले हुई थी, कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज्यादा दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल है दवाइयां, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर डिसाइड कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयां थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3-6 हफ्ते का चांस देता हूं कि वेट लॉस करो। अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
0: हाँ, बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम. फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है. तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है.
1: जी.

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली

0: जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से उन श्रोताओं की ओर से भी कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
1: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, अभी ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दे, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है, एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है। तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा।
0: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को।
1: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ, लाइक थोड़ी बीट होनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना,
0: क्या बात है,
1: मुझे पसंद है।
0: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है, सुनते हैं यही गाना। और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करते हैं कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफी हद तक खराब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल की जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
0: ओके,
1: सो इट वर्क्स बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: ना, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है, खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो? और सबका सवाल, आधे लोग बोलते हैं हाँ वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है, अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है।

0: जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जिसमें आप वॉकिंग करते हैं और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए. आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए. हफ्ते में दो दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े. अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को. तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए.
1: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा.
0: हाँ, ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है. और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते. मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादा कर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं. अगर हमारी डाइट देखे 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है. और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में. तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए. हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम. इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं.
1: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें. इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें. और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब.
0: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं. अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहे. सुनते हैं यही गाना.

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बताते हैं विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा है मुझे, किसी ने लिखा है मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बॉल सिंड्रोम क्या है, IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रोबेबली फैटी लिवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है। तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज्यादा लो, फल फ्रूट ज्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो

0: एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है. एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है. वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं. एक बात आपने सही की कि ये आईबीएस गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है. तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म. एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना. कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं. आईबीएस होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना. तो ये जानना बहुत जरूरी है. इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी. हर एक बीमारी को अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, बट एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम.
0: जी.

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी।
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हेवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ और लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रीगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है
0: जी। तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो। सबसे इंपॉर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। खाने के बाद टहलिए थोड़ा।

0: 15 मिनट तक खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: जी जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
0: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को, जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है। खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
1: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रहा, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस एच पाइलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल है, फिर क्या?
0: हाँ, तो एक्चुअली एच पाइलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पाइलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पाइलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पाइलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पाइलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पाइलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे IBS बोला मैंने पहले,
1: जी, जी, जी.
0: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
1: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
0: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती है, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है। माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
1: दोनों एक दूसरे के पूरक है।
0: Correct.
1: और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
0: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का एक गाना है, छैया छैया
1: चल छैया छैया, सुनते हैं यही गाना।

डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि जो समस्या है एसिडिटी की, सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि दो दिन के

0: हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं दो दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो आपको दे देंगे दवाई, तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है बिकॉज ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिडिटी की दवाई अगर ज्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज्यादा रहते हैं। विटामिन न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्सॉर्ब होते हैं पेट के आगे से वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए। कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए, तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी है हमारे काफी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी करते हैं जैसे अपने का दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज अ प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा जरूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूं कि एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ। सो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
0: जी, लेकिन वो आदत न डाल लें, ये गड़बड़ है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियां होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियां, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
1: अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होता रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज्यादा देखते हैं डायबिटीज पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज पेशेंट्स को अगर डायबिटीज बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती है, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो डायबिटीज पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपेरिसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो।
0: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: कपिल शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यह है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।

0: नरेंद्र चंचल की थी, फिल्म का नाम था बॉबी। इस गीत को लिखा था राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में संत मीराबाई का भजन। इसे संगीत में ढाला है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और रचना संत मीराबाई की थी,
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: बेगम अख्तर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं एक शास्त्रीय रचना। आप सुन रहे हैं इनकी गाई ये कजरी।

0: दर्शन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जगजीत सिंह की आवाज है और संत कबीर का ये भक्ति।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानी बाबू गव्वाल की आवाज में ये गव्वाली। इसे लिखा है सबा अफगानी ने।
4: ये हुस्न वाले भी कैसा कमाल।

0: जानी बाबू कव्वाल और उनके हमनवा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में फिल्म साथ साथ की ये गजल। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है और धुन बनाई है कुलदीप सिंह ने।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर शंभू कव्वाल की आवाज में अमीर खुसरो की ये रचना।
1: शिकायत कभी न की लबों पे सा।
0: और ये आवाज है विशाल मिश्रा की। आप सुन रहे हैं इनका गाया ये गैर फिल्मी गीत।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के

0: साथ साथ मेरी गजल सुनो। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिव्या कुमार और आदित्य सिंह शर्मा की आवाज में ये पारंपरिक गीत।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं उस्ताद मेहदी हसन की आवाज में ये राजस्थानी मांड।

کیسریا محمود سے مخاطب ہیں.

केसरिया बालम आओनी पधारू मारे देश। मेहदी हसन की आवाज में अभी आपने ये मांड गायकी सुनी और इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं की जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑफ ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुँच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली

0: पल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज अभिनेता राज बब्बर साहब का जन्मदिन है। हम विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में, यानी यादों की महफिल कार्यक्रम में, हमने राज बब्बर की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। ये है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है निकाह। आवाजें महेंद्र कपूर और सलमा आगा की। गीत को लिखा है हसन कमाल ने और धुन बनाई है रवि ने।

शशिंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में अभी अपनी फिल्म निकाह का ये गीत सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम याराना, गीत रचना रानी मलिक की और धुन अनु मलिक की है।

0: कभी तो कृष्णमूर्ति की आवाज थी और फिल्म का नाम था याराना।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत, युगल स्वर सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की, फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत। फिल्म का नाम है वारिस और गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं और आप हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर कभी भी कहीं भी। जी बिल्कुल, आप ट्यून कीजिए 101.9 MHz। आप इस पर सुन सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या को। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आपकी बात कार्यक्रम में,
4: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
3: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
4: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
5: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
4: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
5: 830-321-9911 पर भेज दें।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी लोक संस्कृति, हमारा संस्कार, हर उत्सव और रिश्ते की अपनी एक मधुर धुन है। इन्हीं धुनों में बसती हैं हमारी परंपराएं, हमारे भाव और पीढ़ियों से चली आ रही लोक स्मृतियां। विवाह, विवाह संस्कार ऐसा संस्कार होता है जिसमें बहुत खुशियां, बहुत उल्लास होता है। और विवाह से पहले एक रस्म होती है तिलक की। तिलक की रस्म में दो परिवारों के स्नेह, सम्मान और शुभकामनाओं का प्रतीक होता है। और इसे माना जाता है कि भाई इससे आज से रिश्ता पक्का समझा गया। जब तिलक की बेला आती है तो घर आंगन लोक गीतों की मधुर स्वर लहरियों से गूंज उठता है। ये गीत केवल खुशी का इजहार नहीं करते, बल्कि रिश्तों की गरिमा, अपनत्व और मंगल कामनाओं को भी स्वर देते हैं। तो आइए लोक परंपराओं की इसी सुगंध को महसूस करते हैं। लोक जीवन की मिठास, रिश्तों का सम्मान, मंगल भावनाओं का मधुर संगम लिए ये तिलक गीत।

इस गीत को सुनकर आप एक बार तिलक के उस उत्सव में एकदम पहुंच जाएंगे मन से। वो हंसी, वो ठिठोली बिल्कुल याद आएगी आपको।

की रस्म के बाद नंबर आता है विवाह का। जब घर में विवाह की शहनाइयाँ गूंजती हैं तो गीतों के स्वर हर कोने को उल्लास से भर देते हैं। बहनों का स्नेह, मंगल कामनाएं और सुहाग की भी छटा लोक गीतों में बड़ी खूबसूरती से उतर आती है। आइए इसी मधुर परंपरा से जुड़ा एक सुंदर विवाह गीत सुनते हैं।

घर में शादी, दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी, बहन सहेलियां, हर किसी के मुख पर खुशी उल्लास का एक अलग ही रौब है। हंसी छिटोली से घर का हर कोना चहक रहा है। जी बिल्कुल, यही वो पल है जिसका इंतजार था, जिसको सहेजे हुए बेटी अपने घर से विदा लेती है। इनमें एक बेटी के नए जीवन के सपने, परिवार का स्नेह और उज्जवल भविष्य की कामनाएं सहज रूप से झलकती हैं। सुहाग की लालिमा मंगल भावनाओं की छांव और लोक गीतों की मधुरता, इन्हीं भाव से सजा है हमारा अगला लोकगीत।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो जिस
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
2: शादी ब्याह में एक पल आता है जब कन्यादान का समय आता है, माता पिता के कलेजे का टुकड़ा जो वो वर को सौंप देते हैं। कन्यादान वह बेला है जब पिता का स्नेह आशीर्वाद बनकर बेटी के साथ चलता है, माँ की ममता आंखों की कोरों में सिमट आती है। ये संस्कार त्याग का नहीं, विश्वास का उत्सव है, नए जीवन की शुरुआत और मंगल क्षण है। लेकिन फिर भी कन्यादान के समय सभी की आंखें नम,

लोक गीतों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें प्रकृति प्रेम, लोक जीवन सब एक साथ मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। पेड़ों की छांव, बहती नदियां, गांव की पगडंडियां और मन के कोमल भाव सब कुछ इन गीतों में जीवंत हो उठता है। ऐसा ही एक मधुर गीत हम आपको आगे सुनवाने वाले हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पति सुम
4: इसी के साथ हमारा लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अभी आपने सुना कार्यक्रम लोक रंग, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दिन के ठीक 1 बजे हैं, सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और भाई साहब क्या हाल है?
3: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
2: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
3: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का हमारे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में बहुत बहुत स्वागत करती है आपकी रेडियो दोस्त प्रतिभा से। हम लेकर हाजिर है आपका अपना प्रिय फरमाइशी संगीत कुछ तुमने कहा। ये भाषा है जो दिलों को जोड़ती है, यादों को ताजा करती है, जीवन के हर रंग को सुरों में पिरो देती है। तो आइए अगले कुछ पलों तक हम और आप साथ मिलकर सुनते हैं आपकी मनपसंद गीत जो फरमाइशें आपने हमें फेसबुक पर भेजी हैं। सुरों की महफिल सजी है, गीतों का कारवां तैयार है और आपकी फरमाइशें हमारे पास पहुंच चुकी हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। गीतों की रंगोली हमने सजा रखी है और पसंद है आप सभी की। भैया, आप सभी ने इतने प्यार से हमें संदेश भेजे तो संदेश हम पढ़ेंगे भी और आपकी पसंद के गीत भी सुनवाएंगे। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म 1920 एविल रिटर्न्स से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजूरिया, कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, अक्षय कॉलोनी गोंदू रोड धुलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, फैजल इमाम हयात कॉलोनी अररिया बिहार से उत्तरा दिवाकर पीपरपारा पालगवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से संदीप कुमार, कमल सानी पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से।

फरमाइशों का सिलसिला यूं ही जारी है। अगला गीत हमारे श्रोताओं की पसंद पर श्रोता है आप सभी, जिसने बड़े ही प्यार से हमें ये संदेश भेजा है। और अगर आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे कार्यक्रमों से, तो आप भी हमें अपने संदेश भेजें, अपने पसंद के गीत फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और अब सजीव फोन इन कार्यक्रम में भी आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो कहीं से भी आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी पसंद के गीत भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है फिल्म किसी का भाई किसी की जान से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता है बोधराज कोकाल नई दिल्ली से, रमेश चौहान कुड़ी सेक्टर 5 सूरी नगरी जोधपुर से, माखन वर्मा नानघाट छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद रफीक पवार सदर बाजार कुरावली से, अशोक सिंह धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से, देवी नेतम अमर खेड़ा रेगा खार गपीर धाम से, खिल्लू परवेज हरदोई रोड लखनऊ से, चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से, मुकेश गौतम उत्तम कुमार भागवत पाकुड़ झारखंड से, मुकेश शर्मा दुर्ग भिलाई से, सत्येंद्र चंसौलिया जिला जालौना से, रूपेश संगई परभणी महाराष्ट्र से, अशोक वर्मा जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी नंदिनी ज्योति नगर से, नोखा राजस्थान पुखराज बडगोजर, विजय मोहन 18 जगधारी जिला यमुनानगर हरियाणा से, धीरज भाई गुजरात पाटन से, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा झज्जर हरियाणा से, बिट्टू भाटिया जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकोस्ट्रा। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत किसी का भाई किसी की जान से।

0: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का, लेकिन घबराए नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
4: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
3: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
4: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
3: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
4: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
3: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।

बिल्कुल, हमें पता है कि आपको इंतजार है अगले गीत का और सुनना है आपको अपनी पसंद का गाना। तो अभी हम एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि समय अभी भी है, आप लोग हमारे कार्यक्रमों को सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी। आपको करना क्या है कि आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर डाउनलोड कीजिए और हमारे कार्यक्रमों को कहीं भी कभी भी सुनिए। बढ़ते ही कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ,

अगला गीत फिल्म गदर 2 से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जीके परमार गांधीनगर गुजरात से, दातार सिंह गोविंदपुरा सीकर से, सुनील पाठक अनारकली बाजार जगराव से, पूजा जी नवाकर नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, चंदौसी रोड चमनपुरा से, मुकेश गौतम नारायण लाल साहू राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद यासीन अंजन दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से, बोधराज खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से, मोहम्मद फैजल इमाम हयात कॉलोनी अररिया बिहार से, दिनेश वर्मा रिंगनीगढ़ छत्तीसगढ़ से, राधेश्याम शर्मा ग्राम हांडी खेड़ा जिला सिरसा से, संजय ढिंगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, विष्णु ट्रेलर दयानंद कॉलेज भवानी पेट शोलापुर महाराष्ट्र से, राजेश कुमार वर्मा शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, विक्रम मालवीय गुलबालोद तहसील आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से, गजानन येले सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से, अरुण कुमार मालवीय बड़ी गैवी चौराहा वाराणसी से, नरेंद्र मल्होत्रा खैले बाजार पानीपत से। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत फिल्म गदर 2 से।

0: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: गीतों का सिलसिला जारी है और आपकी पसंद के गीत हम अपने इस कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में शामिल भी कर रहे हैं। और कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म धर्मकांटा से पसंद करने वाले श्रोता है हर्ष सिंह बनवीरपुर से, राधेश्याम निषाद हाजीपुर से, राम निहाल सुरेंद्र निषाद दराबगंज से, संजय कुमार साहू पोटिया।

तला दुर्ग से सतीश अनेजा, चंडीगढ़ से धीरज गुप्ता, उघीती से ओम प्रकाश राय, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से रज्जाक मोहम्मद, हनुमानगढ़ राजस्थान से रियासत हुसैन, जसपुर उत्तराखंड से लाल बाबू गोस्वामी, रघुनाथपुर श्रीगंगानगर से राधा नामदेव, सहारनपुर से अरविंद कुमार, बेनीपट्टी मधुबनी से विजय सुरलकर, मोताला महाराष्ट्र से जगमोहन सिंह प्रजापति, लोहडडा जिला बागपत से सुभाष चंद्र बजाज, कालका से बालकृष्ण, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से जीवन विश्वकर्मा, गाड़ीखाना चाईबास झारखंड से रश्मि पांडे, राजकोट गुजरात से सुरेश जायसवाल, जमनिया जिला गाजीपुर से मोहम्मद इंतजार, भोजपुरा तगा, सहारनपुर से महेंद्र मोदी, रामगढ़ कैन से ओम बगड़िया, ग्राम बांडीवाला फजलिका पंजाब से उत्तम कुमार भगत, पाकुड़ झारखंड से राजू कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार से दिनेश नामदेव, चंपा छत्तीसगढ़ से जीके पवार, गांधीनगर सेक्टर 2 गुजरात से हुकुम कमलकर, बर्डी मध्य प्रदेश से। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश फिल्म एक दूजे के लिए पसंद करने वाले श्रोता है विनोद वंडलकर रायपुर छत्तीसगढ़ से। इसी गीत की फरमाइश की है विक्रम मालवीय जी ने जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। निसार सलमानी धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। रज़ाक खान इसी गीत की फरमाइश उन्होंने की है ढानकी रोड उमरखेड़ा महाराष्ट्र से। ग्राम नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। वेद प्रकाश मिड्डा गजानन गेले इन्होंने हमें इसी गीत की फरमाइश भेजी है। मसरूर हुसैन ग्राम कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। उत्तरा दिवाकर पीपर पारा पांच लवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण शर्मिली की। अरुण कुमार मालवीय बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से। योगेश सर्वा छाई बरखा फुहार से। उरेटा डोंडी लोहरा जिला बालोद से इन्होंने इसी गीत की फरमाइश में। महाराज कीर्तन गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। राधे श्याम शर्मा ग्राम हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से। लोहडडा जिला बागपत से। जगमोहन सिंह प्रजापति इसी गीत की फरमाइश हमारे पास है। रविंद्र सिंह छाबड़ा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। मशहूर हुसैन ग्राम कुमार हेड़ा सहारनपुर से। फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से। रवि कुमार राहुल कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से। जाकिर मंसूरी बाजार रोड मुंगेसापुर से। प्रमोद कुमार साहू बोड़सरा नैनी नैला छत्तीसगढ़ से। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत फिल्म एक दूजे के लिए

संगीत की स्वर लहरियां गूंज रही हैं आपकी अपनी आकाशवाणी केंद्र अयोध्या से, और आप बने रहिए हमारे कार्यक्रमों के साथ, सुनते रहिए प्यारे प्यारे गीत जो आपने पसंद किए हैं। हमारे श्रोताओं की पसंद भाई सर्वोपरि है, सबसे पहले आपकी ही पसंद है भाई, आपकी पसंद के सारे गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आपके नाम अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं जिन्होंने पसंद किया है। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है फिल्म आन मिलो सजना से पसंद करने वाले श्रोता हैं बीरेंद्र भगत हजारीबाग झारखंड से, मोहम्मद सईद अब्बासी ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से, विनोद लेखपाल रावर करनाल से, सुरेश जायसवाल जमनिया जिला गाजीपुर से, भोजपुर तगा सहारनपुर से, मोहम्मद इतजार दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दातार सिंह गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, सुभाष गोदरा हीरावली फजलिका पंजाब से, जी के परमार गांधीनगर गुजरात से, राजेश वर्मा गांव बांडी वाला फजलिका से, मालवा रेडियो श्रोता संघ तहसीला लोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, कुंवर कृपाल सिंह संतोष नामदेव इन्होंने हमें भेजा है संदेश बघेरा दुर्ग से, रश्मि पांड्या राजकोट गुजरात से, खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, उत्तम कुमार भगत पाकुड़ झारखंड से, के आर साहू देवरी भट्टपारा से, रिजवान खान अंबालागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, पटेल नगर मालोट से, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, महेंद्र मोदी रामगढ़ कैंट से, नंद कुमार ठाकुर चरौदा बार नवापारा अभ्यारण जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, जबलपुर मध्य प्रदेश से माधव नामदेव, सैयद यूनुस इन्होंने हमें संदेश भेजा है आष्टी जिला जलाना मराठवाड़ा से, इसी गीत की फरमाइश हमारे पास है सलार पहलगाम से, पीरजादा मेहरुद्दीन अनिल वर्मा सदर बाजार कुरावली, उत्तम कुमार पाकुड़ झारखंड से, सुदर्शन साह पद्मा टॉकी से, और तालुका नेवाला खुपट्टी से। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत फिल्म आन मिलो सजना से। जी बिल्कुल, गीत ऐसे हैं कि आपको झूमने पे मजबूर कर देंगे। गर्मी तो बहुत है, गर्मी में अपना ख्याल भी रखिएगा, लेकिन इस गर्मी से राहत देगा थोड़ा सा ये हमारा मधुर संगीत।

बिल्कुल है। चलते चलते अगली फरमाइश हम आपको बता दें, फिल्म कलंक से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं प्रमीर शुक्ला, चिन्मय माथे जमशेदपुर से, बालूअप्पा गढ़बले, उमरी नांदेड़ महाराष्ट्र से, अनवर अंसारी अहमदनगर मंडी पंजाब से, राजकुमार रिवार सादुल शहर से, रफी रहमान मंगल बाजार कटिहार से, रश्मि पांड्या राजकोट गुजरात से और ताज अंसारी आजाद नगर लश्कर से, बाबू भाई उदयपुर राजस्थान से, ताज अंसारी बिलाई छत्तीसगढ़ से, रमेश काम्बोज मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से, ग्राम फरासी जिला हिसार से, राजकुमार दौदी राजू मठे इन्होंने हमें ये संदेश भेजा है महाराष्ट्र से। इसी गीत की फरमाइश की है कांति शुक्ला ने, तो पेश है आप सबकी पसंद पर ये गीत। हरजिंदर सिंह छिंदा इसी गीत को सुनना चाहते हैं, नथाना पंजाब से, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से टेक राम यादव, राजू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, बीके हितेंद्र पाल आसाम से, सिद्धार्थ गोंडे राहुल नगर अमरावती से।

0: है इशारा कि हम आपसे लें विदा इस कार्यक्रम से। अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दिन के 2 बजे हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: पति सुमेश की असफल

क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गड़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।

गीत गजलों के कार्यक्रम गीतांजलि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गजलों की नरम नाजुक भावनाएं दिल को छू जाती हैं। मुस्कुराहटों से सजी हो जब हर किसी की एक अदा, मुस्कुराहटों से सजी हो जब किसी की हर अदा, गीत भी फिर उसी के नगमे गुनगुनाता है।

लफ्जों में ढलते नहीं, बस महक बनकर दिल के करीब रहते हैं। कभी यादों में, कभी ख्वाबों में वो चुपके से आकर जिंदगी को महका देते हैं। या यूं कहें कि महक का कोई घर नहीं होता, वो हवाओं के साथ सफर करती है। और मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता, वो हर पल दिल में असर करती है।

0: अपने वाहन को भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर-उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: इसी के साथ हमारा गीत गजलों का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों का प्रसारण, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है, तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूट जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया।

0: गया था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
2: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीदकारों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
2: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलमार्ग मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास

0: प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। दिन के 2:30 हुए हैं, हमारी बहनें इंतजार कर रही होंगी अपने कार्यक्रम का, तो पेश है कार्यक्रम नारी जगत।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
2: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
3: कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनते है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत है अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत है फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
4: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
6: स्वागत है हमारी प्यारी सखियों का आज के नारी जगत कार्यक्रम में और आज के कार्यक्रम में आपके रेडियो सखी मैं क्षमा आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज है 23 जून और आज के दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस को लोक सेवकों के योगदान का सम्मान करने का दिन है और ये दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा एक महत्वपूर्ण सम्मेलन को अपनाने का भी प्रतीक है। 2025 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा मंच और पुरस्कार समारोह किया गया था, जिसमें समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुण का जश्न मनाने के लिए भी नामित किया गया था। बहनों, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार लोक सेवा दिवस पर सार्वजनिक सेवा की भूमिका, प्रतिष्ठा और दृश्यता को बढ़ाने के लिए किए गए योगदान के लिए दिया जाता है और ये दिन उस तारीख की वर्षगांठ का भी प्रतीक है जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रम संबंधों पर कन्वेंशन को अपनाया था और ये कन्वेंशन दुनिया भर में सभी सिविल सेवकों की कामकाजी परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए भी एक रूपरेखा है। बहनों, लोक सेवा की भूमिका सामाजिक विकास, शासन और सामुदायिक कल्याण के लिए आवश्यक है। इसकी महत्वपूर्ण नीति है नीति प्रशासन और सार्वजनिक कल्याण प्रदान के लिए है। इसका उद्देश्य 2030 तक 5 वर्षा सतत भविष्य के लिए लोक सेवा वितरण में तेजी लाना है, वैश्विक विकास के लिए लोक सेवा में परिवर्तन लाना, लोक सेवा सतत विकास का मार्ग प्रशस्त है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। बहनों, हर साल 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली गरीबी, सामाजिक कलंक, अन्याय और मानवाधिकारों के हनन के मुद्दों पर दुनिया भर में जागरूकता फैलाना और उन्हें सशक्त करना है। बहनों, दुनिया भर में लगभग 25 करोड़ से अधिक विधवाएं हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा भीषण गरीबी और सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा है। ये दिन उन्हें समाज के मुख्य

0: धारा में लाने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है समाज में अब कुछ सुधार हो गया है, महिलाओं की स्थिति को सुधारा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जहां भी विधवाएं हैं उनकी स्थिति अभी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं है। विधवाओं को संपत्ति में उचित हिस्सा, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक कार्य और शिक्षा के समान अवसर दिलाने पर भी जोर दिया जाता है। बहनों, कई संस्कृतियों में विधवाओं और उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, जिसे रोकने के लिए कानूनी सहायता और जागरूकता बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की स्थापना लुम्बा फाउंडेशन द्वारा की गई थी। 23 जून की तारीख इसीलिए है कि इस दिन को लॉर्ड लुम्बा की माता श्रीमती पुष्पावती लुम्बा को समर्पित है, जो 1954 में इसी दिन विधवा हुई थी। उन्होंने अपनी माता जी की स्थिति देखकर, जो उनकी स्थिति उस समय थी उसके उसको स्थिति को अच्छा करने के लिए उन्होंने लुम्बा फाउंडेशन की स्थापना की। बहनों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2010 को एक प्रस्ताव पारित कर आधिकारिक रूप से प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाने की घोषणा की है। पहला संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विधवा दिवस 2011 में मनाया गया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य विधवाओं की दशा को सुधारना है, अगर वो किसी भी प्रकार से वांछित हैं। और बहनों, इसी विषय पर हम एक कहानी भी लेकर आए हैं विधवाओं की स्थिति पर, जिसका शीर्षक है विधवा कोई रंग नहीं।
1: सुमेश की असमय मृत्यु के साथ संगीता की चूड़ियां ही नहीं, कई सपने भी चकनाचूर हो गए थे। वो सपने जो उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के 10 बरस में बड़े प्यार से संजोए थे। दो प्यारे बच्चों को टॉप के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना, उन्हें अच्छा खान पान, अच्छी परवरिश देने के लिए सुमेश और संगीता ने अपने छोटे शहर का घर बेचकर इस बड़े शहर में किराए पर फ्लैट ले लिया था। 1-1.5 साल तक उन्हें लगा कि बड़े शहर में शिफ्ट होकर उन्होंने शायद ठीक किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें पता लगा कि बड़े शहरों के खर्चे भी बड़े ही होते हैं। एकदम से खर्चों में इजाफा होने से सुमेश तनाव में रहने लगा था। उसने संगीता से कई बार कहा कि उसने बहुत हिसाब से बड़े शहर में बसने का निर्णय लिया था, पर कई खर्चे यहाँ आने पर सामने आए। किराए के अलावा हर महीने सोसाइटी की मेंटेनेंस, बच्चों के स्कूल के ऊपरी खर्च और भी कई अनगिनत खर्चे, सब पूरा हो रहा था पर सुमेश कुछ बचा नहीं पा रहा था। उल्टे कई बार उसे अपनी बजट का ही सहारा लेना पड़ता। संगीता ने कई बार सुमेश से कहा कि वो भी कहीं नौकरी करके गृहस्थी की गाड़ी चलाने में उसका आर्थिक सहयोग करे, परंतु सुमेश ने हर बार नकार दिया। वो हमेशा कहता, तुम हम सबको और घर को इतने सुचारू रूप से संभालती हो, वही क्या कम है जो मैं तुम पर बाहर का अतिरिक्त बोझ डाल दूं? सुमेश की यही सब बातों से याद आती है। उसका मन करता कि कहीं से एक बार सुमेश उसके सामने आ जाए तो वह उससे पूछे कि अब क्यों घर बाहर और सारी जिम्मेदारियों का टोकरा उसके सिर पर रख के वह स्वयं मुक्त हो गया है। सुमेश के माता पिता गांव में रहते थे। उन्होंने संगीता से गांव में चलकर रहने को कहा। संगीता के पिता उसके भाई के साथ मुंबई में रहते थे। उन्होंने भी सुमेश के पिता का समर्थन किया। अकेली जवान औरत को 2 बच्चों के साथ शहर में छोड़ना ठीक नहीं था। सभी रिश्तेदार बिरादरी इस फैसले पर एक मत थे कि संगीता और उसके बच्चों को गांव चले जाना चाहिए। संगीता ने कई बार गुहार लगाई कि मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। सुमेश का ये सपना उसे ही पूरा करना था। वैसे भी वो आज के समय में पढ़ाई का महत्व समझती थी, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उनके पास अपनी बात मनवाने के लिए बहुत से तर्क थे। जैसे सुमेश ने भी तो अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में की थी। जिनको पढ़ना होता है वे गांव या छोटे शहरों में रहकर भी पढ़ लेते हैं। अगर सुमेश भी वहां छोटे शहर में रह रहा होता तो शायद जीवित होता। पत्नी और बच्चों के बड़े शहर में बसने की ललक ने उसे तनावग्रस्त कर काल के मुंह में धकेल दिया, इत्यादि इत्यादि। संगीता के दिमाग में उस वक्त काम करना बंद कर दिया था। इस शहर में संगीता सुमेश की मित्र मंडली तो थी नहीं, बस आस पड़ोस के 4-5 लोग और सुमेश के दफ्तर के सहकर्मी से ही थोड़ा बहुत मिलना जुलना था। सुमेश के दफ्तर के मित्र अजय भैया और उनकी पत्नी चारू से उनकी आत्मीयता थी। अपने अपने निजी परिवारों से दूर दोनों एक दूसरे का परिवार बन गए थे। सुमेश के यूं चले जाने से अचानक वे दोनों भी आघात थे। संगीता को परिवार के समक्ष लाचार और विवश देख चारू ने अकेले में उसे समझाया, देख संगीता, ये समय

हिम्मत से काम लेने का है, बहुत सोच समझ के कदम उठाना। अभी 10-12 दिनों में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। तुम अभी किसी भी सूरत में बच्चों का नाम स्कूल में से मत कटवाना। यहाँ बड़े शहर में बड़ी कठिनाई से बड़े स्कूलों में प्रवेश मिलता है। संगीता फफक पड़ी। भाभी, ये लोग यहाँ का सब कुछ बेचकर मुझे और बच्चों को गांव ले जाने का फैसला कर चुके हैं। कोई मेरे साथ नहीं दे रहा, न मैं का न ससुराल का। चारू ने कहा, अजय ने कल हवन के बाद तुम्हारे ससुर से और जेठ से बात की थी। उनका इस शनिवार गांव जाने का विचार है। वह चाहते थे कि यहाँ का जो सामान गांव जाना है वो एक बार ट्रक से चला जाए और बाकी जो बेचना है बेच दिया जाए, जिससे मकान जल्द से जल्द खाली हो जाए और किराया बचे। अजय ने उनसे झूठ ही कह दिया कि इस मकान के मालिक मुंबई में रहते हैं, इसलिए अब की जब वो आए थे तो सुमेश ने उन्हें 3 महीने का एडवांस चेक काट दिया था। अजय और चारू हर संभव प्रयास कर रहे थे कि संगीता और उसके बच्चों के जीवन में आई कमी उनके आने वाली जिंदगी तबाह न कर दे, लेकिन उनके कहने की भी एक सीमा थी। सुमेश का पूरा परिवार बार बार संगीता और बच्चों को कोस रहा था, ना वो शहर आते ना ये दिन देखना पड़ता। संगीता ने अपने पापा और भाई से कहा कि कम से कम वे तो उसके बच्चों के भविष्य का ख्याल करें। भाई ने कहा, देख संगीता, जब हम जिम्मेदारी उठा नहीं सकते है ना, तो हमें बीच में उनके फैसले में बोलने का भी हक नहीं। पापा को तो वैसे ही तुम्हारे जेठ कह रहे थे, आज की महंगाई में 3 लोग को बिठा के खिलाना बहुत मुश्किल है, कम से कम एक बच्चे को तो आप अपने साथ ले जाओ, बाकी बेटी की जो मदद करना हो करते रहिएगा। ये सुनकर तो संगीता सन्न रह गई। सुमेश की 13वीं गांव में होनी थी। चारू ने कहा वो 13वीं के कुछ दिन बाद गांव रहकर देखे, तब तक अजय से बात करके कोई हल निकालती है। सुमेश अजय से सलाह मशवरा करके ही पैसा लगाता था। इधर सुमेश कुछ खास बचा नहीं पा रहा था, पर जो कुछ भी उसके पास था वो अजय की जानकारी में था। संगीता बस इतना जानती थी कि सुमेश अपने सारे कागज पत्र एक हरे फोल्डर और पीले रंग की फाइल में अपनी कपड़े वाली अलमारी के लॉकर में रखता था। सारे सिरे उधड़े छोड़ संगीता बच्चों और रिश्तेदारों के साथ गांव आ गई। शहरी सुविधाओं में रहने के बाद गांव कुछ ज्यादा पिछड़ा लग रहा था, जबकि उसके ससुर का 2 मंजिला पक्का मकान था। ऊपर जेठ जेठानी का कमरा था, नीचे रसोई थी जिस पर सासू जी का पूरा कंट्रोल था। संगीता के पहुंचते ही गांव की औरतों ने उसे घेर कर रोना शुरू कर दिया। संगीता को बच्चों की चिंता थी, वह दीवार से सटकर सहमे खड़े थे। शाम होते गांव की बूढ़ी अम्मा, जिन्हें सब ददिया कहते थे, उसके पास आई और बोली, बहू मैं भी तुम्हारी उम्र में विधवा हो गई थी। मेरे पास 5 बच्चे थे, जिनमें 4 तो लड़कियां थी और 5वीं लड़की तो पति के गुजरने के 6ठे दिन हुई। मैं समझती हूँ अकेले बच्चे पालना कितना मुश्किल होता है, वो भी इस समय में। हमारे समय में ऐसा घोर कलयुग नहीं था, परिवार आस पड़ोस सब बच्चों को साझा समझते थे, फिर भी अपने आदमी की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता। मेरी नानी मुझसे कहती थी कि आदमी की तो जूती का भी मान नहीं होता। जिसके घर के बाहर आदमी का जूता या चप्पल होती है, उस घर के आगे से लोग नजर नीची करके चलते हैं। मैंने तो कई साल तेरे दद्दू का छाता और जूता घर के बाहर रखा था, कई बार उनके कपड़े बाहर सुखाती, जिससे आते जाते लोगों को लगे कि इस घर में मर्द रहता है। मुझे ददिया की बातों से बहुत बल मिला। जब उन्होंने अनपढ़ होकर 5 बच्चे पाले, उन्हें पढ़ाया, उनकी शादी ब्याह की, तो क्या मैं पढ़ी लिखी होकर 2 बच्चे नहीं पाल सकती। अगली सुबह संगीता रसोई में चाय बनाने गई तो सास ने टोक दिया कि मेरे घर में सबके लिए एक बार चाय चढ़ती है, बिना नहाए चौके में कोई नहीं घुसता। जेठानी चौके में अपने बच्चों का दूध डालने आई तो संगीता ने कहा, भाभी मेरे बच्चे भी दूध लेंगे, मैं डाल लूं? जेठानी ने उसको रुकने का कहा और 2 स्टील के छोटे गिलास निकाले, उनमें आधा पानी और आधा दूध डालकर आधा आधा चम्मच शक्कर मिलाकर उसे थमा दिया। संगीता धीरे से बोली, भाभी आपने पानी में दूध क्यों मिला दिया? जेठानी ने कहा, अरे तेरे बच्चे ठहरे शहरी, उन्हें खालिस दूध कहाँ पचेगा। संगीता ने चुपचाप गिलास उठाकर बच्चों को थमा दिया। बच्चों ने मुंह बिचकाकर पी लिया। बच्चे रोज कहते, मम्मी हम अपने घर कब जाएंगे, यहाँ कितने मच्छर हैं, गंदा है। भोज के 1 हफ्ते बाद संगीता की समझ में आ गया कि उसे जल्द निर्णय लेना होगा। बवाल तो मचेगा, पर बच्चों के लिए ये कड़ा कदम उसे उठाना ही पड़ेगा। उसे आज भी याद है वो रात कितनी लंबी थी। पूरी रात उसने उन चुनौतियों का सामना किया जो अभी आई तो नहीं थी, पर आएंगी जरूर। वो कल सुबह
ससुराल के

0: समक्ष कैसे बात रखेगी, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या वे पापा से कहे कि उसको आकर ले जाएं, या भाई भाभी से कहें कि वे उन पर बोझ नहीं बनेगी, बस जैसे तैसे एक साल उसे और उसके बच्चों को संभाल लें। फिर उसे भाई का ही जवाब याद आया, जब हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो दखल क्यों दें। बहुत रोई थी उस रात संगीता, पर सुबह उसने उठते ही बरामदे में अपना बिस्तर समेटा और सास के कमरे में जाकर उनके पैर छुए। ससुर खेत का चक्कर लगाने निकले थे। सास बोली, कितनी बार कहा है तुझे सुबह सुबह मुझे मुंह ना दिखाया कर। संगीता ने संयत स्वर में कहा, जी माँ जी, इसीलिए मैं बच्चों को साथ लेकर शहर जा रही हूँ। माँ जी ने तुनक कर जवाब दिया, क्यों, कौन बैठा है वहाँ तेरा? कोई नहीं माँ जी, जाकर घर देखूंगी, बच्चों की छुट्टियां का होमवर्क कराऊंगी, अपने लिए कोई काम ढूंढूंगी और खानदान की नाक कटाएगी। सास बोली, दुनिया को यही जतलाना चाहती है ना कि बेटे के बाद ससुराल वालों ने बहू बच्चों को पालना भारी लग रहा था। ऐसा क्यों सोच रही है माँ जी, आपके बेटे का भी तो यही सपना था ना कि उसके बच्चे बड़े शहर के बड़े स्कूल में पढ़ें। संगीता ने प्यार से माँ जी के कंधे पर हौले से हाथ रखते हुए कहा। माँ जी ने उसका हाथ झटका और कहा, मेरे बेटे ने कभी अपनी औकात से बाहर सपने नहीं देखे, वो तो छोटे शहर में नौकरी कर ही रहा था, तू ही घसीट कर उसको बड़े शहर में ले गई और मार दिया। शोर सुनकर जेठ जेठानी भी आ गए। ससुर भी तब तक खेत से लौट आए थे। जेठ शायद इसी मौके की तलाश में था। बोले, अम्मा जाती है तो जाए, इनको जाने दीजिए और बस इसको ये समझा दीजिए कि गांव की जमीन खेती या घर पे इनका या इनके बच्चों का कोई हक ना रहेगा, कल को कोर्ट कचहरी करने आ जाए। फिर ससुर बोले, अरे कोई मजाक है, जो साथ रहेगा मेहनत करेगा सब उसी का। तब अम्मा बोली, इसके बाप को इतला कर दो, कल को हम पर सवार हो जाएंगे। संगीता घबरा रही थी, पर उसने मन बना लिया था, पर अपने बच्चों को ऐसी जिल्लत की जिंदगी नहीं देगी। उसने ससुर जी से फ्लैट की चाबी मांगी तो सास ने बक्से में से निकाल उसके मुंह पर मारते हुए कहा, जा मर जहां जाके मरना है, हम समझ लेंगे हमें एक ही बेटा हुआ था। इतनी देर में पापा के पास भी फोन चला गया और वकील के पास भी। संगीता अटैची में कपड़े डाल बच्चों को साथ लेकर निकल पड़ी। ना चाय पानी, ना पैसा कौड़ी, कुछ नहीं पूछा। पापा जाते समय उसको 20,000 का लिफाफा पकड़ा गए थे, बस वही उसके पास था। शहर पहुंची तो नई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी। उसने अजय चारू से सुमेश के बीमे एवं अन्य कागजात समझे। उसी सोसाइटी के दूसरे ब्लॉक में एक कमरे का फ्लैट लेकर शिफ्ट कर लिया। ये सोसाइटी सेफ थी। अजय ने सुमेश की ईमानदारी का हवाला देते हुए उसे उसी दफ्तर में क्लेरिकल पोस्ट पर लगवा दिया था। गाड़ी कुछ कुछ पटरी पर आ रही थी। गांव की ददिया की बात याद करके संगीता ने घर के बाहर शू रैक में सुमेश के जूते रख दिए, जिससे लगे कि घर में कोई आदमी रहता है। वो रंगीन कपड़े पहन श्रृंगार के साथ बाहर निकलती थी। फिर भी अकेली जवान औरत को शहरी लोग ताड़ ही लेते हैं। सोसाइटी, दफ्तर के लोग जो सुमेश के रहते नजर नहीं मिलाते थे, आज संगीता जी को ऑफिस छोड़ने, उसके बच्चों को बस स्टॉप से लाने के लिए ललायत रहते थे। संगीता भी बिजली का बिल हो या दफ्तर की फाइल, मुस्कुराकर हंसते हुए काम निकलवाना सीख चुकी थी। अजय चारू का ट्रांसफर हो गया था। संगीता का अकेलापन और गहरा गया। बच्चे स्कूल से कॉलेज में आ गए थे। संगीता को अब भी कई लोग लाइन मारते थे और वह बड़ी तमीज से उन्हें उनकी लाइन दिखाकर लाइन पर ले आती थी। बेटे को सुमेश का जूता आने लगा था। उसने पापा का जूता हटा दिया और माँ से कहा, माँ अगर तुम वहां गांव में सफेद साड़ी में लिपटी रहती तो आज हम दोनों भाइयों का जीवन कितना बेरंग होता। संगीता ने सोचते हुए कहा, बेटा विधवापन कोई रंग नहीं, एक चुनौती है जो रोज नए रंग में सामने आती है।
1: मैनू अभी आपने सुनी कहानी विधवाओं की स्थिति पर, जिसका शीर्षक था विधवा कोई रंग नहीं। कहानीकार थी पूनम सूद जी। और अब समय हो गया है प्यारे से गीत का, पर उससे पहले ये अल्प विराम।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: RHL Gold TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

मैंने जून के महीने में चिलचिलाती धूप, उमस और पसीने से त्वचा ऑयली हो जाती है और रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। इस दौरान हाइड्रेशन, सन प्रोटेक्शन और स्किन केयर पर बहुत ध्यान देना है ताकि टैनिंग और मुहांसों से बचा जा सके, क्योंकि तेज धूप में अगर आप निकलेंगे तो फिर ये सब तो होना ही होना है। तेज धूप से बचने के लिए कम से कम 50 SPF वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए।

0: 50 SPF वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, और अगर ना मिल पाए, अगर आपको अवेलेबल ना हो, तो आप कम से कम अपने चेहरे को तो कवर करके घर से निकले ही। इसे घर से निकलने से पहले 20 मिनट पहले जरूर लगाएं और हर 3-4 घंटे में दोबारा जरूर लगाएं। हाइड्रेशन और पोषण का रखें बहुत ध्यान। जी हाँ सखियों, दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। अपनी डाइट में तरबूज, खीरा, नारियल पानी और ताजे फलों का को शामिल करें। त्वचा की सफाई और एक्सफोलिएशन कम करने के लिए कम से कम 2 बार फेस वॉश करना चाहिए। 1 या 2 बार हफ्ते में स्क्रब करना चाहिए ताकि रोम छिद्रों में जमा गंदगी और मृत कोशिकाएं निकल जाएं। और फेस वॉश और स्क्रब ऐसा यूज करना चाहिए जिसमें कम बहुत ज्यादा हाई केमिकल ना हो। त्वचा को ठंडक पहुंचाने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें और गुलाब जल को फ्रिज में रखकर टोनर की तरह इस्तेमाल करें। अगर आप गुलाब जल को फ्रिज में रख देंगे और रात में हल्के से कॉटन से अपने चेहरे पर उसको लगाएंगे तो वो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बहनों, जब हम ज्यादा देर तक धूप में रहते हैं तो एलर्जी या सनबर्न हो ही जाता है, खासतौर पर उन लोगों को ज्यादा होता है जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है। इसके लिए कुछ घरेलू फेस पैक हैं जो आसानी से हमें घर पर मिल जाते हैं, जो बहुत फायदेमंद भी होते हैं। धूप में रहने से त्वचा की जलन को कम करने के लिए एक आसान सा घरेलू उपाय है, जिसमें हम 2 चम्मच खीरे का रस, 1 चम्मच एलोवेरा जेल दोनों को अच्छी तरह से मिला लें, चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट छोड़ दें और उसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। आपके चेहरे पर जो जलन होगी वो बहुत अच्छे से चली जाएगी और आपका चेहरा, आपके चेहरे में ठंडक महसूस होगी। बहनों, अगर स्किन ऑयली है तो बेसन, दही, हल्दी, ये तो बहुत आसान तरीका है, इसको लोग यूज भी करते होंगे, पर ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही कारगर है। ये पैक अतिरिक्त तेल को सोखता है और त्वचा पर तुरंत ग्लो लाता है। इसके लिए 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही, चुटके भर हल्दी, तीनों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 15 मिनट बाद हल्के हाथों से रगड़ते हुए, जैसे आप स्क्रब को मसाज करते हैं वैसे मसाज करते हुए उसको छुड़ाएं और ठंडे पानी से धो लें। और इंस्टेंट ग्लो के लिए पपीता और शहद का प्रयोग करें। पपीते में मौजूद एंजाइम्स त्वचा को गहराई से साफ करते हैं और कोमल बनाते हैं। 3-4 चम्मच पपीते का पल्प, 1 छोटा चम्मच शहद पपीते को मैश करके शहद में मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट बाद धो लें, इससे आपका चेहरा निखर उठेगा। बहनों, प्राकृतिक चमक चेहरे पर लाने के लिए बर्फ से चेहरे को 2 मिनट मसाज करें। हाइड्रेशन के लिए खूब पानी पिएं और शहद नींबू के इंस्टेंट फेस पैक का उपयोग करें। ये त्वचा की थकान को मिटाकर तुरंत फ्रेश और ग्लोइंग लुक देता है। तो इन सब उपायों को आजमाइए और अपनी त्वचा को निखारिए। और बहनों, अब बातें करते करते हो गया है समय आपसे विदा लेने का। अगले प्रोग्राम में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी रेडियो सखी क्षमा को। नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी हमारी बहनों ने सुना अपना कार्यक्रम नारे जगत। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दिन के ठीक 3 बजे हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम NCERT का आज का भाग। सुनते हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम।

आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि

0: भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों के दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री बसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

कभी मनुष्य अपनी ना समझी और नादानी में जीवन देने वाली इस मां के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जान

0: देखते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन
1: बसंती अरे बसी ओ बसी कहां है तू
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो मैं यहां बुरांस के फूल चुन रही हूं
1: अरे क्या करेगी इनका तू हां
2: क्या करूंगी गमकुआ इधर बनाऊंगी क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है ओह तो शरबत बनाऊंगी
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है हां क्या कर चल अरे चल सब खोल रहे हैं तुझे अरे चल ना जल्दी कर
2: नहीं हुआ

0: उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
2: बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी। अरे तू विधवा हो गई, तेरा पति

0: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
1: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
0: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
1: ये तो थी कहानी बसंती की, और बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से, है ना? बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है, मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने

0: जल्दी जल्दी पैर बढ़ा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ?
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ?
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को

0: तो हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा, इसका जवाब तेरे पास है।
0: मेरे पास?
1: हाँ, तेरे पास। आमा, तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
0: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांज के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
2: और क्या?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
2: घटेगा।
3: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
0: खाली हमारे समझने से क्या होता है? हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
0: चलो, इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
2: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
1: चलो
2: चलो, हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का आज का भाग। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दिन के 3:30 हुए हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से।

0: हाँ तो मंजरी,
1: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों का और श्रोता भाइयों के साथ साथ आरती तुम्हारा भी स्वागत है।
0: बिल्कुल, हम सुन रहे हैं क्या सखी सहेली
1: जी।
0: तो एक प्रोमो सुन लेते हैं
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हाँ तो मंजरी, अब क्या करें?
1: अब बताओ तुम क्या करते हैं?
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देश भर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहां पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहती हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता की प्रबल समर्थक भी हैं।
0: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और

0: और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझ कर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लौ जगती कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पर अपनी पहचान बना सके।
1: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया एआई के लिए, जहां पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें
0: जी।

0: तो देखो भाई हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया, हाँ। तो आज हम लोग इसी पर तो बातें करते हैं।
1: बिल्कुल, आंगन की ही बातें करनी है हमको।
0: जी देखो, पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपैया होती थी, नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पे सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोरना गेहूं चकिया धरना ये सारे जो होते थे सब वही होते थे। और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी पापड़ कचरी अचार ये सब चीजें डाली जाती थी, और उसके लिए पूरा घर

0: जुड़ जाता
1: बिल्कुल
0: था,
1: हर मौसम समझ लीजिए हमारे आंगन में उतरता था,
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्योहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो पंगत में जो खाना खाया जाता था वो भी चटाई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी, उसके उस पर बैठकर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग मजा है। और गर्मियों के दिन में
1: मैं ही कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो असली मजा होता था ना वो आंगन में आता था, क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदे गिरती थी, छप छप छप छप, इतना मजे आते थे कि मतलब
0: याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था, और जब निकासी की जो जगह होती ना उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे कि पानी
1: ये
0: भर जाए।
1: मुझे मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी,
0: सभी
1: के घर आंगन, जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे, वहां पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है वो चीजें भी करना, वहाँ पे एंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज का वो भी करते थे।
0: और देखो ना हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे, आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वही नहाते धोते, नहाना धोना, कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था। और आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पे मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर करते थे, तो बहुत मजा आता था।
1: और रात में जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते अपनी यादें जब करते हैं साझा करते हैं तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयां बिछा लेते थे, तो बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन से।
0: और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था, जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं वो डुला करके एक दूसरे को करते थे हवा, वो भी बहुत याद है। और हमारे साथी क्या
1: बिल्कुल हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे, और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे, प्रकृति के एयर कंडीशनर था वो समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी, आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था, और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी।
0: क्या बात है। और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहाँ बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी, जहाँ माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहाँ बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहाँ सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी, मतलब सोच लो कितना सुंदर था वो समय। और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं। सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी, इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यही से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती है जो जीवन भर साथ रहती है, उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूँ कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ, हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करियो। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जो ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारी औरतें मिलकर गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी और अपनी सुख दुख की बातें कहती थी, यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे, ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे, और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसी के चौरे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली

0: भी बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे। याद होगा तुम्हें ये ईंटों से घर बनाते थे खेलने के लिए, गुड्डे गुड़िया भी में रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था। हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता लेती थी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं, आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई हैं। और आंगन में झूला भी तो होता ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे। इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था, साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है, वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहाँ धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी।
0: और देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी, सुख दुख की बातें यही बैठ कर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यही हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे और शाम का खाना तो वहीं पे बनता था, किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था। और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था। और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितने किया करते थे, शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों के समझ लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज है वहां पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं।
0: वो याद है जब चावल बिनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे तो उनको दाना डालने में बहुत मजा आता था।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहाँ सुबह शाम दिया जलाया जाता था और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे, आइस पाइस कह लो या पकड़ा पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी, ये सब भी आंगन में हुआ करते थे तो उसका भी एक अपना मजा है जो है आज भी।
1: और हर मौसम का चाहे गर्मी हो उसमें अलग तरीके से रहना, मजे करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना, वो जो सूरज की रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी तो सबका ये होता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
0: और जहाँ जहाँ धूप जा रही है ना वहाँ वहाँ पे कुर्सियां भी जा रही है, चारपाई भी जा रही है और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठ कर आंगन में, ये बहुत अच्छा टाइम पास था। उसके साथ जो नमक की पुड़िया याद है ना, यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गया सीजन में तो वो भी काट के सब लोग
1: तो मतलब जो भी चीजें आपको जो भी काम करना है ना सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज का,
0: आनंद उठाते हैं गीत।
1: बिल्कुल, गीत का आनंद उठाते हैं।

0: तो भाई देखो हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में गुजार लिया,
1: इस आंगन में हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी,
0: अब हमें चलना चाहिए। तो सभी को मंजरी वर्मा
1: और आतिश श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: है दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क
1: सब सखियों का पिया पिया सब में है और सब सुनारा
0: और फिल्म थप्पड़
2: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
3: बेखबर दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
4: उसके बड़े कारण बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
3: जी,
4: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
3: जी,
4: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
3: ओहो,
4: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने। तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेतीबाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई
3: जी।
4: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
3: जी,
4: ये सब जो एहसास थे ये सब जमा होते गए और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ
3: जी जी।
4: ये 1984 का जमाना था।
3: कितने बड़े थे आप?
4: मैं 71 में पैदा हुआ।
3: ओ, तब तो बहुत छोटा।
4: हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था। 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे। तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं

एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, दर्द ही

0: बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
1: काम क्या कर रहे थे?
0: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में।
1: अच्छा।
0: जो पान में सुपारी खाई जाती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
1: जी,
0: थोड़ा
1: जी।
0: सा ऊपर डाल लेता हूँ। तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था।
1: क्या
0: और
1: बात है?
0: आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ, और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में
1: जी, जी, जी।
0: या उसको समझने में या उसके महसूस करने में।
1: हाँ।
0: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली मतलब बस
1: रेडियो का स्विच ऑन
0: कर दिया ऑन, और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे काटा था मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गजल
1: बज रही थी
0: और वो गजल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं।
1: क्या बात।
0: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गजल कोई गा रहा था, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हो गई और सेम मीटर में, है ना। अब वो गजल तो मैंने जाये कर दी, मुझे याद नहीं है उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मक्ता कहते हैं।
1: शुरू हो गई मतलब आप कहने लगे।
0: हाँ,
1: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने
0: मेरे लगे। अंदर का शायर जो
1: जी,
0: है मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ
1: जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम।
0: हाँ, तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गजल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से फिर गजलें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई होती थी उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, खत्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है और जो चलता रहता है।
1: तो वो गजल याद है?
0: गजल तो याद नहीं है।
1: हाँ।
0: क्योंकि मैंने वो जाये कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना।
1: क्या बात है।
0: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है। वाह वाह, क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की। तो
0: बिल्कुल,
1: मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से ली आपने शायरी की।
0: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात है। शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाए, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ, या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फेहरिस्त है गानों की, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे।
0: हाँ, वो सुना दें आप। मधोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है।
1: क्या बात है।
0: घर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह, तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।

0: शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना जरूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए
0: जी,
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप जख्मी हो गए और वो जख्म का एक दर्द है वो भर जाता है, वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है जख्म भरते ही
0: जी।
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है, और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है
0: जी जी।
1: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो मैं समझता हूं कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसेटिव प्राणी है
0: जी।
1: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ, मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई, तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और ममानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता जितना अधिकार आपका आपके बाप के।
0: हाँ,
1: तो जब आप सेंसिटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहां पले, लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसिटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है, तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसिटिव मैं शुरू से था, तो ये प्रोसेस था,
0: चल रही थी।
1: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था
0: जी।
1: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का, जिसमें सारे दुख जमा हो रहे थे, और एक दिन वो फट गया और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ
0: जी।
1: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा
0: जी,
1: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा,

0: यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं लड़की।
1: जी जी जी
0: ठीक है। तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया। मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ, जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का
1: जी,
0: उसके बगैर मुमकिन नहीं है क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना, वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीजों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
1: महसूस करते हैं। वो जो खरोचें होती है, वो खरोच आपको कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाए तो।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
1: क्या बात है।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर,
1: क्या बात है।
0: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
1: वाह,
0: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे।
1: वाह वाह वाह।
0: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है
1: जी,
0: हम उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको। नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को। वही दर्द आपको बड़ा कलाकार, बड़ा फनकार बनाता है,
1: ऊंचाई तक ले जाता है कई बार।
0: तो दर्द हीरा है, दर्द मोती है,
1: क्या बात है।
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपने मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियां होती हैं, नानी की जबान से सुनी हुई वो कहानियां, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
0: नानी की मोहब्बत है यार।
1: बताइए, कोई किस्सा बताइए नानी का।
0: मैं आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
1: क्या बात है।
0: बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है। माँ के साथ एक आध वाकया जरूर याद है, लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था उस जमाने में, टीबी लाइलाज था
1: जी जी।
0: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया, और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बजाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे जिंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाकये हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी।
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: और वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से, और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी बहुत
1: जी जी।
0: और मैं पढ़ने में तेज था शुरू से, एक आध दो सब्जेक्ट में कमजोर भी था, जैसे मैं गणित में कमजोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है, दीनियात कहते हैं वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमजोर था। बाकी सब में, राइटिंग वगैरह में, आलेख में
1: तेज थे,
0: बहुत तेज था मैं। हाँ,
1: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहां पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
0: हाँ, सूरत में।
1: जी, सूरत में। तो वो क्या वाक्य है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।

0: मुशायरों में तब मैं आया नहीं था और मैं सूरत में ही रहता था
1: जी।
0: और गुजरात उर्दू अकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था और ये बात है 1994 की
1: जी, शीन काफ निजाम भी आए थे इसमें।
0: शीन काफ निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, वो उसका संचालन किया था
1: जी।
0: अच्छा आपको इतना डिटेल में पता है
1: कुंडली आपकी पता है लेकिन अभी श्रोताओं तो कुछ नहीं आया।
0: तो उसमें सारे बड़े शायर मतलब निदा फाजली
1: जी,
0: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी और शीन काफ निजाम और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
1: जी, सब जी।
0: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे
1: जी,
0: मुल्क
1: जी,
0: में संदेशे आते हैं है ना, आए जाते हुए लम्हों, वो गाने मतलब ये वही जमाना था। और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू अकेडमी के चेयरमैन थे और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे वरना वो आते भी नहीं
1: जी जी।
0: हाँ तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं दूसरे शहरों से आए हैं और जो नामचीन हैं बड़े शायर हैं फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा खत्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी उनको पढ़ाना शुरू किया शीन काफ निजाम साहब ने। अच्छा उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी थे
1: जी, जी, जी।
0: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया और दो या तीन शायर पढ़े होंगे के हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है सामेईन जो है वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
1: और उसमें जावेद प्रूफ करने का
0: जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीन काफ निजाम साहब से शायद पहले मिला हूंगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे तो मेरी मुलाकात, चूंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है मतलब उनका सवान ही नावेल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावेल लिखा है जो दो जिल्दों में है, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी। दीवारों के बीच वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ,
1: क्या बात है,
0: है ना
1: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा था।
0: हाँ तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी
1: जी।
0: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था
1: बिल्कुल,
0: और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था
1: जी,
0: उनको
1: जी।
0: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे नायब।

0: तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने, तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
1: ओहो, क्या बात है।
0: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी
0: है। अच्छा। और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती है।
0: तो उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है,
1: जी, जी।
0: है ना। और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी है, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो। तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी। हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतला सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए।
1: क्या बात है।
0: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह।
0: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नजर कर दिया, है ना। हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करते,
0: नजर करने की हिम्मत नहीं करता। अब मैंने जुर्रत कर ली,
1: जी जी,
0: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं।
1: क्या बात है।
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
1: वाह।
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक।
1: ओहो।
0: इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया इसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: अब निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया,
1: जी जी,
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जा दे दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक
1: यादगार
0: और पहला बड़ा मुशायरा था।
1: जी जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा, ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था। और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला, और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बंबई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला। हाँ।
1: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया।
0: इरशाद, इरशाद, इरशाद।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात है।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशआर लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतूत का जमाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
0: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है
1: जी,
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ मैं।
1: जी,
0: मैं
1: जी,
0: सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने जी के लिए।
1: तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे, विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो आप बताइए अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी, अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है।
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी।
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं,

0: उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो
1: जी।
0: तो सेवी अली नाम है उनका, उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे
1: जी।
0: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी शेर भी कहते हैं कभी।
1: अच्छा,
0: कभी
1: ये हाँ, बात तो नहीं पता,
0: कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते हैं।
1: क्या बात है, हाँ, बहुत बढ़िया।
0: तो, हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो किताब पढ़ते हैं,
1: नावेल
0: और कहानियां बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था, तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती हैं या कलकत्ता में रहती हैं, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला, तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है
1: बिल्कुल।
0: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी 80 तक,
1: भीड़
0: और 80 तक आया है,
1: आर्टिकल
0: 15, थप्पड़, अनेक, ये सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थी
1: जी।
0: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थी और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खास तौर से, ऐसे गाने बनते थे, वो गानों से ही आए थे। अनुभव सिन्हा साहब वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे, तो
1: वो सुंदर फिल्मांकन किया।
0: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है।
1: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
0: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो
1: पहले वाले
0: पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
1: देर आए दुरुस्त आए।
0: तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने वाले हैं। तो आदमी जहां पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूं तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कटकटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ, वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहां जाता हूँ अकेला और उसको फील करता हूँ, मैं सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
1: जी,
0: है। बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस,
1: नंबर पर वही लिखा हुआ है।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: व्हाट्सएप नंबर। हाँ,
0: तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी
1: जी, जी, जी,
0: है ना। और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद,

0: जी,
1: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
0: उसमें आपने गाना लिखा है?
1: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया, वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फोन किया, और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे, और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए, उसका म्यूजिक, मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
0: ये फिल्म का नाम एक बार,
1: जिद,
0: जिद फिल्म,
1: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया,
0: जी, जी।
1: तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज इश्क हूं मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
0: क्या बात है।
1: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ है रत्ना सिन्हा

0: हाँ जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूं। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने
1: जी।
0: ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाइए, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद, जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ, तेरी फरियाद हो गया है ना, तो ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागूं तुझमें, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें। तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया, पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूं बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है
1: जी।
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र किया, वहाँ पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज थी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं है।
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी।
1: तो रेखा भारद्वाज भी थी उसमें।
0: हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल सिंगर वो है जगजीत सिंह साहब, और वो गजल बड़ी फेमस थी, तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतला चेंज करते हैं। नहीं, मतला वही रहेगा। तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा, तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए। फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई, पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी वो एक लड़का है जो बजाहिर मर गया है
1: जी,
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है, इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बजाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, कहां इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है। अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
1: वाह वाह।
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: हाँ।
0: के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत

0: अभी जीना है, तो मान तो रही है कि ठीक है अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, मतलब अभी है? भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी जी।
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
1: जी जी।
0: ठीक है, तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में है, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना पहली लाइन, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी।
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
1: क्या बात।
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही ना हुई।
1: क्या बात है, वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से। न्यूज वन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5 बजे हैं। युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, आपके अपने रेडियो दोस्त आकांक्षा सिंह के साथ। साथियों, आज है मंगलवार और आज के दिन हम आपके लिए लाते हैं बहुत कुछ खास। जी हां दोस्तों, आज चर्चा के विषय होंगे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, फिर जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के बारे में, भारतीय इतिहास से जानेंगे गदर आंदोलन के बारे में, उसके बाद होगा आप सबका प्रिय चक्रव्यूह, साथ ही आपके लिए कुछ मधुर गीत भी होंगे। तो आइए इस शाम को थोड़ा प्रोडक्टिव और एंटरटेनिंग बनाते हैं। दोस्तों, जब सुबह सुबह आपके घर का कचरा साफ हो जाता है, नल खोलते ही पानी आ जाता है, या जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर सुचारू रूप से आगे बढ़ते हैं, तो क्या कभी सोचा है कि इस पूरे सिस्टम के पीछे कौन है? जी हाँ,

पर्दे के पीछे काम करने वाले वो लोग जिन्हें हम पब्लिक सर्वेंट्स या लोक सेवक कहते हैं। और आज यानी 23 जून को इन्हीं हीरोज को सलाम करने का दिन है, क्योंकि आज है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। आप सोच रहे होंगे कि दोस्त ये दिन शुरू कब हुआ, तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया और तय किया कि हर साल 23 जून को ये दिन मनाया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ एक है, समाज के विकास में लोक सेवा के योगदान को पहचानना और युवाओं को इस फील्ड में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना। और साथ ही दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र हर साल बेहतरीन और इनोवेटिव काम करने वाले सरकारी विभागों को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित करता है, यानी जो अच्छा काम करेगा उसे ग्लोबल स्टेज पर ट्रॉफी भी मिलेगी। एक पल के लिए कल्पना करते हैं, मान लीजिए एक दिन के लिए देश के सारे लोक सेवक जैसे पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी सब के सब छुट्टी पर चले जाएं, क्या होगा? पूरा शहर थम जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा और क्योस मच जाएगा। सच तो यह है कि जब हम चैन की नींद सो रहे होते हैं या वीकेंड पर टीवी देख रहे होते हैं, कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी फाइलें निपटाता रहता है या सड़कों पर मुस्तैद खड़ा रहता है। आपदा के समय चाहे बाढ़ हो या कोई महामारी, ये लोक सेवक ही सबसे पहले मोर्चे पर खड़े मिलते हैं। और साथ ही दोस्तों, जमाना बदल रहा है और हमारी लोक सेवा भी। पुराने जमाने की वो इमेज याद है ना, सफेद एम्बेसडर कार, टेबल पर रखी धूल खाती फाइलें और बाबूजी का कहना कल आना। लेकिन आज का फैक्ट ये है कि हमारी पब्लिक सर्विस डिजिटल हो चुकी है। आज आप एक क्लिक पर पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं, डिजिटल लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और UPI से सब्जी वाले भैया को पेमेंट कर सकते हैं। ये जो डिजिटल क्रांति आई है, इसे आप तक पहुंचाने के पीछे भी दिन रात काम करने वाले टेक्नोक्रेट्स और पब्लिक सर्वेंट्स ही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन सिर्फ उनके काम को आंकने का नहीं बल्कि उन्हें थैंक यू कहने का है। अगली बार जब आप किसी सरकारी दफ्तर जाएं और आपका काम समय पर हो जाए तो चेहरे पर एक मुस्कान लाकर एक छोटा सा धन्यवाद जरूर कर कहिएगा। यकीन मानिए, आपकी एक मुस्कान उनकी दिन भर की थकान मिटा सकती है। इसी के साथ दोस्तों, चर्चा में अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर। दोस्तों, इंटरनेशनल विडोज डे हर साल 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं की समस्याओं को के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। पति की मृत्यु के बाद दुनिया भर में करोड़ों महिलाओं को न केवल गहरे मानसिक आघात से गुजरना पड़ता है, बल्कि वे गरीबी, सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और बुनियादी अधिकारों से वंचित होने जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना भी करती हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुताबिक विश्व भर में लगभग 25.8 करोड़ विधवाएं हैं, जिनमें से 11.5 करोड़ से अधिक महिलाएं अत्यधिक गरीबी में जीवन जीने को मजबूर हैं। इसके अलावा दुनिया भर में लगभग 1.5 करोड़ विधवा बाल दुल्हने हैं, जो बेहद संवेदनशील स्थितियों में रहती हैं। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2005 में लूम्बा फाउंडेशन द्वारा की गई थी। फाउंडेशन के संस्थापक राज लूम्बा ने अपनी मां के विधवा होने के बाद के संघर्षों को देखकर इस मुहिम की शुरुआत की थी। उन्होंने 23 जून की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि इसी दिन 1954 में उनकी मां विधवा हुई थी। लूम्बा फाउंडेशन के कई प्रयासों के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा दिसंबर 2010 में आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता दी और 23 जून 2011 को पहली बार वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि विधवा महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और कानूनी अधिकार देना किसी भी सभ्य समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों, चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। आइए अब सुनते हैं एक जोश भरा गीत।

दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट भारतीय इतिहास से, जिसमें आज हम जानेंगे गदर आंदोलन के बारे में। दोस्तों गदर आंदोलन भारत की आजादी की लड़ाई का एक ऐसा सुनहरा पन्ना है जिसने समंदर पार बैठे भारतीयों के दिलों में क्रांति की आग सुलगाई थी। साल 1914 से 1917 के बीच का समय इस आंदोलन का सबसे तूफानी और उतार चढ़ाव भरा दौर था। आइए इस आंदोलन को साल दर साल और थोड़ा आसान तरीके से जानते हैं। गदर आंदोलन की नींव वैसे तो साल 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के रूप में रखी गई थी, जिसके मुख्य चेहरे लाला हरदयाल, बाबा सोहन सिंह भकना और तारकनाथ दास थे। इन्होंने गदर नाम का एक अखबार निकाला जिसके नाम पर इस पूरी क्रांति का नाम गदर आंदोलन पड़ गया। इस अखबार की हेडलाइन हुआ करती थी अंग्रेजी राज का दुश्मन, और विज्ञापन में लिखा जाता था वीर सिपाहियों की जरूरत है, तनख्वाह मौत इनाम आजादी। दोस्तों साल 1914 इस आंदोलन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस साल दो बड़ी घटनाओं ने इस आंदोलन में आग का काम किया। पहली घटना कामागा टमारू कांड था, जिसमें कनाडा से जबरन वापस भेजे गए करीब 376 भारतीयों पर कोलकाता के बजबज बंदरगाह पर ब्रिटिश पुलिस ने गोलियां चला दी, जिससे दर्जनों लोग मारे गए। दूसरी घटना उसी साल अगस्त में शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध था, और अंग्रेजों को युद्ध में फंसा देखकर गदर पार्टी के नेताओं ने इसे आजादी का सही मौका माना और हजारों की तादाद में भारतीय क्रांतिकारी विदेशों से पानी के जहाजों में भरकर पंजाब की तरफ लौटने लगे, ताकि देश के अंदर सैनिक विद्रोह किया जा सके और देश को आजादी की राह पे ले आया जा सके। साथियों संघर्ष का दौर चलता रहा। साल 1915 इस आंदोलन का सबसे आक्रामक और दुखद दौर था। भारत लौटे युवा क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा और विष्णु गणेश पिंगले ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के साथ मिलकर 21 फरवरी 1915 को फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी की सैन्य छावनियों में एक साथ विद्रोह करने की पूरी गुप्त योजना बना ली थी। लेकिन एन वक्त पर

0: कृपाल सिंह नाम के एक भारतीय मुखबिर सीआईडी इन्फॉर्मर ने अंग्रेजों को सारी भनक दे दी, जिससे ये पूरी प्लानिंग फेल हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाया और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत महज 19 साल के करतार सिंह सराभा समेत 42 से ज्यादा क्रांतिकारियों को फांसी दे दी, जबकि रास बिहारी बोस किसी तरह बचकर जापान भाग गए। भारत में विद्रोह कुचले जाने के बाद साल 1916 में यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा, जहां क्रांतिकारियों ने ब्रिटेन के दुश्मन देश जर्मनी के साथ मिलकर हिंदू जर्मन साजिश रची। योजना थी कि जर्मनी के रास्ते हथियारों से भरे जहाज भारत भेजकर दोबारा क्रांति शुरू की जाए, लेकिन ब्रिटिश जासूसों की वजह से हथियारों के जहाज भारत पहुंच ही नहीं पाए। आखिरी झटका साल 1917 में लगा, जब अमेरिका भी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से शामिल हो गया। अमेरिका के युद्ध में आते ही वहां गदर पार्टी पर पाबंदी लगा दी और मुख्य नेताओं को जेल में डाल दिया। भले ही 1917 तक यह आंदोलन धीमा पड़ गया, लेकिन इसने अंग्रेजों के मन में तो खौफ पैदा कर ही दिया था, और करतार सिंह सराभा की शहादत ने आगे चलकर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया। इसी के साथ दोस्तों, ये सेगमेंट अब यहीं पर समाप्त होता है। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, वक्त हो चला है हमारे अगले और आखिरी सेगमेंट चक्रव्यूह का, जिसमें हम आपसे पूछते हैं 7 सवाल और उन्हें भेजते हुए आप भेजते हैं हमें अपने सही जवाब। तो आज रचेंगे चक्रव्यूह संख्या 610 के सवालों को, लेकिन इसके पहले हम जानेंगे चक्रव्यूह संख्या 609 के सवालों के उत्तर, और ये भी जानेंगे कि हमें किन किन साथियों ने सही जवाब लिख भेजा है। तो चलिए, जब तक हम मेल चेक कर रहे, उसके पहले उन सवालों को उनके उत्तर के साथ जान लेते हैं जो हमने चक्रव्यूह संख्या 609 में पूछ रखे थे। पहला सवाल था, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कौन सा विश्व धरोहर स्थल बनवाया गया था? उत्तर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। दूसरा था, अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 2026 की थीम यानी आधिकारिक विषय क्या है? उत्तर है रेमिटेंसेस फॉर रूरल रेजिलियंस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रामीण लचीलापन, उद्यमिता और रोजगार के लिए प्रेषण। तीसरा सवाल था, भारत ने किसकी कप्तानी में पहली बार ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था? उत्तर है हरमनप्रीत कौर। चौथा सवाल था, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? उत्तर है केरल उच्च न्यायालय। पांचवा सवाल था, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है और यहाँ पाया जाने वाला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर है मणिपुर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। छठा सवाल था, बैंकिंग क्षेत्र में बिना दावे वाली जमा राशि यानी अनक्लेम डिपॉजिट को ट्रैक करने के लिए RBI द्वारा लॉन्च किया गया वेब पोर्टल कौन सा है? उत्तर है उद्गम। सातवां सवाल था, कोशिका का ऊर्जा केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। साथियों, ये थे चक्रव्यूह संख्या 609 के सवाल और उनके सही जवाब। अब वक्त आ चुका है उन साथियों के नाम लेने का जिन्होंने हमें सही जवाब लिख भेजा है, तो आइए मेल चेक करते हैं। दोस्तों, हमें सही जवाब लिख भेजा है दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले ने, गांव परसा टोला जिला आंबरगढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हमें सही जवाब भेजा है ओम प्रकाश मसिया ने, भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता ने, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से हमें लिख भेजा है सही जवाब राधेश्याम पांडे ने, नवागढ़

पटई से भेजा है नारायण प्रसाद वर्मा ने, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल ने, और सही जवाब भेजा है खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से भेजा है दिनेश वर्मा ने, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया ने भी भेजा है जवाब, और ये जवाब सारे सही हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े ने, ग्राम पंचायत भटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सही जवाब भेजा है हमें बलकरण वर्मा ने, बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू ने, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा ने, और सही जवाब भेजा है छत्तीसगढ़ कोयलारी से कैलाश चंद्राकर ने, अंडार नादघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा ने सही जवाब भेजा है, फिर है राम शरण विश्वकर्मा, इन्होंने अपना पता मेंशन नहीं किया है, कृपया अगली बार से अगर करें हमें भेजें सही जवाब तो अपना पता जरूर लिखिएगा। साथियों ये थे उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें मेल द्वारा सही जवाब लिख भेजे। अब समय आ चुका है अगली चक्रव्यूह संख्या 610 की ओर बढ़ने का और फिर से नया चक्रव्यूह रचने का, जिसमें हम फिर आपसे नए 7 सवाल पूछेंगे। तो तैयार हो जाएं पेन कॉपी लेकर, जो साथी रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड पर लगा दें, रेडी रहें अगले चक्रव्यूह को भेजने के लिए। तो बढ़ते हैं और रचते हैं चक्रव्यूह संख्या 610 के सवालों को। हमारा पहला सवाल है, गदर पार्टी द्वारा सैन फ्रांसिस्को से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले उस मुख्य समाचार पत्र का नाम क्या था जिसने गदर आंदोलन के क्रांतिकारी संदेशों को दुनिया भर में फैलाया। एक बार फिर दोहराती हूं दोस्तों, गदर पार्टी द्वारा सैन फ्रांसिस्को से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले उस मुख्य समाचार पत्र का नाम क्या था जिसने गदर आंदोलन के क्रांतिकारी संदेशों को दुनिया भर में फैलाया। दूसरा सवाल है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हाल ही में संपन्न हुए 6 संयुक्त सैन्य अभ्यास DUSTLI के 2026 का आयोजन उज्बेकिस्तान के किस विशेष क्षेत्र यानी रीजन में किया गया। एक बार फिर से सुनिएगा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हाल ही में संपन्न हुए 6 संयुक्त सैन्य अभ्यास DUSTLI के 2026 का आयोजन उज्बेकिस्तान के किस विशेष क्षेत्र यानी रीजन में किया गया। हमारा तीसरा सवाल है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में ULP GM V3 यानी मानव रहित हवाई लॉन्च प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण कुर्नूल में किया गया और आपको ये बताना है कि कुर्नूल किस राज्य में स्थित है। एक बार फिर से दोहराती हूँ दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में ULP GM V3 यानी मानव रहित हवाई लॉन्च प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण कुर्नूल में किया गया और आपको ये बताना है कि कुर्नूल किस राज्य में स्थित है। हमारा चौथा सवाल है दोस्तों, जनवरी 2026 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल यानी मेन सिंगल्स का खिताब जीतकर किस खिलाड़ी ने इतिहास रचा। एक बार फिर से दोहराती हूँ, जनवरी 2026 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल यानी मेन सिंगल्स का खिताब जीतकर किस खिलाड़ी ने इतिहास रचा। हमारा पांचवा सवाल है दोस्तों, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया लिटरेसी मिशन 2026 लॉन्च किया है। एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया लिटरेसी मिशन 2026 लॉन्च किया है। हमारा छठा सवाल है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड कौन सा है जो अपनी अनूठी संस्कृति और पर्यावरण के लिए जाना जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड कौन सा है जो अपनी अनूठी संस्कृति और पर्यावरण के लिए जाना जाता है। साथियों हमारा सातवां और आखिरी सवाल है, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों यानी कमर्शियल बैंक्स को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं जिससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। एक बार फिर से दोस्तों बताती हूँ,

आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों यानी कमर्शियल बैंक्स को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं, जिससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। तो साथियों, ये है चक्रव्यूह संख्या 610 के सवाल। आशा करती हूँ आप सभी ने सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब हमें इंतजार रहेगा आपके सही जवाब का। तो फटाफट आपको मेल आईडी बता देते हैं जिस पर आपको सही जवाब लिख भेजना है। हमारी मेल आईडी है yuvvanaiayodhya@gmail.com। चक्रव्यूह संख्या 610 की प्रसारण तिथि है 30 जून 2026 और जवाब भेजने की अंतिम तिथि है 29 जून 2026। दोस्तों, आखिरी में इतना कहना चाहूंगी कि जब आप हमें मेल भेजते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। जहां आज के समय में एक क्लिक पर सारे उत्तर हमें मिल जाते हैं, वहीं आप हमें सवालों के जवाब लिखकर हमें मेल द्वारा भेजते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है, जो युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चक्रव्यूह के सवाल उनकी तैयारी में भी काम आ सकते हैं। और जब हम कोई चीज मेहनत से ढूंढ कर लिख कर रखते हैं तो वह हमारे दिमाग में बैठ जाती है। यही सबसे बड़ा फायदा है हमें मेल भेजने का। इससे आपकी तैयारी भी होगी और आपके युवाड़ी कार्यक्रम से भी जुड़े रहने का एक अच्छा कनेक्शन है, जिसमें हमें भी बहुत खुशी होती है। इसी के साथ दोस्तों, ये सेगमेंट अब यहीं पर समाप्त होता है। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

साथियों, अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। बात कर लेते हैं अगले दिन के कार्यक्रम की। कल चर्चा का विषय होगा राजने में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। व्यक्ति विशेष में जानेंगे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के बारे में। फिर होगा आप सबका पसंदीदा खेल संसार और साथ ही होंगे मधुर गीत भी। इसी के साथ दोस्तों, आशा कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त आकांक्षा सिंह को दे इजाजत। नमस्कार।

0: लाखों पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: ना दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाए वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के ठीक 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड

0: जी हाँ, यही तो है हम सब का आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
5: तौल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com AYODHYAAKASHVANI@

कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में सबसे पहले हमने आपको सुनवाया था अजय कुमार यादव की आवाज में खेमटा, और उसके पश्चात आराधना राठौर और साथियों की आवाज में आपने सुना था देवी गीत। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये विरह गीत ओम प्रकाश सिंह और साथियों की आवाज में।

जयचंद सिंह और साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे लाचारी, और अब सुनिए ओम प्रकाश सिंह और साथियों की आवाज़ में ये विरह लोकगीत।

बेचन राम और साथियों के गाय सी विकास लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त होता है। न्यूज ऑन आईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके पश्चात अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे।

0: कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बिसेसिंग मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu presented the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Journalist P. Narayanan was awarded the Padma Vibhushan in the category of Literature and Education, and former Judge K.T. Thomas was given the Padma Vibhushan in Social Work. Former tennis player Vijay Amrit Raj, actor Mammootty, and playback singer Alka Yagnik received the Padma Bhushan Award. This year, the government had announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan, and 113 Padma Shri Awards. The Ministry of External Affairs today confirmed the death of 12 Indian citizens in an explosion in Qatar. Addressing media in New Delhi this afternoon, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, a total of 66 people were injured in the incident and are currently receiving medical treatment.
1: We lost 12 of our nationals in the tragedy in Ras Laffan gas field where an explosion happened. Several other people have also been injured. I am told that some 66 people are injured across nationalities. We don't know exactly how many of them are Indian nationals, but all those people who are injured are safe. We are talking to the local authorities for the identification of the mortal remains, as also for the transportation of mortal remains to India. We are also in touch with the family members of those who have died in this very unfortunate accident.
3: Responding to a query on comments by Pakistani Defence Minister Khwaja Asif on the situation in Pakistan-occupied Kashmir, Mr. Jaiswal said such remarks are desperate attempts by the neighbouring country to cover up its own failings.
1: Such remarks are desperate attempts by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. We categorically reject these.

जी हाँ, किसी को देखते ही उस पर फिदा हो जाना, उसकी खूबसूरती को निहारते रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खूबसूरती की कद्र करना वास्तव में एक विशेष एट्रीब्यूट है, विशेष गुण है, जो लगभग सभी में नहीं पाया जाता, ख़ास लोगों में होता है। और किसी को देखकर और उसके बाद में उसके प्यार में पड़ जाना, वो भी पहली पहली बार, कैसा होता है, ज़रा इस गीत में सुनिए।

जी हाँ, कैसा लगा आपको ये प्यारा सा सॉन्ग? फिलहाल अपने इस कार्यक्रम शाम सुहानी से अब हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि वक्त हो रहा है न्यूज़ का और आप सुनेंगे समाचार संस्कृत में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: हर्तुंचा सहायम करिष्यतीति उदयोन्मुखान सुरक्षा विषयान प्रकाशयन श्री डोभालः अवोचत यत् पारंपरिक इतर प्रतिरोधाः राष्ट्रीय सीमाम् अतिक्रम्य पारंपरिक प्रतिक्रियां चालयितुं क्षमतांच विकसितवन्तः इति। अयोध्यायाः राम मंदिरे दान अर्पण विषये कथित अनियमिततानां अन्वेषणं कुर्वता त्रिसदस्यात्मक विशेष अन्वेषण दलेन अद्य प्रारंभिक अन्वेषण प्रतिवेदनं प्रस्तुतम्। दल प्रमुखः लखनऊ आयुक्तः विजय विश्वास पंतः अतिरिक्त मुख्य सचिवाय गृह विभागस्य संजय प्रसादाय प्रतिवेदनं समर्पितवान्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशः भारतस्य M777A2 अल्ट्रा लाइट हावत्स इत्यस्मै 30-200 मिलियन यूएस डॉलर इत्यस्य सस्टेनमेंट पैकेज आख्यं पुटकं अघोषयत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे भारते अमेरिका देशस्य राजदूतः सर्जियो गोर इत्येषः अवदत् यत् भारत अमेरिका देशयोर्मध्ये रक्षा सहभागित्वं निरन्तरं वर्धमानम् अस्ति। प्रस्तावित विक्रयः समाप्त्यर्थं देशः सज्जश्चास्ति इति। अद्य भारतेन अमेरिका देशेन च उच्चस्तरीय व्यापार वार्ताः आरब्धाः। अमेरिका देशस्य शुल्क नीतौ परिवर्तनात् वर्षस्य प्रारंभे वार्तया निश्चितः द्विपक्षीय व्यापार संधेः प्रारूपः बाधितः अभवत्। तस्य संरक्षणाय पुनः संतुलनाय च एषा वार्ता आयोजिता। नवदेहल्यां वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अमेरिका देशस्य व्यापार प्रतिनिधिना जेमिसन ग्रीर महोदयेन भारतस्थ अमेरिका राजदूतेन सर्जियो गोर महोदयेन च समं अमिलत्। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा विकृति प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयः चेन्नई तिरुचिरापल्ली कोयम्बतूर मदुरई नगरेषु 18 स्थलेषु अन्वेषणं करोति। अन्ते क्रीडा वार्ताः। फीफा विश्वकप इति क्रीडायाम् अर्जेंटीना देशस्य तारकभूतः नायकः लियोनेल मेस्सी इत्ययं विश्वकप क्रीडायाः इतिहासे सर्वाधिकं 18 गोल्स इति लक्ष्यावाप्तिं कृत्वा इतिहासं निर्मितवान्। मेस्सी जर्मन देशस्य मिरोस्लाव क्लोसे इत्यस्य 16 गोल्स इत्यभिलेखम् अतिक्रमितवान्। गतरात्रौ संजाते सुपराख्ये संघर्षे अर्जेंटीना देशः अमेरिका देशस्य आर्लिंगटन नगरे स्वस्य ग्रुप जे क्रीडायाम् ऑस्ट्रिया देशदलं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् स्थानं प्राप्तवत्। अन्ते हॉकी क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलं अद्य FIH प्रो लीग इत्यस्य उद्घाटन स्पर्धायां चिरप्रतिद्वंदिना पाकिस्तानेन सह क्रीडति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:30 हुए हैं। आप सुनिए लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। कार्यक्रम की शुरुआत हम करें उससे पहले कुछ एक संदेश।
2: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कंप्लीट हैं।
3: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें। गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
2: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुनें।
3: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
2: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आंकें, अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
3: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
2: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
4: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596424 और 78037322।
1: लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गुंजेश्वर गांव के आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए बेचन राम और साथियों की आवाज में

0: अमरनाथ और साथियों की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे किसानी लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के अब समाप्त होता है।
1: बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। न्यूज़ वन IR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। कौन सी बात कब कहां किससे कैसे कही जाती है, अगर यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:45 हुए हैं। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: कृषक महिला बहनों जय हिंद।
7: मीना,
6: हाँ बहनी,
7: देखा आज तू हमसे अपने जो महिला कार्यक्रम पाए ना,
6: हाँ हाँ।
7: तो बहुत दिन के बाद में भेंट मुलाकात होत पाए, और जानती हूँ हम जैसे तू का देखे नावत भय ना, वैसे पिढ़ई उढ़ई देखा तुहरे बदे धाई दिन पानी वानी का है, हम इतना निहाल हो गए ना,
6: हाँ हाँ।
7: कि हमका ला कि भाई हमार

0: बहनी जोन आवत बाटी मीना बहनी उनसे आज खूब निक बतुआ
1: हाँ जीवर के बात करे का हाँ बहनी देखा भैया अंगनैया में अपने बहनी लोग भी अपन इंतजार कर रहे हैं और देखा बहनी मिले के काव है समय नहीं मिला थे घर परिवार के काम खेती बाड़ी के काम और साथे साथे भाई देखा कोनो न कोनो काम धंधा करे बिना अपन आमदनी ना ही बढ़त है।
0: बिल्कुल सही कहू अगर काम धंधा की जोन बात की ना तो भाई हमका यह याद आवत बा कि अपन जोन बहनी लोग बाटिन अपने खेते से लेके अंगनैया तक सगरो कार बहुत बढ़िया खेती पाती करत हिन लेकिन ओकरे साथे साथे रोजी रोजगार अपनाए बाटिन तब उनके घर चौकस और चौतरफा उनके समल्य विकास हो चला जात बा।
1: हाँ बहनी और देखा जोन अपन बहनी लोग है ना वो अपन अगर बकरी पालन के व्यवसाय खेती के साथे घर परिवार के चलावे के साथे साथे करे ना तो एक आमदनी के अच्छा और सुरक्षित स्रोत है। ई व्यवसाय का बहनी चलता फिरता एटीएम भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल और अगर देखा जाए बहनी ना तो बकरी पालन आमदनी का एक शानदार और सुरक्षित स्रोत होता है और यह व्यवसाय का जैसे बताऊ कि चलता फिरता जो है एटीएम कहा जाता है तो वो तो है ये है और दूसरे अपने दहियों बदे समझ ले एक बहुत मतलब फायदा है। कहे से कहा जाता है ना कि इनके जो बकरियन के दूध होते है उनमें 36 रोगन से लड़े के क्षमता पावा जाता है।
1: हाँ बहनी तो यह लिए भी देखा रोग ब्याध के लिए तो जरूरी है ये है साथे साथे अपन एक आमदनी बढ़ावे के बढ़िया स्रोत है। काहे की एक जरूरत पड़े पे अपने सब ही बकरियन का बेच के तुरंत नगद धन प्राप्त कर सकते है ना और देखा थोड़ा सा ही ध्यान देकर कि अच्छी नस्ल होए है ना और एक अच्छे से प्रबंधन के साथ है अगर अपने सब छोटा फार्म यानी 8-10 बकरियन से शुरू करी ना तो साल भर में लगभग 2-4 लाख के कमाई की जा सकते है।
0: बिल्कुल और सबसे खास बात मीना बताई ना एक जोन ई है कि एक कम लागत में जैसे भाई मैंने सोचा था कोनो कोनो रोजगार हम करीत बाय जैसे सोचिन का पहले दिमाग बिल्कुल चौकरा
1: कहाँ रुपया पैसा
0: हाँ पैसा रुपया कहाँ से लाई कहाँ से जगह जमीन लाई तो एक बड़ी ये सब सोचे बात ना है वह भाई देखा कम लागत अगर है कम जगह जमीन है तो उतने उम्र और बढ़िया से बढ़िया एक व्यवसाय कर सकती है।
1: और यही लिए तो अपने बकरियन का जो पाला जाता है ना एकाएक गरीबन के गाय भी कहा जाता है काहे कम पैसा में एका शुरू की जा सकत है और अगर अच्छी नस्ल हो ना बहनी तो देखा दूध के साथे साथे मांस एक बेचा जाता है और थोड़ा सा ये वही है कि प्रजाति जोन होते है ना जैसे जमुनापारी है सिरोही है बर्बरी है बीटल है ना ब्लैक बंगाल है तो ये मुख्य रूप से एक प्रजाति है का भाई अपन बहनी लोग मंगावे और 2-4 से शुरू करें 8-10 से शुरू करें जैसे भाई उनके पास पैसा हो काहे कि जैसे ये सब नस्ल जोन होती ना बहनी वो 3-7 लीटर तक के दूध देती
0: रोज है। बिल्कुल लेकिन एका अगर चाहे अपन बहनी लोग भाई देखा एक तो अकेले भी कह सकती थी और दूसरे चाहे तो समूह में जैसे मान लिया 4-6 बहनी लोग बाटिन क्यों लगे जगह जमीन बाय क्यों लगे पैसा रुपया ज्यादा है क्यों लगे जांगर है तो अगर कुल मिला के कहा थी ना कि वैसे भी कहा गवा है कि एकता में बड़ा बल होता है।
1: बिल्कुल
0: तो अगर कई बहनी लोग समूह बनाए के यह रोजी रोजगार का करत जात बाटी ना तो समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से लाभ ले सका थी नोके।
1: हाँ बहनी देखो लाभ के बात कहूँ ना तो अपने बहनी लोग का भाई और भी व्यवसाय से जुड़े के जरूरत पड़त है जैसे भाई कृषक महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास है ना तो ई जो जानकारी है बहनी ना ये का डॉक्टर जेबा जमाल बहनी बतावत ही है विषय पे और इनसे मंजू मौर्या बहनी बतवान है तो भाई अपने बहनी लोग का भी बत कही सुनवाई दी जाए।
0: बिल्कुल सुनवाई दी जाए अपन बहनी लोग भी एक लाभ लें।
2: बहनों हम सभी अपने किसान महिला बदे जानकारी देवे बदे पंचायती माँ डॉक्टर बहनी का समय समय पर बुलावा करी थे ठीक कैसे ने आज अपनी पंचायती माँ हाजिर हैं डॉक्टर जेबा जमाल जोन की सहायक प्राध्यापक हैं डिजाइन एवं टेक्सटाइल विभाग सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। सबसे पहले तो डॉक्टर बहनी आपका पंचायती में स्वागत है स्वागत कहे के साथ जैसे की आज हमारा विषय है की कृषक महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास तो सबसे पहले आप हमारे बहनन का बतावे की हमारे किसान महिला बहनी जोन गाँव में रहा घर ही पर रह के कौन कौन स्टाइल अपनाए के आत्मनिर्भर बन सकती अपने पैर पर खड़ा रह सकती और अपना आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती।
3: सभी किसान बहनों को मेरा नमस्कार। जैसे जो भी महिलाएं दिन में आप अपने घर के काम करती हैं या खेती किसानी करती हैं शाम को आपके पास

0: कुछ समय बच गया, तो आप बहुत से ऐसे काम हैं जिसको करके उसका कोई प्रोडक्ट बना करके बाजार में बेच सकते हैं, जिससे आप अपने पैसे कमा सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में आम के बाग हैं, तो उन फलों से आप अचार बना सकते हैं। आपके यहाँ आंवला पैदा होता है, आप उसका मुरब्बा बना के बेच सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं। या इस तरह से आज के समय में आपने सुना होगा मोरिंगा पाउडर बहुत ज्यादा बिक रहा है, लोग उसको बहुत ज्यादा खा रहे हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा है।
1: ये बना के थोड़ा सा जाता है डॉक्टर?
0: बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके आसपास कहीं भी सहजन की खेती होती है,
1: अच्छा,
0: तो सहजन के जो सब्जी बिकती है उसके बाद आपका जो उसमें पेड़ में पत्तियां हैं उसका पाउडर बनाना है। आप उसको तोड़ लीजिए, धुल करके धूप में सुखा लीजिए, उसको अपने मिक्सर में ही पीस के आप उसके डब्बे में पैक करके आराम से ब्रांडिंग करके बेच सकते हैं। वो बिल्कुल पत्ती किसी काम में नहीं आ रही है, वो पेड़ में लग के झड़ रही है, सूख रही है
1: जी।
0: आप उससे अपना एक प्रोडक्ट बना के उसको बेच के आराम से पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी खेती के साथ साथ साइड में कर सकते हैं। मशरूम उत्पादन है, या कुछ फूलों की खेती है, अगर आपके पास थोड़ी भी जमीन इस तरह की है कि जो पर्टिकुलरली खेती के काम में नहीं आ रही है, या दो फसलों के बीच में कोई ऐसा समय है जब आप किसी मेजर चीज को नहीं उगा रहे हैं, उस समय पे आप सब्जियां लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, और इनकी अच्छी मार्केट है, अच्छे पैसों में ये उत्पाद बेचे जाते हैं।
1: और मशरूम के बात कीजिए डॉक्टर बिनी, तो मशरूम तो कम जगह हम लगावा जा सके थे।
0: मशरूम तो पुरानी चटाइयों में, अखबारों में लगाया जा रहा है इस समय। और इसी तरह से अगर आप करना चाहें तो मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, या डेयरी है, आप जानवर पाल सकते हैं, दूध बेच सकते हैं, दही बेच सकते हैं, पनीर बना करके बेच सकते हैं। एक चीज जो सबसे ज्यादा समझने वाली है वो ये है कि आपको प्रकृति से जो चीज मिलती है
1: जी,
0: अगर आप उस फल सब्जी दूध को वैसे ही बेचेंगे तो आप कम पैसे में बेचेंगे।
1: बिल्कुल,
0: आप उसमें कोई वैल्यू एडिशन करेंगे, अगर आप उसका कोई और प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो महंगे दामों पे बिकेगा।
1: बिल्कुल,
0: आप फल के मुरब्बे अचार बना लीजिए, दूध से दही पनीर बना लीजिए, तो आपको वो ज्यादा दाम देगा, ज्यादा लाभ दे करके जाएगा
1: जी। आपका कहा मतलब जो अपन अपने घरे मौसमी फल हुए, या अपने घरे अपन जो भैंस गुरु हम सभी पलबे करी थी, तो उससे जो दूध है वो दही बना के पनीर बना के बेचा जाए तो दोहरा लाभ है वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन ये सब डॉक्टर बहनी किसान महिला बहनी करी है तो ओके बदे जानकारी की जरूरत पड़त है, और जानकारी के तो हमारे बहनी लोग कहाँ यस जाए, कौन यस जगह जाए, जहिया मन का एक ट्रेनिंग मिल जाए और बढ़िया से करें।
0: बिल्कुल। अब जैसे बात ट्रेनिंग की आती है, तो आपके प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं।
1: कौन कौन?
0: आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बांदा में
1: जी,
0: सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में, और इसी तरह से चंद्रशेखर आजाद कानपुर में। ये 4 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो सरकार ने बनाए ही इसलिए हैं कि वो गांवों के लोगों को लाभ दे सकें।
1: अच्छा।
0: और इन विश्वविद्यालयों के अपने अपने केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं जो हर तहसील में एक होता है। तो आपके गांव की तहसील आप पता करिए, आसपास आपके जो सबसे करीबी कृषि विज्ञान केंद्र हो आप वहां जाके बात कर सकते हैं। इस तरह की सारी ट्रेनिंग वहां पे दी जाती है, चाहे वो मशरूम उत्पादन की हो, चाहे मधुमक्खी पालन की हो, चाहे मुर्गी पालन की हो, मछली पालन की हो, या फिर आंवला बनाना, कैंडी बनाना, मुरब्बा बनाना, इस सब चीजों की ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र भी देता है और सारी कृषि विश्वविद्यालय भी देते हैं। तो आपको सिर्फ वहां जाकर के एक बार बातचीत के पता करने की जरूरत है कि कब किस समय पे कितने दिन की ट्रेनिंग हो रही है, और उसकी कोई या तो फीस नहीं होती है, ज्यादातर 90-95% केस ऐसे ही हैं कि ये ट्रेनिंग्स निशुल्क होती हैं, इनके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। अगर पूरे दिन की ट्रेनिंग होगी तो आपका खाना पीना भी वही लोग देते हैं।
1: अच्छा।
0: आपको अपने घर से टिफिन भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है।
1: अच्छा डॉक्टर, मैंने जो किसान महिला बनी पढ़े लिखे नहीं है तो क्या उनका कोनो कागज पत्र की जरूरत पड़ा था? जैसे पढ़ा लिखा रहा सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाता है, लेकिन हमन अगर जिना पढ़े हैं करे लगे ना है तो क्या वो का ट्रेनिंग मिल सकता?
0: नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कुछ नहीं पढ़े लिखे भी हैं तब भी आप इस तरह की ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपको मुरब्बा बनाने के लिए
1: अच्छा
0: फल की जानकारी होनी चाहिए, नमक चीनी की जानकारी होनी चाहिए, आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है।
1: अच्छा।
0: तो इतनी जानकारी तो हमारी किसान बहनों के पास पहले से ही है, घर तो हम सभी चला रहे हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन ट्रेनिंग की बात की जाए तो वह मुताबिक हम आपसे पूछें। लेकिन डॉक्टर बहनी एक बात हम और आपसे जानना चाहिए थे, क्या हमारे किसान महिला बहनी लोगों का इस सरकार की वारी से कुछ मदद मिल सकता है? जैसे मान लिया कम पूंजी में उनके लगे रुपया पैसा नहीं है तो क्या शुरू कर सकती, तो कौन उम्र से सरकार का मदद करत है?
0: बिल्कुल।

अब जैसे ये हम आपको ट्रेनिंग के बारे में बताए कि कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए आपको ट्रेनिंग मिल सकती है, कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए ट्रेनिंग मिल सकती है, तो इसी तरह से सरकार की कुछ स्कीमें हैं, जैसे आपकी सहकारी समितियां हैं या नाबार्ड है, एक बैंक है जिसका काम ही यही है कि वो गांव के उद्यमियों को सपोर्ट करे। अच्छा। आप वहां से लोन ले सकते हैं। और एक बहुत अच्छी स्कीम होती है PMF करके,

0: आने वाली गांव की कुछ महिलाएं ही उन्होंने मिलकर के एक सहकारी समिति जैसा बनाया, एक सामूहिक व्यवसाय शुरू किया जिसमें सब महिलाएं अपने अपने घरों से निकल करके एक समय पे आती हैं, इकट्ठा होकर के काम करती हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को बेच करके जो लाभ होता है वो सब में बराबरी से बढ़ जाता है। इस तरह की चीजें आप भी सोच सकती हैं कि गाँव की 4-6-10 महिलाएं मिलकर के कोई एक काम शुरू करिए और जब लोग यूनिटी में आकर के एक साथ इकट्ठा होकर के टीम वर्क करते हैं तो काम भी आसानी से होता है क्योंकि काम का बंटवारा हो जाता है।
1: बिल्कुल, टीम के बात की ना आप डॉक्टर बहनी, तो हम जानी थी कि ऐसे थी अपने गांवन में ब्लॉक स्तर से जो स्वयं सहायता समूह है ओकरे मुताबिक बहने बनावत है इन चीजें और अपन रोजगार भी करती है।
0: बिल्कुल, और इस तरह से सरकार आपको ये भी सहायता देती है कि जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसको सरकार खरीद करके उसके बेचने की जिम्मेदारी सरकार लेती है तो आपको उसकी भी परेशानी नहीं होगी कि हम बना तो लिए इसको हम बेचें कहां। जब उसको बेचने की जिम्मेदारी सरकार की है तो आपको आपका जो मुनाफा है वो मिल जाएगा
1: जी।
0: और उसके अलावा अगर कोई बहन हमारी और ज्यादा जागरूक है और सारी चीजें खुद से करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप थोड़ा सा अगर आप पढ़े लिखे हैं या घर के और लोग आपका साथ दें तो ई कॉमर्स साइट्स हैं जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, आप इनपे भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं।
1: प्रोडक्ट बनावा और यहाँ पे जाके
0: ऑनलाइन बेचिए।
1: बिल्कुल, आजकल ऑनलाइन के जमाना है और महिला बहनी भी कुछ कम नहीं है, वह आगे निकल चुकी हैं यह मामले में है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन वाली व्यवस्था अच्छी है। एकरे अलावा और कैसे का व्यवस्था है कुछ बहनन के बदे आप जो हमसे छूट गए वो बताओ। चलो,
0: इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप उसको जब आप बैंक वगैरह में जाएंगे तो आपको बहुत सस्ती दरों पे लोन मिल जाते हैं इस तरह का काम करने के लिए
1: जी।
0: तो आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, गवर्नमेंट आपके सामान को खरीद के उसको बाजार प्रोवाइड करने की भी कोशिश कर रही है
1: जी।
0: तो कुल मिला के सिर्फ बात इतनी है कि आपको एक अपना स्वयं सहायता समूह बना करके यूनिटी में आके एक साथ काम करने की जरूरत है। हर गांव से, ये जो हम केवीके की बात कर रहे थे, जितने केवीके हैं सबका कोई ना कोई एक स्पेशलाइजेशन है। कोई केवीके है जहां पे मशरूम उत्पादन की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, कोई केवीके है जो फिशरीज में बहुत एक्सपर्ट है, कोई मधुमक्खी पालन में बहुत एक्सपर्ट है, तो आप उस हिसाब से पता करके भी काम कर सकते हैं। और नहीं तो हर केवीके पे ये कोशिश की गई है कि हर सब्जेक्ट का एक एक वैज्ञानिक अवश्य हो।
1: अच्छा,
0: तो आपको एक ही छत के नीचे ऐसा लोग भी मिल जाएंगे जो आपको अचार बनाना भी सिखा दें, कढ़ाई करना भी सिखा दें, सिलाई करना भी सिखा दें, मधुमक्खी पालन भी सिखा दें। तो आपको अपने घर के हिसाब से, अपनी जो भी सिचुएशन हो, कंडीशन हो, जितनी आपके पास जमीन है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बहन ऐसी भी हो सकती है कि जिसके यहाँ खेती ना होती हो,
1: बिल्कुल
0: जमीन ना हो,
1: तो मैं कैसे करती हूं?
0: हाँ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर उनके यहाँ मुरब्बा नहीं बना सकते, अचार नहीं बना सकते, तो वो कुछ कर ही नहीं सकती हैं। वो कढ़ाई कर सकती हैं, सिलाई कर सकती हैं, इस तरह के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकती हैं, छोटे छोटे मोबाइल कवर तैयार कर सकती हैं जो बाजार में बहुत आराम से बिक जाते हैं।
1: आजकल डॉक्टर विनीम देखी थे कि जूट के जो है झोला और अपने यहाँ अयोध्या के वजह से जो है राम मंदिर के जो लकड़ी से बनाने वाली चीजें हैं बढ़िया बढ़िया बिकात हैं, तो एक हमार महिला बनी लोग तो बनावती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लकड़ी से बनने वाले जितने भी हस्तशिल्प की चीजें हैं इसकी भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो ITIs हैं वहां पे प्रॉपर इसकी क्लास भी होती है, डिप्लोमा वगैरह भी कराया जाता है, वहां भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, तो आप वहां से जाके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं अगर आपको हस्तशिल्प की चीजों में इंटरेस्ट है। और नहीं तो क्रोशिया है, मैक्रम है, इतनी सारी चीजें हैं कि आप कोई भी एक चीज, इसमें ज्यादातर चीजें तो ऐसी हैं जो हमारी महिला बहनें हमसे भी अच्छा करना जानती हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप उनका काम देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी सुंदर कढ़ाई की है, कितना सुंदर क्रोशिया से कुछ बैग बनाया है। बस बात इतनी कि हमारी बहनों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ये जो वो घर बैठ के कर रही, इससे वो पैसा भी कमा सकती है।
1: बिल्कुल, यही इतना उनके अपने दिमाग में रखे का है कि हमें घर ही तक का ना सीमित रहे का है, हमें और बढ़ चढ़ के आगे निकल के हिस्सा लिए का है और सिर्फ रुपया पैसा कमाए के आत्मनिर्भर बने का है। तो भाई देखो, अगर हमार बहनी आपके बात सुनी है तो मन का ये जरूर महसूस हुए कि हम ये काम कह के जोने मन का रुचि हुए वो का कह के अपनाए के आत्मनिर्भर बन सका थी। आप डॉक्टर जेबा जमाल कृषि महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास ये विषय पे पुरहार जानकारी दी। आप सहायक प्राध्यापक डिजाइन एवं टेक्सटाइल विभाग समुदाय विज्ञान महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से आई और हमारे किसान महिला बहन का पुरहार जानकारी दी। एक आपका पंचायती की वारी से और आकाशवाणी परिवार की वारी से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मीना।
3: हाँ बहनी।
2: ई जोन जेवा जमाल बहनी और मंजू मौर्या बहनी बतियानी कृषक महिलाओं के लिए उद्यमता विकास विषय पर।

0: कितनी बढ़िया जानकारी रही।
1: बिल्कुल, और ऐसे हमें तो उम्मीद आ कि नापन अंग नहीं है, हमें जो बहनी लोग बैठे हुई हैं वह ओका बढ़िया से सुनिन और गुनी है।
0: बिल्कुल सही कहो, लेकिन जब गुने की जो बात की हुई तो काहे ना कुछ गीत गौने भी गुनावा जाए भाई अपने समय अपने बहनी लोग है।
1: चलो देखो एक गौने लेके भी आए ना भावना शर्मा की आवाज में।
0: चलो

0: मीना,
1: हाँ बहनी,
0: ये गारी गीत कितना बढ़िया रहा। हमें जौन भौजी जी बैठी बाटी काकी वाकी ना सभी कितना निहाल हो गई गौने का सुन के।
1: गौन बिया में जब ये सब होए लागत है तो भैया कार्यक्रम जो होत है ना शादी ब्याह वाले वो में चार चांद लाग जाते
0: हैं। बिल्कुल सही कहो, लेकिन अब काहे ना एक ठू जानकारी और अपने सबके बीच में हो जाए। एकीकृत बागवानी मिशन और कृषि यंत्रीकरण, एक बारे में बताओ थे यशवंत पटेल भैया और राम प्रकाश पांडे भैया बतवान बाटे, एक किसान समृद्धि के 12 साल के बारे में।
2: बिल्कुल रुकी हैं आप कहूँ जाइए है ना, कैसे आज बहुत बढ़िया योजना लाई अपने केंद्र सरकार के 12 साल हो गया है। अब 12 साल में का विकास बाबा है ये सब जाने तय आज हम आए हैं भैया, पूरा परिचय और कहाँ है पंच का बतावे।
3: आज आप हैं उद्यान विभाग ऑफिस गुप्तार घाट में और यहाँ उद्यान विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं चलती हैं वो किसानों के।
2: अपन पूरा परिचय अपन नाम।
3: हमारा पूरा परिचय है, हमारा नाम है यशवंत पटेल, सहायक उद्यान निरीक्षक
2: जी। हाँ, तो यह सहित एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना की अगर बात करी तो यह पंच भैया का लाभ मिलता है, कैसे चल दिया है
3: इस योजना में? तो लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी फोटो, मोबाइल नंबर, फार्मर आईडी, ये सब ला के किसी जनसेवा केंद्र से या फिर विभाग में संपर्क करके रजिस्ट्रेशन कराना है।
2: मतलब कि अगर वो वही रजिस्ट्रेशन न कराए हो तो चिंता करने की जरूरत ना, ये सब कागज लिए डॉक्यूमेंट।
3: हाँ,
2: और आपके यहाँ आ जाए।
3: हाँ, ये हमारे यहाँ भी हो जाएगा, बाहर किसी जनसेवा केंद्र से चाहेंगे तो वहाँ भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
2: बिल्कुल, कैसर गाँव में जनसेवा है,
3: जनसेवा चौराहे चौराहे पे है, गाँव में भी है, तमाम जगह पे है। और उसमें ऑप्शन आता है आप साग भाजी के अंतर्गत अगर लाभ लेना चाहते हैं तो साग भाजी में जैसे खीरे का बीज हुआ, लौकी का बीज हुआ, कद्दू का बीज हुआ, टमाटर का बीज हुआ, करेला हुआ, तरोई हुआ, इस सब के बीजों का विभाग द्वारा पहले तो अनुदान दिया जाता था, डायरेक्ट किसान बिल वाउचर सबमिट करता था, उसके खाते में पैसा जाता। लेकिन अब इस समय क्या है कि जो कंपनियां मार्केट में आ रही हैं, किसान बिल वाउचर देने में पहले असमर्थ हुआ करता था, इस समय जो कलश हुआ, नोजू बीडू हुआ, नामधारी हुआ और बीएनआर हुआ, जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो किसानों को आजकल खेतों में आवश्यकता है अपने हिसाब से ले लेता है, वो सब कंपनियां 11 यानी कि 11

0: कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उद्यान विभाग में साग भाजी के लिए, उन सबका बीज यहाँ किसान के डिमांड के हिसाब से हम लोग आदेश करते हैं और उसी पे बीज आता है, वो बीज हम लोग इनको निःशुल्क उपलब्ध करा देते हैं।
1: बिल्कुल, एक बात और है ना कि क्या कहता ना बीज चाहिए फार्मर रजिस्ट्रेशन पता चल जाता है,
0: वो उसमें पता उसमें ये बात पता है कि उसमें 2.2 है तो उसमें पता चल जाएगा 100 ग्राम आपको बीज लेना है तो आपको 100 ग्राम मिल जाएगा, उसमें सारी जानकारी है, खतौनी में सब पता चल जाएगा कि आपके हिस्से में कितनी खेत है क्या है, उसी हिसाब से ही मिल पाएगा।
1: बिल्कुल, ये लिए अपने सबका फार्मर रजिस्ट्री करावे का है,
0: फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है, बिना फार्मर रजिस्ट्री के कोई रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो पाएगा।
1: और दूसरा बात आप करते हैं मुख्यमंत्री राज विकास योजना, मुख्यमंत्री औद्योगिक विकास योजना,
0: उसी के एक अतिरिक्त में है, जैसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन में जो छूट जाते हैं उसके स्थान पे एक ऑप्शन के तौर पे राज्य मुख्यमंत्री राज्य विकास औद्यानिक विकास मिशन योजना है, उसमें भी सेम यही चीजें हैं, साग भाजी फल फूल और जैसे ट्रैक्टर हो गया छोटा वाला 18-20 एचपी से नीचे वाला और पावर टिलर 20 पावर और 18-8 एचपी वाला पावर टिलर हो गया जो गुड़ाई गुड़ाई काम आता है बागवानी साग भाजी खेतों में। इस समय सबसे ज्यादा फूलों की खेती पे अयोध्या में बढ़ावा दिया जा रहा है, जो हमें 75 हेक्टेयर का लक्ष्य फूलों की खेती पे प्राप्त हो चुका है, जबकि साग भाजी की खेती पे राज्य मुख्यमंत्री औद्यानिक मिशन योजना के अंतर्गत 40 हेक्टेयर साग भाजी और फूलों की खेती के लिए 75 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है।
1: बिल्कुल,
0: हाँ, और उसी के साथ साथ हमें उसमें ड्रैगन फ्रूट की खेती का भी लक्ष्य मिला है 2 हेक्टेयर, बागवानी के लिए भी 2 हेक्टेयर का लक्ष्य हुआ है, जैसे आम अमरूद कोई भी जिले में लगाना चाह रहा है तो उसके लिए 2 हेक्टेयर का लक्ष्य हमारे अभी राज्य मुख्यमंत्री औद्यानिक विकास मिशन के अंतर्गत मिला हुआ है। अभी इसके अलावा हमें एकीकृत बागवानी में लक्ष्य आने हैं, हम लोगों ने डिमांड किया है, जो भी लक्ष्य आएंगे वो किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे जो भी सुविधा है, लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा,
1: चाहे
0: प्रथम पाव के आधार पर वरीयता दी जाती है। और दूसरी है केला में जैसे अनुदान दिया जा रहा है, केले का पौधा ले आए अपने हिसाब से, कुछ कंपनियां उसमें भी नामित है, उसका भी अनुदान किसानों को दिया जाता है।
1: जी बिल्कुल, यानी पंचवैया अगर चाहता है कि उनका अपने उद्यान विभाग से सरकारी योजना का लाभ मिले तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करावें, और जैसे रजिस्ट्रेशन कराए के लाख करिए ना जो आप कहीं पहले आओ पहले पाओ, निश्चित उनका सारी योजना का लाभ मिले। एक बार चलत चलत अपन नाम पद और स्थान फिर से।
0: हमारा नाम है यशवंत पटेल, सहायक उद्यान निरीक्षक, गुप्तार घाट उद्यान विभाग ऑफिस।
1: बिल्कुल भैया, पंच भैया
0: नंबर नोट कर लीजिए हमारा 94555 45 606, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं हमसे।
1: बिल्कुल, यानी पंच भैया अपन रजिस्ट्रेशन आके करा सकते हैं, जनसेवा पे करवा सकते हैं, और जोन भी सरकार के द्वारा ऐसा केंद्र सरकार के 12 साल पूरा हो गए तो इतनी योजना चलती है, सब चलाई जाती है, सब केवल लाभार्थी बन सकते,
0: सब लाभार्थी
1: सिर्फ उनका अपन रजिस्ट्रेशन करावे का है और आय के योजना के लाभ प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर लिए का है। आप हमारी पंचायती में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: लीला बहनी,
3: हाँ?
2: देखो ये तो रहा अपन जो
3: हाँ?
2: वाय ध्यानांकन पे आधारित है ना, किसान समृद्धि के 12 साल है ना, तो एक विषय में अपने भाई बहनी लोगों का भी जानकारी मिली, लेकिन अब देखा समय है कि
3: मौसम के हाल बताओ,
2: मौसम
3: बाजार भाव, तो जो उन बाजार के भाव अपने सबका मिला है, चावल के भाव 3,100 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूं के भाव 2,550 रुपया, उरद करीब 9,350 रुपया, मसूर 7,400 रुपया प्रति क्विंटल,
2: अरहर के दाल 11,000 रुपया प्रति क्विंटल, आलू सफेद की 870 रुपया, प्याज लाल 1,460 रुपया, टमाटर के भाव रहा 2,600 रुपया, लहसुन के भाव रहा 7,200 और तरोई के भाव रहा 1,350 रुपया प्रति क्विंटल,
3: अदरक के भाव रहा 8,900 रुपया प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 3,500, भिंडी के भाव रहा 1,650 रुपया, लौकी के भाव 1,200 रुपया, करेला के भाव 1,700 रुपया प्रति क्विंटल,
2: बैगन रहा 2,000 रुपया प्रति क्विंटल, हरी मिर्च है 2,900 रुपया, कद्दू है 1,000 रुपया, यही के साथ साथ जो पका केला है वो है 2,900 रुपया, पपीता 2,800 रुपया, अनार के भाव रहा 7,800 रुपया प्रति क्विंटल, गुड़ 5,200 रुपया, चीनी 4,130 रुपया प्रति क्विंटल।
3: अब लगे हाथ मौसम के जानकारी भी अपने बहनी लोगन का दी जाए। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 73%, न्यूनतम 48%।
2: हवा के जोन गति है 3.9 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा

0: जोन है, ये कह रहे उत्तरी पश्चिमी वर्षा शून्य है। पूर्वानुमान यही है कि आगामी 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का बादल छाए के संभावना है, साथ ही साथ वर्षा के भी संभावना है। औसत तापमान सामान्य से अधिक रहे के अंदेशा है और यही से ना लू जैसी स्थिति भी बने रहे के अनुमान है। ये तो देखो मौसम विभाग की जानकारी अपने सबका मिली है ना, और लगे हाथ ही बता दे कि कल जो रहे कृषि जगत कार्यक्रम जमा चर्चा बात बत कही गई नहीं, बाजार भाव मौसम सब तो रहवे करत है
1: बिल्कुल मीना। लेकिन अब अपन घड़ी का कहत बनी वहू कुआरी तो निहाल लो।
0: अरे बहनी घड़ी तो देखा समय यही कहत है कि अपने सब बहनी लोग से विदा ले, यानी अंगनैया से विदा लीन जाए, और मना तो ना ही करत है, मतलब इशारा तो यही है। तो अगले कार्यक्रम में फिर मिलब, तब तक के लिए मीना
1: और लीला का देवनमती जय हिंद।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बिजू का
3: पुतला बोल रहे हैं।
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: परंतु सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: आंगनवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:15 हुए हैं। हम जानकारी दे दें अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के बारे में। जी हाँ, आज रात 8:15 आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन, 9:15 महफिल गजल, रात 9:30 सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, और रात्रि 10:00 आप सुन पाएंगे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण। यह तो थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की, और अब बातें कल की। जी हाँ, कल यानी बुधवार 24 जून 2026 को हमारी सभा आरंभ होगी रोज की तरह प्रातः 5:53 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुनेंगे कल प्रातः 7:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम प्रसारित किया जाएगा कल सुबह 8:15। 8:30 सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम में उधर, इसमें आज की बात होगी कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विषय पर। अन्य जानकारियों के अलावा इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा से की गई भेंटवार्ता जिसका विषय होगा थायराइड और मोटापा। कल सुबह 9:00 आप सुनेंगे व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर। कल दोपहर 1:00 फेसबुक श्रोताओं की फरमाइश पूरी करेंगे, कार्यक्रम होगा कुछ तुमने कहा। कल दोपहर 2:00 आप सुनेंगे गीत गजल और भजन कार्यक्रम गीतांजलि में। 2:30 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगना, जिसमें चर्चा होगी कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसी कार्यक्रम अंगना में आप सुन पाएंगे फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुरमाला। कल शाम 5:00 युवाणी कार्यक्रम में चर्चा होगी राजनय में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर। व्यक्ति विशेष में आप जानेंगे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के बारे में। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे हमारा सेगमेंट खेल संसार भी। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा कल शाम 5:30 कार्यक्रम लोक संगीत में, तथा 6:30 कार्यक्रम होगा गूंजे स्वर गांव के। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन पाएंगे कल शाम 6:10 पर, और रात्रि 8:15 पर गीत गुंजन, रात्रि 9:15 पर महफिल गजल, रात्रि 9:30 सुनेगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। कल शाम 6:45 पर कृषक बंधु अपने कार्यक्रम कृषि जगत में चर्चा सुनेंगे खरीफ फसलों की तैयारी। साथ ही आप सुन पाएंगे डॉक्टर बुद्ध भारती से की गई भेंटवार्ता जिसका विषय होगा खरीफ के मौसम में दलहनी फसलों की उन्नत खेती। यह तो थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल प्रातः 5

11:53 से रात्रि 11:10 तक के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। इस वक्त आपसे रूबरू आपका रेडियो दोस्त विवेक सोनी। कुछ ही पलों में कुछ एक संदेशों के पश्चात ठीक 7:20 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुबत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए आज फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। विशेष जांच दल ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि जांच में सभी विभागों की जिम्मेदारी को देखा जाएगा और सभी पहलुओं पर गहराई से गौर करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है, उसमें अभी हम लोगों ने डिटेल घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमें कुछ शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट, जो कि निर्धारित समय सीमा है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात उच्च स्तरीय बैठक में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। जांच दल 7 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। अलीगंज पुलिस की ओर से देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया।

0: गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
1: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है और भी जो भी आवश्यकता होगी हम पूरा कर जो भी कर सकते करेंगे। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
0: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अवैध निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। लखनऊ में अग्निकांड के बाद आज प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने होटलों और कोचिंग सेंटरों में चेकिंग अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं बस्ती, मेरठ, जौनपुर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। एसआईटी के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य 2 सदस्यों के साथ आज अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है, एसआईटी की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
2: शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर को पद्मश्री से नवाजा।
4: प्रोफेसर मंगला कपूर, साहित्य एवं शिक्षा, शास्त्रीय संगीत।
3: राष्ट्रपति ने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया। कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी प्रेमवती ने ये पुरस्कार स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में पद्म पुरस्कार पाने वाली प्रदेश की हस्तियों को बधाई दी और उनके योगदान को अमूल्य और सराहनीय बताया। इस वर्ष 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी के हृदय में सदैव राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी

0: की जाएगी। वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा और गोदौलिया स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया ₹10 और अधिकतम ₹50 निर्धारित किया गया है। कैंट से गोदौलिया तक की पूरी यात्रा मात्र ₹50 में होगी। काशी स्मार्ट पास धारकों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना कैंट से गोदौलिया तक लगभग 3.75 किलोमीटर मार्ग पर संचालित होगी। ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर आज प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ में इस अवसर पर बड़ी संख्या में भंडारे लगाए गए हैं। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि अगले 4 दिनों तक पूर्वी जनपदों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 जून के बाद बारिश होने की संभावना है।
1: कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई हैं और इन स्थितियों के अगले 4 दिनों तक बिना किसी परिवर्तन के ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुपत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
3: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:31 और 38 सेकंड हुए हैं। आप सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना एक नजर फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। मजू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और अब आपको सुनवा रहे हैं खुदा गवाह इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: नुमाइश एल्बम से ये गीत था। इस गीत को गाया साथ ही संगीत बद किया पंकज उदास ने। जफर गोरखपुरी ने इस गीत की रचना की थी।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। आइए अब आपको सुनवाते हैं, ये है प्रेम इस एल्बम का गीत। इस गीत के गायक कलाकार और संगीतकार मिलिंद इंगले हैं। श्याम अनुरागी का लिखा गीत है।

0: आज के हवा महल में आपको सुनवा रहे हैं प्रेमलता जैन की लिखी नाटिका चांद की किरण।
1: अरे सुनती हो, कहाँ हो?
2: अरे यहाँ तो कोई बोलता ही नहीं,
3: लगता है सब कहीं गए हैं।
2: नहीं नहीं, गए नहीं होंगे, यहीं होंगे। अच्छा ठहरो, मैं आवाज देता हूँ।
1: सरलार, ओ सरलार,
4: कौन है?
1: मैं हूँ, किवाड़ खोलो।
4: आती हूँ।
5: क्या बहुत देर से पुकार रहे थे, मुझे सुनाई ही नहीं दिया।
2: नहीं नहीं, अभी ही आए हैं, तुम शायद अंदर वाले रूम में थी।
5: हाँ, मुन्ने को सुला रही थी।
2: अच्छा छोड़ो, देखो तो ये देखो कौन है।
3: नमस्ते भाभी जी।
5: नमस्ते भाई साहब।
2: भाई वाह, जी नमस्ते नमस्ते तो हो गई, पर आपसी परिचय।
5: परिचय करवाओ तो।
2: तो लो सुनो, देखो ये है मेरा लंगोटिया यार प्रेमेंद्र। जब हम छोटे थे ना तो समझो एक प्राण और दो शरीर थे।
3: पर भाभी जी, इस प्राण को इस निर्मोहिनी निकाल फेंका था।
5: अच्छा? वो क्यों?
3: क्योंकि मैं
2: क्योंकि व्योंकि छोड़। क्या फिर झगड़ेगा?
3: पता नहीं।
2: और सरला क्या बाहर ही खड़ा रखोगी?
5: अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी। आइए आइए, अंदर आइए।
2: चल भाई अंदर चल।
5: बैठिए भैया, आप भी बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ।
2: हाँ, कहाँ जा रही हो?
5: कहीं नहीं, जरा चाय वाय ले आऊँ।
3: चाय का कष्ट मत कीजिए भाभी जी, बैठिए ना।
5: अरे वाह, इसमें कष्ट भला कैसा, ये तो सौभाग्य है। और फिर आपको तो मुँह दिखाई भी देनी है ना।
3: मुँह दिखाई? अच्छा अच्छा, समझा, मैं पहली बार मिला हूँ आपसे। वाह, क्या कहना है भाभी जी, आप तो बहुत बड़ी व्यंगकार हैं। आपने मुझे याद दिलाया कि मुझे मुँह दिखाई देनी है आपको।
2: सुन लिया ना, ये प्रेमेंद्र भी कम नहीं। अच्छा सर, तुम बैठो, मैं बुलाता हूँ रामू को।
5: रामू बाहर गया है, मैं 5 मिनट में आती हूँ, अधिक समय नहीं लगेगा।
2: और सुना यार प्रेम, कामकाज कैसा चल रहा है?
3: कामकाज कैसा यार, भाई मैं तो सरकार का फेथफुल सर्वेंट हूँ।
2: हाँ हाँ।
3: गुजारे के लायक उसी से मिल जाता है बस। अमा तुम सुनाओ, क्या ठाट है?
2: अपना भी ठीक ही चल रहा है भाई, जीवन गुजर ही रहा है। अच्छा तू एक बात बता।
3: हाँ।
2: तू वहाँ ऑफिस में क्या कर रहा था?
3: भाई वहाँ एक लड़की काम करती है।
2: हाँ।
3: मिस मित्रा, उसी से
2: मिलने गया था। यही ना, देख प्रेम तेरी आदत बिल्कुल नहीं बदली, याद है ना इसी बात पे झगड़ा हुआ था।
3: ओफो, रहा झक्की का झक्की। अबे पहले बात तो सुन ले पूरी।
2: अच्छा सुना।
3: अरे भले मानुस, पता है या नहीं परसों लोक नृत्य का कार्यक्रम है।
2: हाँ, हाँ, वो तो पता है। तो भाई उससे और इस लड़की से क्या संबंध है?
3: संबंध ही तो है, डांस प्रोग्राम के टिकट लेने गया था उसके पास।
2: हाँ।
3: और कहीं मिल ही नहीं रहे थे।
2: अच्छा खैर छोड़। अरे सरला चाय ले आई?
5: हाँ हाँ चाय ले आई, देखो जरा वो टेबल पास कर दो ना।
2: अच्छा लो, ये लो।
5: लीजिए चाय लीजिए।
3: वाह भाभी जी, कुछ ही मिनटों में इतनी अच्छी अच्छी चीजें, लगता है आप बहुत सुखद गृहिणी हैं।
5: अपने मित्र महोदय से जरा पूछिए, इनके दृष्टि में तो मैं बैड हाउसवाइफ हूँ।
3: क्यों बे कृष्ण, क्या ये बात ठीक है?
2: अना यार छोड़ो भी, क्या बात ले बैठे, ले ले और खा, ले लेके खा।
3: अरे नहीं।
2: अबे और लेना।
3: हम बस बस कुछ नहीं, अब मैं जाऊंगा।
2: हाँ, जाएगा?
3: हाँ।
2: अबे इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर और बैठ।
3: नहीं नहीं कुछ काम है, अब तो मैं आता ही रहूंगा, परसों तो मिलेंगे ही।
2: परसों?
3: हाँ परसों। लीजिए भाभी जी।

0: क्या है?
1: परसों लोक नृत्य का शो है ना, हाँ, उसके हाँ। दो टिकट हैं ये।
2: देख भाई प्रेम, ये तो तूने अपने लिए खरीदे हैं ना, ये रहने दे, हमें जाना होगा तो हम और ले लेंगे।
0: हाँ भाई साहब, ये ठीक ही कह रहे हैं।
1: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मियाँ बीबी और दो बच्चे, चार टिकट लिए थे, बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वैसे दो टिकट और मिल जाएंगे, लीजिए ना। और ये तो आपकी मुंह दिखाई है।
2: हाँ क्यों नहीं, अबे टाल दे सस्ते में। अच्छा भाई सरला, ये टिकट ले लो, नहीं तो प्रेम बुरा मान जाएगा। और देखो वो रुपए ले आओ।
1: रुपए? अबे कैसी बातें कर रहा है तू, क्या रुपए देने के लिए मैंने टिकट दिए हैं?
2: वो तो मैं जानता हूँ भाई, पर भाई प्रेम, मैं इस सिद्धांत में पूरा विश्वास रखता हूँ कि मित्रों के बीच रुपए पैसे का संबंध नहीं होना चाहिए, मित्रता की बाधा बन जाता है रुपया। जाओ सरला, रुपए ले आओ।
0: जी अच्छा।
1: यार मन खराब कर दिया तूने, भला कभी प्यार भी पैसों से तोला जाता है? कितने मन से टिकट दिए थे मैंने।
2: मैं जानता हूँ दोस्त, तेरी भावनाओं को मैं ठेस नहीं लगाना चाहता था,
1: पर क्या?
2: पर यही कि आज नहीं तो कल ये पैसा प्यार को तौल ही देता है। यार पैसा तो आदान प्रदान मांगता है ना। अच्छा खैर, ये प्रसंग छोड़, आदरा गले तो लग जाए, कितने वर्षों के बाद मिला है।
1: अबे हट, रहने दे, तू बिल्कुल वही है, पहले थप्पड़ फिर प्यार। पर इस बार,
0: इस बार क्या भाई साहब, लीजिए ये लीजिए रुपए,
1: जैसी इच्छा भाभी। अच्छा तो मैं चलूं भाभी जी।
0: नमस्ते भैया, कभी बच्चों वगैरह को लाइएगा।
1: हाँ जरूर लाऊंगा भाभी जी। अच्छा कृष्ण,
2: अच्छा अच्छा कुछ नहीं भाई, चल तुझे घर पर ड्रॉप कर दूं।
1: नहीं नहीं, मुझे अभी बाहर जाना है।
2: तू वहीं सही, चल।
1: ओह अच्छा, चल तू ही जीता मैं हारा।

0: अब सो गया। सोना तो जैसे चाहता ही नहीं।
1: कौन नहीं सोना चाहता है?
0: यही मुन्ना, सोने का नाम नहीं और सारे दिन उधर। मैं तो तंग आ जाती हूँ।
1: तंग आ जाती हो? अरे भारतीय नारी का तो जीवन ही बच्चे हैं, वो तो कभी तंग नहीं आती।
0: लो और सुनो, इसमें भला भारतीय नारी की क्या बात है?
1: यही कि बच्चे तो भगवान की देन होते हैं और वो तो बच्चों को छाती से चिपकाए रहती है, सुख में दुख में।
0: बस बस बस, मैं सब समझ गई। अच्छा एक काम करोगे?
1: काम? अजी तुम कहो तो जान भी हाजिर है।
0: बातें मत बनाओ। सुनो,
1: हाँ?
0: गीता और महेश तो बड़े हो गए हैं, उनका तो अब सहारा ही है। मीना और बिट्टू भी स्कूल चले जाते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: तो यही कि रमा और मुन्ना, उनमें से एक को तुम अपने साथ ऑफिस ले जाए।
1: क्या कहा, ऑफिस ले जाए?
0: मुझ में तो अभी हिम्मत नहीं रही कि इतना बोझ संभाल सकूं।
1: ऑफिस ले जाया करो, कमाल कर दिया तुमने सरला। अरे तुम अगर हिम्मत हारोगी तो ये बच्चे पनेंगे कैसे?
0: मैं क्या जानू, तुम पालना, तुम भी तो बाप हो इनके।
1: अच्छा भाई चलो, मैं ही पाल लूंगा, तुम खुश रहो। अच्छा अब तो सो जाओ, देखो सरला मुझे नींद आ रही है।
0: तो सो जाओ ना, मैं क्या रोक रही हूँ तुम्हें, मुझे जब नींद आएगी मैं भी सो जाऊंगी।
1: अच्छा अच्छा, गुड नाइट डार्लिंग।
0: नहीं नहीं, सुनते हो?
1: ओफ़ो, क्या है?
0: मुझे नींद नहीं आएगी।
1: क्यों, क्या बात है जो नींद नहीं आएगी?
0: चिंता हो रही है।
1: कैसी चिंता?
0: गीता और महेश की फीसें देनी है।
1: तो दे देना।
0: पर दूंगी कहाँ से, यही तो समस्या है।
1: क्यों, रुपए तो उनके लिए अलग ही रखे थे ना।
0: 50 रुपए टिकटों के जो दिलवा दिए, आप तो कुछ सोचते ही नहीं, भला क्या जरूरत थी टिकटों की? मेरा तो चिंता से बुरा हाल हो गया है, फीस देना भी बहुत जरूरी है।
1: क्यों चिंता करती हो सरला, सब ठीक हो जाएगा। और फिर टिकटों के रुपए तो देने ही थे ना, तुम ही कहो भला मुफ्त में टिकट ले लेता।
0: ओफो, तो मैं कब कहती हूँ कि मुफ्त में टिकट ले लेते, टिकट लिए ही क्यों?
1: लिए ही क्यों, तो क्या मैं अपनी बेइज्जती करवा लेता? वो तो बच्चों के लिए टिकट ला सकता है और मैं तुम्हारे और अपने लिए दो टिकट नहीं ले सकता?
0: हाँ हाँ, नहीं ले सकते, पहले घर का खर्चा तो पूरा हो फिर कहीं।
1: फिर कुछ नहीं होगा सरला, तुम्हें तो घर चलाना आता ही नहीं। इतना रुपया कमाता हूँ पर न जाने तुम कहाँ फूंक देती हो।
0: फूंक देती हूँ? नहीं नहीं, मैं खा लेती हूँ।
1: वो कुछ तो करती ही हो सरला, प्रेम को ही देखो ना, मुझसे कम वेतन मिलता है पर कितनी शांति है उसे, खर्च और शौक दोनों पूरे करता है। बीबी फूहड़ है इसीलिए ना।
0: हाँ हाँ, मैं ही फूहड़ हूँ, ये नहीं सोचते कि उसकी गृहस्थी छोटी है, कुल 4 प्राणी और यहाँ इतना बड़ा परिवार, उसके लिए नौकर भी जरूरी, घर की चिंताओं ने तोड़ डाला है मुझे तो। आखिर पुरुष होना, पल्ले झाड़ कर अलग।

0: हो गए और दोष मेरे मत से मर गया।
1: अच्छा बाबा माफ करो, चलो दोष मेरा ही सही, अब सोने दो मुझे।
2: साहब
1: क्या है?
2: बाहर कोई प्रवीण साहब आपसे मिलने आए हैं।
1: अच्छा अच्छा, उन्हें शीघ्र अंदर भेज दो।
3: अरे प्रेम, आओ आओ आओ भाई आओ। है
4: क्या, उसी से मिलने आए हो?
5: हाँ कृष्ण, उसी से मिलने आया था और मिल भी लिया यार, मन आनंदित हो गया।
1: हाँ हाँ हाँ, आनंदित क्यों नहीं होगा, बचपन की आदत जो है।
5: अबे तो जलता क्यों है? उसने बड़े प्यार से दो टिकट मेरे हाथ में थमाकर कहा।
1: क्या कहा?
5: आपको किसी भी समय किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए, आपके लिए काम करके मुझे आनंद मिलेगा।
1: अच्छा अच्छा, बहुत ठीक, मेरा भी मन आनंदित हो गया। अच्छा बता भाई, शाम का क्या प्रोग्राम है?
5: प्रोग्राम क्या, वही मिलेंगे?
1: नहीं भाई सुन, शाम को मैं और सरला तुम्हें घर से पिकअप करते हुए शो में चलेंगे, तो ठीक है ना?
5: हाँ हाँ, बहुत ठीक बहुत ठीक, भाभी जी का भी हमारे घर पदार्पण हो जाएगा।
1: तो भाई बात पक्की है, ठीक 6:45 हम पहुंच रहे हैं तुम्हारे यहाँ। ओके
5: ओके ओके, ठीक 6:45।
1: हाँ भाई।
6: अरे सरला, अरे कहाँ हो भाई, कहाँ चली गई?
1: ओफो, देर ना हो जाए कहीं। रामू ये क्या है?
7: जी चाय।
1: अच्छा चाय को बाहर रख दो, और देखो मैम साहब को जल्दी भेजो।
7: जी हाँ,
1: मैं चाय पीता हूँ, तू जरा जल्दी कर। सरला,
6: अरे ओ सरला,
1: ओहो तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुए, मैंने तो पहले ही फोन कर दिया था।
8: तैयार होने में कौन से युग लगते हैं, पर मुझे तो तैयार होना ही नहीं है।
1: क्या कहा? तैयार होना ही नहीं है, क्या कह रही हो तुम ये?
8: ठीक कह रही हूँ, मैं नहीं जा सकती, मुन्ने को तेज बुखार है, रो रहा है, चुप ही नहीं होता, तुम ही बताओ ना मुन्ने को छोड़।
1: ओ मुन्ना मुन्ना, तुम्हारा सारा जीवन इसी में बीतेगा, मेरे साथ जाने को एक क्षण भी नहीं है तुम्हारे पास।
8: कैसी बातें कर रहे हो जी, तुम्हारे लिए तो जीवन का हर क्षण प्रस्तुत है, परंतु
1: देखो देखो सरला, परंतु परंतु कुछ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना है, जाओ 10 मिनट में तैयार होकर चली आओ।
8: ओहो तुम कुछ समझते क्यों नहीं, मैं अगर जा सकती तो क्या नहीं जाती, मुन्ने को तेज बुखार में छोड़कर भला कैसे जाऊं?
1: मुन्ने को तेज बुखार में छोड़कर कैसे जाऊं? ओफो गीता संभाल लेगी ना उसे, अभी डॉक्टर साहब को फोन कर देता हूँ, वो आके देख जाएंगे।
8: आकर देख जाएंगे, फीस के लिए रुपए कहाँ से आएंगे, कल ही शाह बनकर 50 रुपए फूंक दिए।
1: क्या कहा, फूंक दिए? हे भगवान, ये क्या जाहिल और गमार मेरे भाग में लिखी थी, पुण्य 20 रुपए जिंदगी दूभर हो गई है, अब तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा।
8: घर छोड़कर चले जाओगे? तुम क्यों जाओगे, मैं ही चली जाती हूँ, अनपढ़ जाहिल गंवार का तुम्हारे जैसे साहब के घर में भला क्या काम है, शादी से पहले मैं ही चांद की किरण और फूल से सुकुमारी थी ना।
1: हाँ हाँ ठीक ही बात है, तब तुम कुछ और ही थी, तुम तब मेरे साथ चांद तक जाने को तैयार रहती थी, और अब?
8: हाँ, अब क्या हो गया है?
1: अब क्या नहीं हुआ है, अब तुम्हें मेरे मान और सम्मान का भी कुछ ख्याल नहीं है, तुम ही बोलो प्रेम क्या कहेगा, उसकी मिसेस क्या कहेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम अपने बच्चों को लेकर बैठो, मुन्ने को सुलाओ, मैं जाता हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा इस नगर में।
5: आओ आओ कृष्ण, हमारी देर हो गई।
1: हाँ देर हो गई।
5: हाँ भाभी जी कहाँ है, क्या गाड़ी में बैठी है?
1: नहीं गाड़ी में नहीं, घर में बैठी है।
5: यार क्या बात है, झगड़ा करके आया क्या? अरे बात तो बता।
1: बात बात कुछ नहीं भाई, मुन्ने को बुखार था तो बस सरला नहीं आ सकी।
5: अरे मुन्ने को बुखार है तो तू आया क्यों? अबे फोन कर देता। अजी सुनती हो
9: क्या है? नमस्ते भाई साहब, भाभी जी कहाँ है?
1: वो नहीं आ सकी है, छोटा बच्चा बीमार है।
9: है भाई साहब, तो आपने फोन कर दिया होता, हम वहाँ आ जाते, प्रोग्राम कैंसिल हो जाता।
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पहले नमस्ते तो स्वीकार कीजिए। भाई वाह प्रेम, तू तो सदैव भाग्यवान रहा है, भाभी जी प्रशंसा के योग्य हैं।
5: कौन भाग्यवान है ये तू अच्छी तरह जानता है, कमला से अधिक सुंदर गुणवती पढ़ी लिखी हमारी भाभी जी, ऊंचे पद की नौकरी, सुंदर बच्चे, अमा किस वस्तु का भाव है तुम्हें?
9: ये बातें तो फिर होती रहेंगी, चलिए घर चलिए, बेचारी भाभी जी अकेली परेशान हो रही होंगी, प्रोग्राम का क्या, वो तो होते ही रहते हैं।
1: नहीं नहीं, ये आप लोग क्या कह रहे हैं, जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं ही होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, सरला सब संभाल लेती है।
5: सब संभाल लेती है ये बात अलग है, पर तुम्हें तो हर कार्य में उनका साथ देना चाहिए।
9: ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब, पति के पूर्ण सहयोग के बिना पत्नी टूट जाती है, उसका हृदय टूट जाता है।
1: ये सब ठीक है, मैं सब समझता हूँ, पर क्या करूँ, हर रोज का काम, बीमारी, पैसे की चिंता, ये सब मिलकर दिमाग खराब कर देते हैं।
5: दिमाग तो खराब हो गए, पर भाई मेरे ये सब तो पहले सोचने की बातें थी, अब इसका उपाय क्या है, जितने परिवार के प्राणी अधिक होंगे उतनी अधिक परेशानियां, झगड़ा और खर्चा पड़ेगा।
1: पर इसका उपाय भी तो होगा प्रेम।
9: उपाय यही कि सब समस्याओं का समाधान आपसी सहयोग ही है, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बढ़िए, एक दूसरे को दोषी न मानकर

0: कर्तव्य और भावना में सामंजस्य रखिए।
1: हाँ दोस्त, ये ठीक कह रही हैं। जीवन में बैलेंस होना चाहिए, दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए।
2: कहता तो तू ठीक है। हाँ। वास्तव में मैं पलायन वृत्ति को अपनाता जा रहा था
1: और यही विषाद का मूल कारण है। अच्छा चल, भाभी जी के पास चले।
2: नहीं नहीं चलो। हाँ। तुम सबको शो में ड्रॉप करके मैं घर जाऊंगा, अपनी सरला के पास।
1: बहुत ठीक, यही है सामंजस्य की भावना, पति और पत्नी का पूर्ण सहयोग।

तो ये थी नाटिका चांद की किरण, लेखिका प्रेमलता जैन, निर्देशन किया जनार्दन राय ने। आकाशवाणी के पटना केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से। न्यूज वन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत कुंजन। कार्यक्रम में हम आपको ले चलें, उससे पहले कुछ एक संदेश।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
4: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
3: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
5: हेलो
6: सुनो, टेलीफोन नंबर,
7: माय नंबर इज
8: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
9: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
10: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
9: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
10: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
9: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
10: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
9: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
11: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का

0: रहता है इंतजार ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात
1: फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम गीत गुंजन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त विवेक सोनी आज अपने इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नए और पुराने फिल्मी गानों का एक मिक्सचर जी हाँ सबसे पहला गीत ये हम आपको सुनवा रहे हैं प्यारी सी आवाजों में

We need up.

0: CERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। गर्मियों का मौसम चल ही रहा है, जबरदस्त गर्मियां इस वक्त पड़ रही हैं, पूरी एक प्रकार से हीट वेव चल रही है। ऐसे मौके पर प्रचार माध्यमों के माध्यम से हीट वेव यानी लू के संबंध में जारी की जा रही चेतावनियों पर ध्यान दें। हीट स्ट्रोक, लू लगना जैसे लक्षणों के कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उबकाई, घबराहट, धड़कन और सांसों में तेजी, मूर्छा आदि को पहचानें। यदि किसी भी प्रकार से लक्षण या हीट रेस यानी घमोरियां और हीट क्रैम्प मांसपेशियों में अकड़न का ऐंठन का अनुभव हो तो तुरंत मेडिकल एड ले लें। अपने शरीर में पानी की कमी को बनाए रखें, लगातार अधिक से अधिक पानी पिएं। यदि प्यास न लगी हो तब भी पानी अवश्य पिए। घर से बाहर जाते समय पीने का पानी साथ लेकर जाएं। ORS घर में बने हुए पेय जैसे लस्सी, चावल का पानी यानी माड़, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करते रहें जिससे शरीर में पानी की कमी न होने पाए। पानी की अधिक मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां जैसे तरबूज

तरबूज, खरबूज, संतरे, अंगूर, अनानास, खीरा, ककड़ी, सलाद, पत्ता, इन सब का उपयोग लगातार करते रहें। अपने शरीर को ढक कर रखें, हल्के रंग के कपड़े पहने और खुले में यदि आप काम करते हैं तो धूप से बचाव के लिए शरीर को ढक कर रखें। इसे ढकने के लिए छाता, टोपी, तौलिया, गमछा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। धूप में जाते वक्त आँखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा पहने और पैरों के बचाव के लिए जूते या चप्पलों का अवश्य प्रयोग करें।

इसी प्यारे से गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन अब समाप्त होता है। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके पश्चात ठीक 9 आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9। कृपया समाचारों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से

0: राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
4: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66

0: लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
0: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
0: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ उनरवा के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की और बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के

एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री

0: BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijayamrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and Singh Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD shows orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 9:15 हुए हैं। ये वक्त है गैर फिल्मी गजलों के कार्यक्रम महफिल गजल का। सबसे पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं मिताली सिंह की आवाज में मीठी सी गजल, लेकिन उससे पहले कुछ एक संदेश।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा, बसंतपुर, कटेहरी, अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141833।

0: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलॉर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद कॉल करें 91-16-76-46-46।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मछली मंडी नियावा अयोध्या कॉल करें 63-86-90-70-06। आंखों के पर्दे की समस्या मोतियाबिंद लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।

0: अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गज़लों का कार्यक्रम महफिले गज़ल। न्यूज़ ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 9:30 हुए हैं। ये वक्त होता है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या को प्रसारित करने का। जी हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका रेडियो दोस्त विवेक सोनी हाजिर है एक बार फिर लेकर ये पसंदीदा प्रोग्राम आपका सजीव फोन इन हेलो अयोध्या। हम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले कुछ एक संदेश।
1: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपनी सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com BEd, DLed, BTC, DHP, D-Pharm, B-Pharm और GNM जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
0: जी हाँ, देखिए कार्यक्रम शुरू हो चुका है और हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ चुके हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपको पता ही है 7376-80-40-90। आइए बात करते हैं एक कॉलर से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, प्लीज़ अपना नाम बताइए।
3: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताएं।
3: हेलो सर।
0: हाँ, अपना नाम बताइए।
3: जी, मैं राम कृपाल प्रजापति बोल रहा हूँ, बड़ीपुरागंज वार्ड अयोध्या से।
0: हाँ राम कृपाल जी, कैसे हैं?
3: हेलो जी, आवाज कम आ रही।
0: हम कह रहे हैं आप कैसे हैं?
3: जी ठीक है, आप नहीं बताइए।
0: हम भी ठीक हैं। आप प्रोग्राम में गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
3: जी बराबर सर, सुनता रहता हूँ, वो बढ़िया प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम वो बढ़िया।
0: हाँ, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं प्रोग्राम हेलो अयोध्या में आज?
3: फिल्म आंखें के मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: अच्छा, आपने किसी से मोहब्बत किया है? हेलो, आप शर्मा रहे हैं क्या?
3: जी आपकी आवाज में स्पष्ट नहीं आ रही।
0: हम कह रहे हैं आपने किसी से मोहब्बत किया है अपनी लाइफ में?
3: जी
0: आपने आपने गाने का नाम बताया मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, तो क्या ऐसा अनुभव आपका भी है? आपको तो मोहब्बत अपनी मिली कि नहीं मिली? आपने किसी से मोहब्बत किया था?
3: अभी अभी जल्दी किसी से बहुत बढ़िया मोहब्बत हो गई है, इसलिए गाना सुनना चाह रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आपकी फरमाइश है प्रोग्राम हेलो अयोध्या में आंखें फिल्म का ये गीत सुनने की हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और परिवार में कौन कौन है?
3: जी मैं आदमी समय पर अकेले बात कर रहा हूँ। अकेले अकेले बात कर रहा हूँ।
0: नहीं, हम ये कह रहे हैं कि परिवार में आपके कौन कौन है? अच्छा,
3: आई एम बिचलन ना सर।
0: अच्छा, आप विक्रम हैं। अच्छा, आपके उनके मित्र थे आप?
3: जी

0: सर आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही।
1: आवाज आपकी स्पष्ट तो आ रही है, आपकी आवाज तो हमें पूरी मिल रही है।
0: बहुत बहुत बहुत धीरे सुनाई पड़ रहा।
1: अच्छा, तो अब ठीक हुआ कुछ? आप हमारी आवाज आप तक ठीक से पहुंच गई?
0: जी आवाज है। जी जी बताइए।
1: हाँ, तो आप विक्रम जी बोल रहे हैं?
0: आर के प्रजापति।
1: आर के प्रजापति? हाँ, तो राम कृपाल प्रजापति आप ही तो थे, आप ही ने तो कॉल किया है। तो आप?
0: जी राम कृपाल प्रजापति।
1: हाँ हाँ जी बिल्कुल। हम ये कह रहे थे परिवार में और कौन कौन है आपके?
0: सर आई एम बैचलर।
1: यू आर बैचलर, ओके। मम्मी पापा फादर मदर हैं?
0: नहीं, आई हैव डेड।
1: अच्छा अच्छा, चलिए। अब हमको ये बताइए कि आपने आंखें फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश की है और आंखें का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट।
1: वेलकम।

जी हाँ, हमारे पहले कॉलर थे राम कृपाल प्रजापति, शहादतगंज अयोध्या से। उनकी फरमाइश थी फिल्म आँखें का ये गीत सुनवाने की। हम उसको उनकी फरमाइश उस वक्त नहीं पूरी कर पाए थे क्योंकि कंप्यूटर जी के पास गाना मिल नहीं पा रहा था। अब उनकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं।

0: जहाँ सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और एक वक्त इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, ये बात करते हैं उनसे। जी हाँ नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। हेलो
1: जी सर, मेरा नाम अंश पांडे है।
0: हाँ पांडे जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नागीपुर से बोल रहा हूँ।
0: हाँ हाँ, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: आपकी कसम
0: पिक्चर का गाना सुनना चाहते हैं। परिवार में और कौन कौन है? वैसे आप क्या करते हैं पांडे जी?
1: पढ़ते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ रहे हैं?
1: नाइन्थ
0: में पढ़ते हैं। तो चलिए हम आपकी कसम फिल्म का गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं। और पढ़ने के अलावा और भी कुछ करते हैं? खेलते कूदते हैं? क्या खेलना पसंद है आपको? आपको क्या खेलना पसंद है? क्रिकेट खेलना पसंद है?

0: हेलो। हाँ, आवाज आ नहीं रही है क्या?
1: आ रही।
0: हाँ, हम ये पूछ रहे हैं कि आपसे जानना चाहते हैं कि आपको पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद है?
1: मुझे खेलना
0: हाँ, क्या खेलते हैं आप? हेलो। चलिए, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फरमाइश का गाना हम भेज रहे हैं और इसको आप एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ, हमारे साथ थे पांडे जी ज़िला अयोध्या से, और आपने फरमाइश की है आपकी कसम फिल्म का गीत सुनवाने की। तो ये प्यारा सा गीत हम इनकी फरमाइश पर, इनके रेडियो सेट पर और इनके साथ साथ आप सभी सुनने वाले श्रोताओं के रेडियो सेट पर भेज रहे हैं।

0: जी हाँ, देखिए गाने के बीच में एक और कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ हेलो।
1: नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार जी, प्लीज़ अपना नाम बताइए। हाँ अपना नाम बताइए।
1: जी सर, मनोहर लाल बोल रहा हूँ सर।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हेलो,
0: हाँ कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मंदसौर से बोल रहा हूँ, एमपी से।
0: एमपी मंदसौर से। कार्यक्रम में गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: वो इधर राम तेरी गंगा मैली
0: राम तेरी गंगा मैली फिल्म का आप गाना सुनना
1: का।
0: चाहते हैं। आप परिवार में कौन कौन है, बताएंगे कुछ अपने बारे में?
1: ये बताएंगे ना आप?
0: हाँ जी बताएं, परिवार में आपके कौन कौन है?
1: परिवार में सर सभी है, बच्चे बच्ची है, माता पिता है, सभी है सर।
0: अब वैसे आप करते क्या हैं मंदसौर में?
1: जी मैं सोसाइटी में काम करता हूँ, ये अपने प्रधानमंत्री का जो 5 किलो गेहूँ मिलता है ना,
0: हाँ।
1: काम करता हूँ।
0: अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। और

0: और आप अपने रोजगार में लगे हुए हैं, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये प्यारा सा गीत हम भेज रहे हैं आप तक, एंजॉय कीजिए।
1: सर गाने के बोल बताऊं क्या?

0: जी हाँ, हमने आपकी आवाज़ सुनी। हेलो, प्लीज़ अपना नाम बताइए। हाँ, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ हमको आ रही है, आप बताएं नाम अपना।
1: अरविंद तिवारी साहब।
0: अरविंद तिवारी जी कहाँ से बोल रहे हैं भैया?
1: अर्पित तिवारी जी
0: कहाँ से बोल रहे हैं? अयोध्या से। गाना कौन सा सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: हमें गाना सुनना था ये नसीब फिल्म का।
0: हम आपको गाना सुनवाने जा रहे हैं नसीब फिल्म का, आपने बारे में कुछ बताइए। हेलो, क्या करते हैं?
1: अर्पित तिवारी है और हम अकाउंटिंग काम करते हैं, अकाउंटिंग का।
0: जी जी जी, चलिए। तो और परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में पापा जी हैं। हाँ। और हमारे दोस्त भी हैं साथ में बैठे हुए।
0: कौन कौन दोस्त हैं, बात कराइए हमारी।
1: अगर लोग
0: हाँ जी, बात कराइए।
1: जी जी सर। हेलो,
0: हाँ जी, प्लीज़ अपना नाम बताइए।
2: जी अभय तिवारी।
0: तिवारी जी कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जिला अयोध्या मिल्कीपुर।
0: मिल्कीपुर से बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम नसीब फिल्म का गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं, आपके दोस्त अर्पित तिवारी जी ने फरमाइश की है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं?
2: जी
0: ठीक है, हम आपकी फरमाइश पर, आप सभी दोस्तों की फरमाइश पर, अर्पित तिवारी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत फिल्म नसीब से आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं। एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को।
2: जी ठीक, ओके।

एशिया वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM पर। अब सुनिए राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति है।
2: खेल दर्पण।

0: खेल दर्पण के सभी श्रोताओं को संजय जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, आज बारी है आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति की, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे ताइक्वांडो में सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट और स्थानीय स्टेडियम अल्मोड़ा में ताइक्वांडो कोच साथ ही नेशनल रेफरी वंदना सिंह से। इसके अलावा 13 जूनियर एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे अखिलेश सिंह से, जो अब सीनियर टीम के लिए प्रयासरत हैं। इस माह 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस भी मनाया गया और एडवेंचर स्पोर्ट्स में माउंटेन बाइकिंग के लिए जाने जाने वाले साइकिलिस्ट भारत भूषण शाह यानी भरत शाह, जो कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भी प्रतिभाग कर चुके हैं, वो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद माउंटेन बाइकिंग का लुफ्त उठा रहे हैं। वंदना सिंह द्वारा प्रशिक्षित बच्चों ने 13वीं नेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो हल्द्वानी में आयोजित हुई थी, उसमें उनके द्वारा प्रशिक्षित 8 बच्चे मेडल विजेता रहे। एक खिलाड़ी से कोच और फिर रेफरी तक के सफर पर जानते हैं उनकी इस यात्रा को। आप स्वयं एक खिलाड़ी भी रही हैं।
1: जी जी।
0: और खिलाड़ी से कोच तक का क्या सफर रहा आपका?
1: खेलना मेरा मतलब पैशन था, मैं भी चाहती थी मैं ओलंपिक तक खेलूं। मैंने 2018 में लास्ट इवेंट खेला था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली थी मैंने, जिसमें मेरा मेडल रहा था। और उसके बाद जो है मैंने जो कोचिंग है वो अब 2022 में मैं जो है स्टेडियम अल्मोड़ा स्टेडियम में लग चुकी थी। 2022 से मैंने अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करा, आज करीब उनको 3 साल हो चुके हैं। तो ये उन लोग मेरे बच्चों के लिए पहला नेशनल था, बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया। मेरे 15 बच्चे गए थे जिसमें से मेरे 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज रहे उसमें। बहुत ट्रेन अभी उनको करना है मैंने।
0: एज ए खिलाड़ी से जब आप कोच बनी तो कोचिंग के लिए क्या क्या परेशानी आपको शुरू में फेस करनी पड़ी अल्मोड़ा में?
1: ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी हमें सब देती है, हमें बच्चों के लिए मैट प्रोवाइड करेगी। जो हमारी मैटें होती हैं वो करीब 1-1.5 लाख रुपए की भी मिलती है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बस हमें ट्रेन कराना पड़ा थोड़ा बच्चों का पढ़ाई से, और पेरेंट्स को हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है इसके लिए कि आप बच्चों को खेलने के लिए डालिए। जरूरी नहीं है उसका बच्चा जो है उन मेडल ही जीते, वही उसका एक अचीवमेंट है। बच्चा फिट रह रहा है, कोई गलत रास्ते में नहीं पड़ रहा है, ये भी एक कोच को देखना पड़ता है। सिर्फ हमारा मकसद बच्चों को मेडल लाके देना यही जरूरी नहीं है।
0: वैसे तो कहें कि ताइक्वांडो जो है आत्मरक्षा के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट्स माना जाता है, और खासकर बालिकाओं को अगर हम देखा जाए तो महिला इस स्पोर्ट्स को ज्यादा सीखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अल्मोड़ा में अधिकतर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कई एकेडमीज भी हैं जो कि बच्चों को ट्रेन कर रही हैं। आप के अंडर में जो बच्चे हैं इस वक्त, तो उनको कितना टैलेंटेड आप देखती हैं?
1: अब मैं सच बताऊंगी आपको, अभी जो मेरे पास स्ट्रेंथ है उसमें मेरे पास गर्ल्स की ही स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अभी जो 15 बच्चे जो खेलने गए थे उसमें जो मेडल है वो सारी गर्ल्स है। जो हमारा गेम है एकदम उसमें ऐसा होता है कि जितना बच्चा छोटे से स्टार्ट करता है वो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। कोई एक बड़ा बच्चा आके यानी कि 15-16 इयर्स का आके, मुश्किल है कि वो एकदम उसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहे, वो उसको गेम को कर सके। तो छोटे से बच्चा जो है हमारे पास शुरू करता है, और गर्ल्स उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। गर्ल्स हम ऐसा नहीं करते, फाइट जब प्रैक्टिस होती है तो गर्ल्स और बॉयज दोनों की हम कराते हैं, तो गर्ल्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इसके इसमें खेलने के लिए और अपना आत्मरक्षा के लिए, तो ये है ही अच्छी चीज।
0: आजकल के माँ बाप चाहते भी कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा करें।
1: बिल्कुल।
0: और खासकर मैं देखता हूँ कि 3-4 बजे के बाद अक्सर एकेडमी की तरफ जाते हुए देख सकते हैं हम लोग। तो स्टेडियम में क्या रूटीन रहता है बच्चों को सिखाने का?
1: 2

0: घंटा हमें सुबह दिया जाता है बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन थोड़ा बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल जो आप देख रहे हैं कि समर टाइम चल रहा है तो बच्चों की स्कूल्स हैं वो 6:30 से उनके स्कूल्स बसें ये आ जाती है। अगर वो मॉर्निंग में नहीं आ पाते मैं उन्हें इवनिंग में ज्यादा से ज्यादा टाइम देती हूँ, और प्लस संडे को मैं उन्हें मॉर्निंग में बुला के उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो हमारा जो रूटीन रहता है वैसे वो मॉर्निंग में 2 आवर्स और इवनिंग में 3 आवर्स हम बच्चों को देते हैं।
1: तो कितने बच्चों की एक स्ट्रेंथ आपके पास रहती है?
0: एक्चुअली मेरे पास 50+ तो हो ही जाते हैं बच्चे, लेकिन उसमें से बस यही होता है कि स्टार्टिंग में तो सब बच्चे आ जाते हैं लेकिन उस प्रैक्टिस को हर कोई झेल नहीं पाता। तो कुछ बच्चे उसमें या तो बोर हो जाते हैं या उनके हाथ पैरों में दर्द, इस तरीके की कोई चीजें आती है, फिर कुछ बच्चे जो है उसमें से छूट भी देते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 30 to 35 चिल्ड्रंस जो है हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं, जो कि आज मेरे पास 3 साल से लगातार है।
1: मतलब 30-35 बच्चों को आप आराम से एट ए टाइम कोचिंग दे सकते हो। अब बच्चे आपके पास कोचिंग करने आ रहे हैं, अब उनका एक डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कुछ ना कुछ डाइट होगी। तो माँ बाप को भी आप बताते होंगे कि किस तरह की डाइट आपके बच्चों को देनी है। जैसे अब मैं शुरू करूं कि आपके पास 7 या 8 साल के बच्चे से शुरुआत आप करते हैं,
0: 5 साल
1: से जी। तो अभी मान लीजिए तो सबके लिए डाइट प्लान भी एक अलग अलग रहता होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो आजकल यही समझाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको बाहर की चीजों के लिए आप अवॉइड करवाइए, जो भी आजकल बाहर चूस चॉकलेट चिप्स वगैरह बच्चे खाते पहले तो इसे ही आप मत दीजिए, यही बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद जो डाइट है तो मैं ये कहूंगी कि उसमें बच्चों को एग वगैरह इस टाइप की चीजें उसमें आप उसको प्लस करिया करिए। कुछ बच्चों को 2 किलो वेट कम करना है तो उनको हमें डाइट बतानी पड़ती है कि आप 2 किलो जो है एट अ टाइम आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप वो कंटिन्यू मेरे पास प्रैक्टिस में है, उसको क्या डाइट खानी है मॉर्निंग में क्या नहीं खाना है, तो ये चीजें हमने उनके पेरेंट्स को सब बताई हुई है।
1: ट्रेनिंग की बात आती है तो किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर आप देती है?
0: मैं हूँ क्योर्गी, हमारे अब जो टाइक्वांडो है ना वो 2 इवेंट में डिवाइड हो चुका है, एक होता है क्योर्गी एक होता है पुमसे। तो एक्चुअली मैंने ही क्योर्गी ही खेला है तो मैं क्योर्गी ही उनको खिलाती हूँ। क्योर्गी मीन्स होता है फाइट
1: जी।
0: तो फाइट के लिए हमें जरूरी है किक और पंच का आना। तो स्टार्टिंग में बेसिक उनका यही रहता है कि मैं उनको कैसे भी करके उनकी किक इंप्रूव करूं, जिसमें हमें पहले उनको एयर प्रैक्टिस देनी पड़ती है, उसके बाद उनको हमने किक पैड में प्रैक्टिस करवानी होती है। जब बच्चे इस तरीके के सीख जाते हैं, फुटवर्क सीख जाते हैं, पंच करना सीख जाते हैं, गार्ड करना सीख जाते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट लेवल आता है फाइट यानी कि स्पारिंग। तो उसके बाद उन्हें फाइट प्रैक्टिस दी जाती है। जब फाइट प्रैक्टिस में कहां उनको मारना है, कहां कितना स्कोर मिलेगा, जैसे ट्रंक में मारते हैं तो कितना स्कोर मिलेगा, फेस में मारते हैं कितना स्कोर मिलेगा, ये तरीके की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा जब वहां फाइट खेलना शुरू करता है फिर उसके बाद वही उसकी वो किस तरीके से अपने को गार्ड करें, कैसे खेलें, अपने स्कोर कैसे बचाएं और स्कोर कैसे निकालें, ये चीजें बताई जाती है।
1: क्योंकि अब नेशनल्स में आपने बच्चों को खिलाना है तो ऑब्वियसली उनको कुछ एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है, कुछ टूर्नामेंट भी उनको लोकल में भी खेलने पड़ते होंगे
0: जी।
1: तो इस तरह की सुविधा यहाँ पर है
0: जी। जी टूर्नामेंट्स की हमारी पूरी सुविधा है यहाँ पे, हम लोग कराते रहते हैं हमारे स्टेडियम में भी। 1 साल में करीब 2 या 3 टूर्नामेंट हम स्टेडियम में ही कराते हैं, और बाकी जैसे आपने बताया कि अभी एकेडमीज है हमारी यहाँ पे, तो हम कभी इंटर यूनिवर्सिटी कभी इस तरीके की हम लोग टूर्नामेंट्स कराते रहते हैं।
1: आपके जो बच्चे 8 जो मेडलिस्ट निकले अभी 13 ओपन नेशनल चैंपियनशिप में, तो उनमें कौन कौन से बच्चे में आप प्रतिभा देखती हैं कि आगे तक जाएंगे और हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
0: भूमिका जोशी उसमें लड़की का नाम था, सब जूनियर की है, वो करीब 10 या 11 साल की बच्ची है। उसके अंदर एक टैलेंट दिखता है मुझे कि वो बहुत अच्छा कर रही है।
1: आजकल तो जमाना कंडीशनिंग कोचेस का भी है, मेंटल कंडीशनिंग कोचेस का भी है, सब एक ही कोच की
0: जिम्मेदारी है।
1: टूर्नामेंट से पहले जब बच्चा आप जाता रिंग पे उतरता है तो आप क्या बताती है उनको, क्या कुछ करना होता है?
0: पहले तो हम यही मोटिवेट कराते हैं, आपके सामने खेलने आ रहा है वो भी आप ही की तरह है, वो भी आप ही की तरह ट्रेनिंग करता है, उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं। हमारे बच्चों में पता नहीं, पहाड़ के बच्चों में मुझे लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो जो बच्चा खेलने से पहले डर जाता है तो हमें उन्हें मोटिवेट बहुत इनको करवाना पड़ता है कि आप डरिए नहीं, आप अपना, मैं बच्चों से ये भी नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेडल की चिंता करिए, मैं ये चाहती हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। हार जीत तो लगी रहती है, कोई इतनी वो इशू नहीं है, लेकिन आप अपना गेम तो बेस्ट दीजिए। आप अपना जो प्रैक्टिस में इतना अच्छा फाइट करते हैं, आप वहां जाके उसका 50% भी नहीं दे पाते, तो इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपना गेम बेस्ट कर दीजिए। और खाने से पहले आपने क्या चीज खानी चाहिए, बच्चे जो होते हैं खाने से पहले डर के मारे कुछ खाते नहीं है। हमारे उसमें जो होता है ना सुबह 8 बजे से जैसे शुरू हो जाता है, तो बच्चे की कभी कभी रात को 8 बजे फाइट आती है, तो बच्चा जो है उतनी देर तक अपनी एनर्जी को लॉस कर लेता है और वो डर के मारे अभी खाता नहीं है कि अभी क्या पता मेरा नाम कुछ देर में आ जाएगा इस तरीके से, तो उसकी एनर्जी सुबह से शाम तक तो ऐसे ही लो हो जाती है। तो इस चीज के लिए भी हमें बोलना पड़ता है कि आपको खाना है तो जबरदस्ती आप खाइए।

0: उस चीज को।
1: तो वेट तो पहले ही हो जाते होंगे?
0: नहीं, वेट एक दिन
1: तो
0: पहले हो जाते
1: हैं। घबराने कोई बात नहीं है। नहीं, नहीं। अगर आप बच्चा बीच में देख रहा है कि 4-5-6 घंटे वो खाली है तो उस दौरान उसको भोजन तो कराने
0: की जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज की मुझे अभी फर्स्ट डे यहाँ देखा मैंने, बच्चे ये नहीं खा रहे थे। सेकंड डे में पेरेंट्स भी वहां पे आए हुए थे, तो मैंने उन लोगों से यही कहा बच्चों ने कल जो है जो मिस्टेक करी थी वो आज नहीं होनी चाहिए, आज इनके लिए बनाना जूस, ग्लूकॉन डी जो है, इलेक्ट्रोल्स वगैरह, ये चीजें जो है आप रेडी रखिए और इनको देते रहिए आप थोड़ी थोड़ी देर में।
1: टूर्नामेंट के दौरान जब आप टूर्नामेंट खेलने बच्चे जा रहे होते हैं तो उस दौरान की डाइट का क्या रहता है?
0: सबसे पहले तो हमें वेट एक दिन पहले ही वेट हमें देना पड़ता है बच्चों का। कुछ बच्चों ने वेट घटाना होता है, कुछ बच्चों ने वेट बढ़ाना होता है। तो जिन्होंने घटाना होता है तो उनकी तो हम खैर एक दिन के लिए हम थोड़ा डाइट उनकी बंद ही कर देते हैं, उसके बाद जो है उनको फुल जो है एनर्जी लेवल जिसमें उनकी एनर्जी गेन हो जाए तो हम उनको वो सारी चीजें खाने के लिए बोलते हैं। और जिनको वेट बढ़ाना होता है तो वो लोग अपनी इस तरीके की बनाना और इस टाइप की चीजें खा लेते हैं। तो ये तो हो गया वेइंग से पहले की बात। अब आ जाती है फाइट से, तो उसमें हम उसमें लाइट जो है आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह या ब्रेड वगैरह या बनाना सबसे बेस्ट है आप वो ले सकते हैं। जिस बच्चे की फाइट आ गई तो उसके बाद वो तो उस नहीं खाएगा दिन का अगर उसका है, या फिर बिल्कुल हल्की डाइट लेगा नॉर्मल, आप इलेक्ट्रोल पी सकते हैं उसमें, इस टाइप की हम उनकी चीजें बोलते हैं। स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा होता है ना हम कहीं बाहर दूर गए तो हमें ये सारी चीजें अवेलेबल भी नहीं रहती है। अभी जैसे हम ग्वालापार गए थे, यहाँ कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा था जो बच्चे होटल में रुके थे इस टाइप की चीजें। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रुके थे तो हमने उनको यही बोला कि आप अपना लंच जो है आप अपना लेके आइएगा, इस तरीके की चीजें। तो बहुत सी चीजों का हमें प्रॉब्लम्स जो है मैं फेस करनी पड़ जाती है
1: जी। साथ ही साथ आप एक नेशनल रेफरी भी हैं। अब आप, मैं चाहूंगा कि बताएं कि कैसे आपका सफर एक खिलाड़ी से कोच, कोच से रेफरी की तरफ गया?
0: खेलते खेलते ही नेशनल रेफरी जो है हमारा कोर्स होता है, इसका सेमिनार अटेंड किया था। फर्स्ट टाइम मैंने लखनऊ में ही इसका सेमिनार जो है अपना अटेंड किया था रेफरीशिप का। हालांकि मैं उस टाइम थोड़ा सा घबराती भी थी सीनियर्स की बॉयज की फाइट में, अगर आप सेंटर रेफरी हैं तो आपका जजमेंट और आपकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो एक रेफरी जो हमारा गेम है
1: जी।
0: हमारी एक छोटी सी मिस्टेक से किसी की जान जा सकती है। अगर हमें लगा कि कहीं पे एक बंदा शार्प खेल रहा है, दूसरा लूज कर रहा है, या हमने अगर धीरे बोला, उसको सुनाई नहीं दिया, दूसरे ने उसे उतनी देर में किक कर दिया कहीं भी, तो इसका बहुत ज्यादा मतलब एक बच्चे की जान जा सकती है। तो इसलिए इसको रेफरी को बहुत मतलब मैं भी डर रही थी इसमें स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे हमारे जो सीनियर सर थे इसमें, एटी राजीव सर है बैंगलोर से, वो इंटरनेशनल रेफरी है जो हमारा करवाते हैं, तो उन्होंने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिलाया, उनको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने मोटिवेट किया। तो मैंने फर्स्ट सेमिनार तो वहीं पर अटेंड किया, उसके बाद मैं मणिपुर हो गया, उड़ीसा हो गया, सब जूनियर इवेंट में नेशनल रेफरी के रूप में मैंने वहां पे अपना दिया। लास्ट ईयर हमारे हल्द्वानी में ही दोबारा से ये सेमिनार हुआ, क्योंकि अपडेट होना जरूरी रहता है, हमारे रूल्स चेंज हो जाते हैं बीच बीच में, तो हमें भी अपडेट होना पड़ता है उस सब चीजों के लिए। 2018 से पहले जो है करीब 3-4 जगह मैं नेशनल रेफरी कर चुकी हूँ।
1: आपको क्या लगा कि जब आपने एज ए खिलाड़ी के बाद रेफरी चुना था तो कितना मतलब कठिन जैसा लगा था कि आपको लगा कि बहुत?
0: मैं कहूंगी कि सबसे अच्छा मुझे सिर्फ खेलना पसंद है, मुझे खेलना ही काफी ज्यादा पसंद है। तो मैं जब रेफरीशिप करी तो उसमें एक जगह बैठे रहो, आप ना इधर देख सकते हो ना आप उधर देख सकते हो, तो आपको बिल्कुल किसी की आप एक स्कोर से आप कोई बच्चा हार सकता है जीत सकता है, मतलब बहुत वो है, तो आपको बहुत उसमें फोकस करना पड़ता है और बिल्कुल आप बंधे रहते हैं। रेफरी का अच्छा है लेकिन एज अ प्लेयर मैं कहूंगी कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है।
1: तो आने वाला समय आप उत्तराखंड के लिए ताइक्वांडो में कैसा देखती हैं, कोच होने के नाते मैं जानना चाहूंगा
0: कि हमारा जो अल्मोड़ा है वो पहले से ही शुरू से ही ताइक्वांडो में काफी अच्छा रहा है। आपने सुना होगा 2004 में हमारे सुरेन भंडारी दादा सर है जो काफी सीनियर है, वो भूषान से एशियन गेम्स में मेडल लेके आए थे, तो वहीं से हमारा जो है ताइक्वांडो जो है अल्मोड़ा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। और काफी टाइम बाद हमारा फिर उसके बाद रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था, हालांकि दौराहाट में भी हमारी यहाँ पे चलती है, उनके भी काफी सर है हमारे विजय सर, उनके भी बच्चे काफी अच्छा करते हैं, अच्छा रिजल्ट है, हर जगह जॉब में भी निकलते हैं, अच्छा रहा है। और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही जैसे सुरेन भंडारी सर ने हमारे अल्मोड़ा का नाम इतना रोशन किया, ऐसे ही हमारे बच्चे जो है आगे नाम रोशन करते रहे, यहाँ से भी हमारे बच्चे निकले अल्मोड़ा का नाम रोशन करें।
1: तो हम ये कहेंगे कि आप इसको एक व्यवसाय के रूप में भी चुन सकते हैं, आपका कैरियर भी इसमें बन सकता है, एज आप अगर शौकिया खेलते भी हैं खेल खेल से भी आप आगे भी जा सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत अच्छा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो क्या कहना चाहेंगी आप हमारी बच्चियों से कि वो इस खेल को कितना अपनाएं।
0: ये मत देखिए कि आप देश के लिए मेडल ला रहे हैं, हमारे पास आते बहुत सारे

0: हैं, लेकिन बनता कोई एक ही है, तो हम उनको एक अच्छी दिशा में एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं। जो जो बच्चे बड़े होते हैं आजकल गलत संगत में जा रहे हैं, नशे की तरफ को जा रहे हैं, तो बच्चे का एक फोकस रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज करनी है, मैं फिट, मुझे फिट रहना है, मुझे ये ऐसी चीजों में ध्यान नहीं देना है, मुझे नेशनल में मेडल लाना है, तो बच्चा जो है उधर ही की ओर अग्रसित होगा, उसका ध्यान जो है भटकेगा नहीं। और दूसरी तरफ रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए जैसा आपने बताया, बच्चा जब यहाँ से स्कूलिंग में पूरा अगर अपना टाइम यहाँ सीखता है, कल के दिन में वो ताइक्वांडो की लाइन में नहीं जाके अपना कोई और कोर्स करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, तो गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रहेगी कि हाँ मुझे ताइक्वांडो आता है, मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। बच्चा खेले, 12th तक ही खेले, अगर जिसको फिर उसके बाद उसको कोई और लाइन पकड़नी है तो वो कर सकता है।
1: ये थी वंदना सिंह, और अब बारी है अखिलेश सिंह की, जो कि अब सीनियर टीम के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये 13वीं जूनियर एशियन चैंपियनशिप मलेशिया में आयोजित भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल विजेता रही। आपने 2023 के नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 24 में आपके आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं, तो अखिलेश बात यहीं से शुरू करते हैं, आपकी नेशनल चैंपियनशिप की, जो आपने 2023 में गोल्ड जीता था, पहली बात याद है कि ताइक्वांडो के प्रति आपका शौक कैसे हुआ?
2: बचपन से ही हो गया था शुरू, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो खुद नेशनल चैंपियन और नेशनल प्लेयर रही है, तो उनको देख के ही फिर मन किया खेलने का।
1: बात आती है नेशनल चैंपियनशिप की, तो 23 में आपने गोल्ड जीता, तो वो सफर आपका कैसा रहा?
2: तो नेशनल चैंपियनशिप जो है ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे आते हैं और कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहता है, टफ रहता है, तो उसके लिए बस अपनी गेम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगता है, और सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, टेम्प्ररी पढ़ाई और जो मेन चीज़ें हैं उसी पर तुम फोकस कर सकते हो अगर आप प्लेयर और एक स्टूडेंट दोनों हो तो। तो आपके लिए ऐसा होता है कि आपके लिए जो लाइन है वो थोड़ी टफ है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे ज़्यादा टफ है, क्योंकि आप प्लेयर और स्टूडेंट दोनों हो, आपको दोनों मैनेज करते हुए चलना है, तो पूरे अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट और पूरी मेहनत दोनों जगह, क्योंकि दोनों चीज में एक्सेल करना है, अच्छे से बेस्ट देना है, तो टफ था नॉर्मल बच्चों से, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं स्पोर्ट्स उनके मुकाबले बहुत टफ था, क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप थी, और पर बस पैशन था अंदर और ये था कि हार्ड वर्क करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, मेहनत करते गए।
1: मेहनत करते करते आपने 23 और 24 में आप सिल्वर मेडलिस्ट रहे, गोल्ड के बाद सिल्वर आया, उस दौरान परफॉर्मेंस में थोड़ी ड्रॉप रही आपकी, कोई बात नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ था 13th जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए मलेशिया में जो आयोजित हुई थी, तो वहां पर आप मेडलिस्ट रहे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आपने देश के लिए जीता, तो ये मैं जानना चाहूंगा कैसे आपका सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हुआ था उस?
2: तो सबसे पहले जो था हमारा 2025 की नेशनल चैंपियनशिप जो देहरादून में हुई थी, तो वो था एक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था कि जो बच्चा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज यहाँ पे होगा तो उसके लिए आगे जाके रास्ते खुलेंगे एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल के लिए, तो वहां गए और पार्टिसिपेट किया नेशनल चैंपियनशिप्स में और वहां मेडल जीता, वहां नेशनल चैंपियन बना मैं उस टाइम पे, और उसके बाद वहां से फिर आगे जाके जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स दिए, फिर वहां सिलेक्शन लिया, और उसके बाद कैंप मिला हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हमारा कैंप लगा था 1.5 महीने का
1: जी,
2: तो फिर वहां ट्रेनिंग हुई इंडिया के बेस्ट कोचेस के साथ।
1: पहली बार जब एशियन चैंपियनशिप में खेले आप, नेशनल से विदेश में जाकर खेले, तो कैसा आपकी मनस्थिति थी, क्या लग रहा था आपको, मैं इतने बड़े मंच पे खेलने जा रहा हूँ?
2: बस ये था कि अब इतना आगे आ चुके हैं तो अब कुछ और ऑप्शन नहीं है, अपना बेस्ट देने का हमेशा से रहा है दिल में कि अब तो देश के लिए खेल रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि देश के लिए खेलना है, अपना बेस्ट देना है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आ जाए सामने किसी भी कंट्री का।
1: वहां पर जब आपके कोचेस होते हैं तो एक आप जब स्थानीय स्तर पर आपके कोच होते हैं अलग होते हैं, अब जब आप एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके साथ कोचेस अलग होते हैं, तो कैसा आपको लगता है कि जो आपने कोचिंग यहाँ ली, जिन कोचेस से और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं खेलने के लिए, वहां पर कोचिंग में क्या अंतर लगा आपको?
2: यही बात है जिससे हम बचपन से सीखते हैं, उनको तुम्हारी कमियों के बारे में, तुम्हारी एडवांस जो तुम जिस चीज में अच्छे हो उस चीज के बारे में पता होता है, और वो तुम्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है एज अ प्लेयर, जो हमारा कोच होता है उससे एक अलग बॉन्ड होता है, हमारा एक अलग रिलेशन होता है, जिसने हमें बेसिक से उठाया होता है तो उसे सब पता होता है, लेकिन जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहां पे हमें थोड़े अलग कोचेस मिलते हैं जो एडवांस होते हैं, जो ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं और एक लेवल उनका अप

0: हो जाता है, पर उनसे फिर कुछ टाइम उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद उनके साथ भी थोड़ा रिलेशन अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो काफी सारे प्लेयर्स को वो उन्होंने पहले भी ट्रेनिंग दी होती है और उनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता होता है कि हर एक बच्चे को कैसे हैंडल करना है. तो बस इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पर अपना कुछ तो अपना कुछ ही होता है लास्ट में.
1: जी, इंटरनेशनल में आप फाइट कर रहे हैं, अब जब आप पहली बार फाइट करने गए तो क्या था? कहते हैं बटरफ्लाई इन स्टमक, कहते हैं
0: नर्वसनेस थी थोड़ी. वो तो हर फाइट के पहले नर्वसनेस होती है.
1: किसके अगेंस्ट फाइट थी आपकी?
0: मेरी पहली फाइट चाइना से थी. हाँ, और मैंने ये देखा है हमारे देश में स्पोर्ट्स की हालत थोड़ी डाउन ही चलती है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है. जो प्लेयर्स को काफी सारी फैसिलिटीज, क्योंकि जो और कंट्रियां हैं वो काफी ज्यादा आगे है हमसे आजकल, क्योंकि जो हम अभी सीखते हैं वो शायद से 5-10 साल पहले वो लोग करके उसे वो टेक्निक्स और जिस एडवांसमेंट के साथ आज हम सीख रहे हैं वो बहुत पहले सीख चुके हैं. तो उनके पास प्लस पॉइंट रहता ही रहता है उनकी फैसिलिटीज, क्योंकि उनको अच्छी मिलती है. ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी फैसिलिटीज नहीं है, पर हो जाता है थोड़ा पीछे, क्योंकि बेसिक लेवल पे अच्छी वो नहीं मिलती. भले टैलेंट हमारे देश में बहुत ज्यादा है
1: जी, पर मैं ये जानना चाहूंगा, जब पहली फाइट आप कर रहे थे, अपोनेंट आपका चाइनीज था, तो आप कैसे उससे फाइट कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको, क्या उसमें क्या कमी है और मैं कहां उसके ऊपर पॉइंट ले सकता हूं?
0: वही गेम पढ़ना था उसका. सबसे पहले खेलते गए नॉर्मली उसका गेम देखा कि वो किस तरीके से खेल रहा है, और फिर थोड़ा उसकी कमियां देखी कि कहाँ पे वो लैक कर रहा है, और फिर वहीं से स्कोर निकालने का ट्राई किया. वो अपनी लेफ्ट लेग से बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, वो एक ही लेग से खेल रहा था, तो पता चल गया था कि ये इसका माइनस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट निकल सकता है हमको, तो वहां पे एडवांटेज लिया, वहां से पॉइंट निकाला.
1: तो ये एज ए खिलाड़ी तुम खुद जज करते हो या बीच में कोच भी इशारा करते हैं कुछ वहां पर?
0: कोच का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि कई बार जो पर्सन खेल रहा होता है ऐसा प्लेयर, तो कई बार वो नहीं समझ पाता है कि सामने वाला कैसा खेल रहा है, तो कोच कभी कभी आंख बंद करके कोच की बात मानना भी बहुत जरूरी है, कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोच पे भरोसा रखो, वो तुम्हें अच्छा ही गाइड करेगा और सही गाइड करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है.
1: जी, आप अपनी पहली फाइट जीते, आगे की फाइट जीते, तो किस तरह के अपोनेंट्स आप फेस करते गए?
0: चाइनीज अपोनेंट थोड़ा टफ पड़ा पहली फाइट में. सेकंड फाइट मेरी इजी रही जो सऊदी अरेबिया के साथ थी. थर्ड फाइट मेरी कोरिया के साथ हुई थी जिसमें मैं हार गया था.
1: अच्छा,
0: कोरिया से मैं हार गया था.
1: कोरियन वाले में ऐसी क्या खासियत लगी जो आपको लगा कि आप कहां लैग करें?
0: कोरियन के साथ मैंने देखा, सबसे पहले तो उसके पास एक एडवांटेज था हाइट का, वो मुझसे हाइट में बड़ा था.
1: अच्छा,
0: और उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, स्ट्रेंथ में भी बहुत ज्यादा, हाइट में भी बहुत ज्यादा, तो बस यही प्लस पॉइंट था उसका.
1: टेक्निक वाइज
0: आप मैं कहूंगा
1: टैकल कर रहे थे, मतलब
0: टेक्निक वाइज मॉडरेट, बस जो नेचुरल स्ट्रेंथ थी और वो रॉ स्ट्रेंथ वो उस पर अब बहुत अच्छी थी, तो वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गई.
1: उसके बाद अब आगे आप क्या सोचते हो, आपने क्या करना है
0: अभी नेक्स्ट? मेरा सोचा है सीनियर नेशनल चैंपियनशिप्स को टारगेट कर रहा हूँ, उसके लिए वर्क कर रहा हूँ, खुद पर बेहतर कर रहा हूँ हर दिन खुद को. और आजकल ये तो है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है गेम्स में, तुम्हें आर्मी सर्विसेज, आर्मी और काफी सारी रेलवे, इन सब चीजों में जॉब मिल जाती है.
1: जी,
0: हाँ, तो उसके साथ तुम अपना गेम भी कंटिन्यू कर सकते हो एक तरीके से.
1: तो अभी फिलहाल जो क्या तैयारी चल रही है आपकी?
0: फिलहाल तो नेशनल चैंपियनशिप के लिए, तो अब कॉम्पिटिशन और डबल है, तो उसके लिए डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो बस वही चल रहा है.
1: तो कितना डिफरेंस लग रहा है आपको जूनियर से सीनियर में? अब आप शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर किस कोच के अंडर में यहाँ पे कोच कर रहे हो?
0: विक्रम भंडारी सर.
1: विक्रम भंडारी जी के अंडर में कोचिंग कर रहे हैं, तो किस तरह की उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीनियर लेवल पे जो कोचिंग होती है जूनियर से काफी डिफरेंट होती है, तो क्या चीजें आपको अलग से सिखाई जा रही है?
0: अब जैसे सीनियर एक अलग ही लेवल है, उसका लेवल थोड़ा टफ डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो एक तो वो हो गया. टेक्निकल ट्रेनिंग ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी टेक्निक सुधारनी पड़ती है और अपने आप को और पॉलिश करना पड़ता है, अपने जो कमियां होती है उनको ट्राई करना पड़ता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से कम करें और सुधारें, कोई कमी ना रह जाए हमारे अंदर.
1: स्टेमिना भी इसमें चाहिए होता है आपको, इतनी देर रिंग में सस्टेन करना है, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे करते हो?
0: स्टेमिना बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, जो मेनली स्प्रिंट्स, रनिंग्स, लॉन्ग रनिंग हम लोग करते हैं जिससे स्टेमिना बिल्ड होता है.
1: 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस आयोजन किया गया.

0: या माउंटेन बाइकिंग के बारे में अपने अनुभव को साझा किया हमारी प्रतिनिधि गीता कनवाल से भरत शाह ने।
1: आप काफी समय से साइकिलिंग कर रहे हैं और कई सारे ट्रैक्स आपने साइकिल से किए हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में साइकिलिंग को अपने जीवन में अपनाने का विचार कैसे आया?
2: ये मेरे बचपन से जुड़ा है और मेरा पहले साइकिलिंग में कोई शौक ऐसा नहीं था। मैं जब झांसी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए गया था तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे घर से करीबन 8-9 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, तो मुझे वहां साइकिल से ही जाना पड़ता था। इसके लिए मैंने साइकिल सीखी थी और उसके बाद मैं नैनीताल आ गया आगे की एजुकेशन के लिए, तो साइकिल लगभग छूट गई थी। फिर बाद में मैं एडवेंचर से जुड़ा तो मैंने ट्रैकिंग का काम किया, लेकिन पिछले 12-13 सालों में साइकिल में एक बड़ा परिवर्तन आया कि पहाड़ों में लोग साइकिल चलाने लगे। हम सोचते थे कि लोग प्लेन्स में ही साइकिल चलाते हैं, लेकिन पहाड़ों में गियर साइकिल का प्रयोग होने लगा। तो तब मैंने पहली बार 10-12 साल पहले गियर साइकिल चलाने की शुरुआत की और फिर एक बार जब मैं शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं। फिर मैं नए नए तरीके से साइकिल के ट्रेल देखने लगा और साइकिल से पहाड़ों को घूमने लगा।
1: इसके अलावा सर, साइकिलिंग के दौरान आपके खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे और आपने अभी तक साइकिलिंग के माध्यम से कहां कहां तक की यात्राएं की हैं?
2: अनुभव तो साइकिल में जब आप घर से निकल जाओ तो बहुत प्रकृति के साथ आपको रहना पड़ता है, तो एक तरीके से जैसे फिल्म चेंज होती है उस तरीके से पूरा आपको चेंज एटमॉस्फेयर मिलता है और नई नई चीजों से आपको मतलब आपको देखने को मिलती है, नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है और नए स्ट्रगल आपको दिखाई देते हैं। तो मेरी यात्राओं में जो मैंने शुरुआत की पहाड़ों में, तो आसपास में ही पहले 5-10 किलोमीटर मैंने सफर शुरू किया, जैसे अल्मोड़ा से कसार देवी का। तब मुझे बड़ी हिचक होती थी कि अगर मैं चढ़ाई में कहीं रुक गया तो लोग क्या कहेंगे, और फिर धीरे धीरे जब मुझे प्रॉपर गियर साइकिलिंग का तजुर्बा हो गया तो मैंने काफी इधर जो टूर्नामेंट प्रोग्राम्स होते हैं इनके, साइकिल इवेंट्स होते हैं, उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके बाद मैं गोवा भी गया, नासिक भी गया और बॉम्बे में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा मैंने पहाड़ों में जो जर्नी की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा है, तो मैंने बद्रीनाथ की साइकिल यात्रा की, माणा पास मैंने किया साइकिल से, हिमाचल में मैंने काफी साइकिलिंग की और वहां पे मुझे प्राइज भी मिले, और इस तरह से मेरी साइकिल जर्नी काफी अच्छी रही और अभी भी मैं कंटिन्यू साइकिलिंग करता हूँ पहाड़ों को देखने के।
1: आप कई वर्षों से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग शुरू करने से पहले और उसके बाद आपने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह का परिवर्तन देखा?
2: स्वास्थ्य तो साइकिलिंग से बहुत ही बढ़िया मैंने फील किया। सबसे बड़ी चीज जो मुझे साइकिलिंग जर्नी में महसूस हुई कि जब आप पहाड़ों में साइकिलिंग करते हैं तो आपको सिर्फ अपने सांसों की आवाज सुनाई देती है, मतलब आप अपने आप को फील कर सकते हैं और ये एक तरीके से स्पिरिचुअल फीलिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अधिकतर इंसान जो है जब भी कहीं बैठता है और कुछ पढ़ता है, लिखता है या कहीं कुछ भी कर रहा होता है तो उसके दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन जब वो साइकिलिंग करता है तो उसको ये लगता है कि उसको उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, वो चढ़ाई चढ़नी है या वो अचीवमेंट करना है वहां तक जाने का, तो उसको बाकी कोई ख्याल नहीं आते। तो कहते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म में थॉटलेसनेस, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपनी धड़कनों को समझना, ये मुझे लगता है साइकिलिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होता है और यही मैंने महसूस।
1: आप हमारे श्रोताओं को साइकिलिंग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मुझे तो ये लगता है कि साइकिलिंग को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए, इससे आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा, हेल्दी फील करेंगे आप अपने आप को साइकिलिंग करके, और यदि आप हफ्ते में आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम वीकेंड में या संडे के दिन आप एक साइकिल राइड छोटी जरूर करें, जिससे कि एक परिवर्तन आपको खुद अपने अंदर महसूस होगा। यही संदेश दूंगा कि सभी को साइकिल चलानी चाहिए और स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर होना चाहिए, और सभी स्वस्थ रहें, साइकिल चलाएं।
0: तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम से अपने मित्र संजय जोशी को अनुमति दें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए अंक के साथ इसी चैनल इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: दर्पण,
1: खेल दर्पण,
0: खेल दर्पण।
2: अभी आप सुन रहे थे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। न्यूज़ 1 AIR ऐप और 101

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से। न्यूज़ ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके पश्चात अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और समय रात्रि की 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से

0: के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।